सुहासिनी सुमधुरभा

सुप्रभात। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तद अनुसार 30 मई वर्ष 2026। प्रातःकित 5:56 हुए। हमारी आज की पहली सभा के प्रसारण मीडियम वेव और एफएम दोनों मीटर्स पर एक साथ आरंभ हो रहे हैं।

0: लेनियर्ड्स 91 किलोहर्ट्स और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: 6 बजने को हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
3: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
2: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में, IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल

0: अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 334.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज़ रेड बाय तन्वी खुराना।
1: दैनिक कार्यक्रम

0: after inaugurating two strategically crucial new border outposts on the India-Pakistan border. Mr. Shah said in the 60th year of the BSF's establishment, a decision has been taken to completely transform.
1: भक्तों के मन में श्रद्धा के फूल खिले, तेरी कृपा से हर दुख दूर हो जाए, जय माता की धुन से जीवन सवर जाए।

गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद का नंद लाला।

हर मौज़े हवा नाम तुम्हारा गुनगुनाए, दुरूदों की खुशबू दिलों में उतर जाए, मदीने की राहों का सपना रहे कायम, नबी की मोहब्बत से जीवन सवर जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, शाहिद नियाजी, आशा भोसले और कुमार विश्वास। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जब आप दूसरों में दोष या त्रुटियां निकालने का प्रयास करते हैं तो आप मानो अपनी ओर दोष और त्रुटियों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब आप किसी की निंदा करते हैं या उसका कोई दोष निकालते हैं तो उनमें से कुछ आप में भी आ जाएंगे। यही विधान है। दूसरों में खोट न निकालना ये इतना दूसरों को दोष से नहीं बचाता जितना कि स्वयं अपने आप को। आपको इन दूसरों में दोष गुण निकालने वाली छिद्रान्वेषी मनोवृत्ति से अवश्य ऊपर उठना चाहिए। सदा याद रखिए कि ईर्ष्या, द्वेष, छिद्रान्वेषण तथा खोट निकालने वाले विचार या ऐसे विचार जिनमें तनिक भी द्वेष या घृणा की गंध आती हो, इनमें लिप्त होने से आप स्वयं उन विचारों को अपने पास बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाई की आंखों में किरकिरी ढूंढने जा रहे हो, समझ लीजिए कि आप अपनी ही आंखों में तिनका डाले ले रहे हैं। पाप से घृणा और पापी से प्रेम करने में आपको कठिनाई इस कारण होती है कि पाप के अर्थ को आप ठीक तरह से नहीं समझते हैं। जिस प्रकार लोग जब अपने शरीर और धन को बहुत मानने लगते हैं तो ईश्वर को भी साकार मानने लग जाते हैं। जिस प्रकार लोग मूर्ति और प्रतिमाओं का निर्माण करने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार किसी विशेष कार्य को बढ़ा चढ़ा कर देखना, पूजा करना लोगों की अज्ञान प्रवृत्तियों का फल है और इस प्रकार से वे किसी कार्य को छोटा कहने लगते हैं और किसी को बड़ा। स्मरण रखिए कि धर्म हृदय की वस्तु है, गुण भी हृदय की वस्तु है और दोष भी। पाप और पुण्य दोनों का संबंध आपकी स्थिति तथा मानसिक अवस्था के साथ है। यदि आपने कोई महान और उदार कार्य किया हो और आपके साथियों ने वो कार्य नहीं किया है और यदि आप इस महान कार्य करने के गर्व से फूलकर कुप्पा बन जाते हैं और अपने साथियों की निंदा तथा आलोचना करते हैं तो क्या इससे आपके उस सद्गुण में कुछ बढ़ोतरी होती है? क्या आप ऐसे आचरण के द्वारा ईश्वर के अधिक निकट पहुंच जाते हैं? नहीं, आपने एक प्रकार की बुराई के बदले दूसरे प्रकार की बुराई को मोल ले लिया है। आपके त्यागे हुए बुरे कर्म उन तांबे के पैसों के समान हैं जिन्हें आपने चांदी के रुपयों से बदल लिया है। ये चांदी के रुपए निंदा या आलोचना हैं, दूसरों में दोष निकालने का स्वभाव है। इससे आपकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा, आप में एक बुराई रह गई है। शुरू में शायद आप में 100 बुराइयां थी किंतु अब भले ही आप में केवल एक ही बुराई है किंतु ये एक बुराई दूसरी 100 बुराइयों के बराबर है। इसलिए ये आलोचना की मनोवृत्ति आपको सच्चे त्याग के जरा भी निकट नहीं लाती। समालोचना और बुरे विचार आपको किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं? अगर आप उन्हें ग्रहण करते हैं तो वे आपको हानि पहुंचाते हैं, यदि आप उन्हें ग्रहण नहीं करते तो वे आपको हानि नहीं पहुंचाते। ठीक जिस प्रकार एक व्यक्ति आपको पत्र भेजता है और आप उसे पाते हैं, आपके ऊपर उस पत्र का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। किंतु यदि आप उस पत्र को स्वीकार ही ना करें, उस पत्र को खोलें ही नहीं, उसे डाकखाने में वापस छोड़ आएं, तो भेजने वाले को वो पत्र वापस कर दिया जाएगा। इसे

0: प्रकार यदि और लोग बुरे विचार भेजते हैं और आप उनको ग्रहण नहीं करते तो वे बुरे विचार लौट जाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर ऊषा भट्ट की जानकारी, जिसका विषय है चिकित्सा पूर्व जांचें।
2: डॉक्टर ऊषा भट्ट जी, आप एक चिकित्सक हैं। अक्सर मरीज जब डॉक्टर के जाता है तो डॉक्टर कहता है कि जांचें करा लो, तो आखिर इन जांचों का क्या महत्व?
3: मरीज जब डॉक्टर के पास आता है, कोई बीमारी लेके ही आता है, और उस बीमारी की पुष्टि करने के लिए चिकित्सक हमेशा जांचें करवाते हैं। और जब बीमारी की पुष्टि होती है तभी उसका इलाज भी संभव है। तो इसीलिए कई प्रकार की बीमारियां ऐसे होती हैं जो कि जांचों से ही पता लगती हैं। तो उसमें पे कुछ लक्षण होते हैं। जब भी कोई मरीज आता है, कुछ लक्षण लेके आता है, साइन और सिम्टम्स कहते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं लक्षण होते हैं, और साइंस जो है वो डॉक्टर देखते हैं कि इसको क्या क्या लग रहा है। तो उनके बेसिस पे डॉक्टर अपने अनुभव के हिसाब से उनको जांचें करवाते हैं। मसलन बीमार जो कोई आया, बुखार का कोई मरीज आता है, बुखार के मरीज जो है बहुत सारे हमारे कॉजेस होते हैं बुखार के। मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, वायरल फीवर हो गया, गले में इंफेक्शन हो गया, यूरिन में इंफेक्शन हो गया, ये बहुत सारी चीजों में। कई बार जो है ब्लड कैंसर होता है, उसमें भी बुखार और कमजोरी से आता है। तो डॉक्टर को उसके सारे सिम्टम्स देख के उसको वही जांचें करानी है जो कि उनको ये लगता है कि इस वजह से ये हो सकता है। तो टाइफाइड के लिए कराएंगे या मलेरिया के लिए जांच कराएंगे, यूरिन इन्फेक्शन के लिए कराएंगे। तो जब तक वो जांचों की रिपोर्ट नहीं आती है तो तब तक उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो लक्षण है उसका केवल ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे बुखार है, बुखार के लिए वो पैरासिटामोल दे देंगे, दर्द है तो कोई दर्द की दवाई दे देंगे। जब रिपोर्ट आ जाएगी, जब जांच की पुष्टि हो जाएगी, तब उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है।
2: डॉक्टर, अक्सर मरीज ये कहते सुने गए हैं कि भाई डॉक्टर के यहाँ गए, जांचें बता देते हैं, बताइए जांचों में इतना पैसा खर्च होता है, जांचें क्या जरूरी हैं। मरीजों में अक्सर एक आम धारणा आप खुद ही देखती होंगी।
3: जी, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि अनावश्यक जो है जांचें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आवश्यक है वही जांचें होनी चाहिए। जो सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिसकी आशंका हो रही है उसी की जांचें होनी चाहिए। और ये देखने में भी आया है काफी जांचें हो जाती हैं, जिससे आजकल बहुत महंगाई भी हो गई, जांचें भी बहुत महंगी हो गई हैं। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सारी जांचें करना। तो केवल वही जांचें करानी चाहिए जिनकी आवश्यकता हो। अनावश्यक रूप से जांचें कराने के पक्ष में हम भी नहीं है, और किसी को करानी भी नहीं चाहिए। जो मिनिमम जिससे आपको डायग्नोसिस जाती है, जांच की पुष्टि हो जाती है, वो वाली जांचें करानी चाहिए।
2: डॉक्टर, एक जांच और की जाती है, कहते हैं भाई ब्लड ग्रुप।
3: जी जी जी।
2: तो ब्लड के टेस्ट से आप ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करती हैं, कैसे तय करती हैं कि इसका ये पॉजिटिव है, बी है, जी, ये जी, है जी।
3: ब्लड ग्रुप के बेसिस पे हमारे जो ब्लड में जो हमारा रक्त होता है, इसमें एक रेड ब्लड सेल होती है, एक WBC, एक जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और श्वेत होती हैं, प्लेटलेट होते हैं। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके बाहर की वॉल पे, सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं।
2: जी जी।
3: उन एंटीजन के बेसिस पे हम लोग इसको ग्रुप के पे बांटते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल है, उसके ऊपर में अगर ए एंटीजन होता है तो उसको हम ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर बी एंटीजन होता है तो बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, और रेड ब्लड सेल के ऊपर में दोनों एंटीजन होते हैं तो ए बी कहते हैं, और कोई भी एंटीजन नहीं होता तो उसको ओ कहते हैं।
2: अच्छा।
3: और ऐसे ही RH भी होता है। तो अगर ए भी है और RH भी है तो वो ए पॉजिटिव हो गया, RH पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है RH ग्रुप पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर RH नहीं है तो नेगेटिव होता है।
2: हाँ, डॉक्टर, अक्सर एक बात और कही जाती है कि भाई ये यूनिवर्सल डोनर है और ये इस ब्लड ग्रुप का एक्सेप्टर है, तो ये क्या है?
3: ये पहले की बातें थी कि जैसे ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप हम कभी भी ब्लड देते हैं तो कोई एंटीजन नहीं देना होता है बॉडी में, ताकि एंटीजन जो है वो फॉरेन बॉडी या बाहर का तत्व होता है जिससे हमारी बॉडी लड़ने की क्षमता रखती है। तो हम एंटीजन नहीं देने डीएनए के उसमें हमारा ओ पॉजिटिव जो है, ओ जो ग्रुप है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं कि वो सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी पॉजिटिव जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती उसको हम कहते हैं कि सबसे ब्लड ले सकता
2: है। अच्छा।
3: लेकिन अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ओ नेगेटिव हम एक इमरजेंसी ब्लड कहते हैं।
2: अच्छा।
3: अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब एक ये इमरजेंसी ब्लड होता है जिसमें ओ नेगेटिव पैक सेल कहते हैं उसको।
2: अच्छा।
3: उसमें अगर कोई इमरजेंसी है जैसे कोई एक्सीडेंटल आया केस और उसमें हमें ब्लड बैंक में जाके इतना देर हो जाती है, उसमें क्रॉस मैच की ग्रुपिंग की सब कुछ करना पड़ता है, आधा पौना घंटा लगता है जांच करनी, तो जब तक पेशेंट की जान बचाने के लिए हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप सेफली चढ़ा सकते हैं मरीज को।
2: अच्छा।
3: तो इसको हम इमरजेंसी ब्लड ग्रुप कहते हैं। होता है वो प्रिमिटिव बहुत पुराना होता है, उससे नए नए सेल बनते हैं।
2: जी जी।
3: तो वो सेल कितने सालों तक कॉर्ड ब्लड बैंक में रहता है, अगर उसी बच्चे को कोई बीमारी होती है तो वही सेल लेके उसको उसी लाइन में ग्रो करके उससे उसका ट्रीटमेंट किया जाता
2: जी
3: है
2: जी।
3: तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे यहाँ, तो ये बहुत कम है, अभी दो चार सिटीज में है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इसकी बहुत ज्यादा अब स्टेम सेल थेरेपी बहुत होने
2: महत्व है,
3: महत्व है, बहुत महत्व है ट्रीटमेंट के लिए, बहुत महत्व।
2: डॉक्टर साहब।

चिकित्सा पूर्व जांचें। अभी आपने सुनी उषा भट्ट की, डॉक्टर उषा भट्ट की जानकारी। इसी के साथ स्वास्थ्य संदेश का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हमारी दूसरी सभा का आरंभ होगा शाम 5 बजे आज शाम के साथ। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 5:15 पर और किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत 6:20 पर। शाम 7 बजे सुनना मत भूलिएगा कार्यक्रम श्रोता मंच। आज इस कार्यक्रम में श्री राजवीर सिंह से बात करेंगे असीम सक्सेना। पुष्पेंद्र नाथ मिश्र की गजलें कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे 7:31 पर। रात्रि 9:30 पर दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

0: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग। भाग संख्या है 313।
1: एपिसोड नंबर 313। 313।

हे राक्षस राज, तू बड़ा अभिमानी है। मैं तो रघुनाथ के सेवक का सेवक हूं। यदि प्रभु के अपमान का विचार न होता तो मैं तुझे धरती पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरी स्त्रियों सहित सीता जी को यहां से ले जाता, किंतु ऐसा करना मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जो जीते जी मृतक के समान है उसे मारने से क्या लाभ? उल्टी दिशा में चलने वाले कामी, कंजूस, मूर्ख, दरिद्र, बदनाम, अत्यंत वृद्ध, चिरंतन रोगी, हर पल क्रोधी, भगवत विद्रोही, वेद और संतों का विरोध करने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, पर निंदक और महापापी, ये 14 प्रकार के प्राणी जीते हुए भी मृतक के समान होते हैं। बस यही सोचकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। तू अब ऐसे वचन न बोल जिससे मेरा क्रोध और भड़क उठे। अंगद के ये वचन सुनकर रावण क्रोध से कांपने लगता है। सोचता है, इस वानर का काल आ पहुंचा है। श्री राम के प्रति अवमानना के शब्द सुनकर अंगद ने दांत किटकिटाकर घोर गर्जन के साथ अपने हाथ धरती पर पटके तो भूचाल सा आ गया। रावण के सभासद एक दूसरे पर गिर पड़े। रावण के जो मुकुट धरती पर गिर पड़े उन्हें अंगद ने उठाकर उस दिशा में फेंक दिया जिधर श्री राम थे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे सतीश भाटिया, संगीत सतीश भाटिया का था, कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और रविंद्र साठे। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमा प्रबंधने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च सम्बोधयन् आसीत्।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे।
1: राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः, वरिष्ठाधिकारिणः, व्यापार नेतारः, उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इषमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मंत्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतम स्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य, तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं, पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम्, उल्लासः, पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुख योजनानां एकीकृत पद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीय शिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः, प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटंस दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटंस दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाश

आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7 बजे हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम लोक रंग। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं विमलेश सिन्हा के स्वर में कुछ लोकगीत।

0: काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश,
1: हमारा भारत देश।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

0: पानी पानी,
1: कहाँ से लाऊं पानी?
0: पानी
1: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
0: पानी
1: कई दिन हो गए, पानी हलक से नहीं उतरा।
0: पानी, पानी।
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
3: पानी पानी रे।
4: जल के बिना है मुश्किल जीना, दुर्लभ हुआ स्वच्छ जल पीना। सबकी प्यास बुझाता पानी, पानी है तो है जिंदगानी।
5: जरा सोचिए, जब धरा पर रहेगा जल, तभी तो बचेगा आने वाला कल। जल की बचत, कल की सुरक्षा।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 हुए हैं, थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।

0: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए टीईटी पास करने की समय सीमा एक वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित की जाएगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 72 जिलों में बनाए गए 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम से होगी परीक्षा केंद्र की निगरानी। और प्रदेश में आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं के बीच बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। यह विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
2: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के समय प्रयास है और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब गांव विकसित होंगे।
0: सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कल कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने टीईटी को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि टीईटी केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टीईटी पास करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दिया है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। उधर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे के अनुसार, परीक्षा को पूरी शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें।
0: इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस कोरोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है। प्रदेश में बीते गुरुवार की रात से मौसम में आए परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज आंधी तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से कई जिलों में जनधन की हानि हुई है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज बारिश के चलते एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई और कुछ अन्य लोग घायल हो गए, जबकि गुरुवार देर रात शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शाकंभरी देवी मंदिर प्रबंधन ने कल तक मंदिर में दर्शन पूरी तरह बंद कर दिए हैं। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के बीच बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा गांवों के विकास से साकार होगा विकसित भारत का सपना। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, शिक्षकों के लिए TET पास करने की समय सीमा 1 वर्ष और बढ़ी। कल दो पालियों में आयोजित

0: मैं तय की हुई जगह तक न पहुंच जाऊं। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:32 हुए हैं। आपको सुनवा रहे हैं फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे, बस कुछ ही देर में।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

सूरज की पहली किरण जब धरती पर मुस्कुराती है, तब ठंडी हवाओं के साथ हर बगिया खिल जाती है। गर्मी की सुबह भी कितनी प्यारी लगती है, नई उम्मीदों की चादर ओढ़े आती है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार श्रोताओं, इस गर्मा गर्म सुबह में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। स्वीकारिए शहजी आका का नमस्कार। गर्मी का मौसम भले ही दोपहर में तपिश लेकर आता हो, लेकिन उसकी सुबह अपने साथ ताजगी, शांति और ऊर्जा का संदेश लाती है। सुबह की हल्की ठंडी हवा पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और उगते सूरज की सुनहरी किरणें, मानो प्रकृति खुद संगीत बनकर हमारे आसपास बिखर जाती है। सुरों की वो दुनिया, आवाजों का वो कारवां, जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, दिलों को छुआ और देश को एक सूत्र में पिरोया, आज यही आकाशवाणी अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर रही है।

0: कभी खबरों की पहचान बने, कभी गीतों की मुस्कान बने, हर दिल तक जो प्यार पहुंचाए आकाशवाणी वो उड़ान बने। जी हाँ दोस्तों, हम मना रहे हैं उस सुनहरी यात्रा को जिसने 90 वर्षों तक हर दिल को जोड़ा है। हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों की। ये सफर केवल समय की कहानी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, संगीत, साहित्य और भावनाओं की अमिट धरोहर है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के उपलक्ष में हमसे अपने विचार साझा कर रही हैं एक निजी इंटर कॉलेज की ऑनर श्रीमती गुलनाज फुरकान जी, और आइए कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि मैं आकाशवाणी रामपुर का हिस्सा बनी हूँ और मैं इस सफर में आकाशवाणी के 90 की इस खास यात्रा का हिस्सा बनी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउडली मोमेंट कि मुझसे इसके बारे में बात की जा रही है। स्पेशली कुछ खास चीज़ बताई जाती है इसमें, मेरे लिए बेहद खुशी और बेहद प्यारा पल है ये, क्योंकि आकाशवाणी केवल रेडियो से नहीं बल्कि भावनाओं और कल्चर संस्कृति को जोड़ने का एक खूबसूरत पुल मान लीजिए, साझा मान लीजिए, रिश्ता मान लीजिए, आप जो भी माने, बट ये बहुत प्यारा रिश्ता है। और कट कर देना,
0: क्या आपको रेडियो से जुड़ी कोई ऐसी खास बात या कोई ऐसी याद जो आज भी आपको याद आती हो, कुछ जो कुछ पल ऐसे हों जो आपको याद हों तो आप साझा कर सकती हैं हमसे?
1: जी बिल्कुल, बचपन तो बचपन है, कभी इंसान भूल ही नहीं सकता इसको, और उससे जुड़ी कुछ यादें, कुछ नहीं बहुत सारी यादें हैं जो मेरी लाइफ में मेरे अपनों के साथ हैं। सबसे पहले थी मेरे जो पापा जी के दादाजी यानी कि परदादाजी, उनका बहुत गहरा लगाव था रेडियो से, आकाशवाणी के वो प्रोग्राम सेट करवाते थे हम लोगों से। मुझे याद है कि बचपन में हम लोग बेटा इस नंबर पे लगाना ऐसा करना, और उनके साथ मिलकर हम भी सॉन्ग गाने वाने गाना सुनना, प्रोग्राम सुनना, बहुत सारे मैच की कमेंट्री लगता था, मतलब मन ऐसा होता था कि ये फेस क्या है, क्या लोग हैं, इतनी प्यारी आवाज़ें हैं, कितना अच्छा पैटर्न है, मेथड है, और हमको कहाँ से कहाँ ले जाता है, घर बैठे कहाँ पहुँचा रहा है। और दादा परदादा जी के साथ में सॉन्ग सुनना अच्छा लगता था, बहुत उनको मिस करते हैं, अभी भी आकाशवाणी सुनते हैं, कुछ करते हैं तो उनकी याद आती है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि आकाशवाणी जो हमारे दिलों से जुड़ी है, हम लोगों की जान है, और हम शायद कभी भूल ना पाए इस चीज़ को।
0: बिल्कुल मैम, आकाशवाणी वो धरोहर है जो आज भी लोगों को जोड़े रखी है, जो जिसने आज भी लोगों को जोड़े रखा है। आप इस चीज़ से कहाँ तक सहमत हैं?
1: मैं सहमत नहीं, मतलब पूरा ही 100% सहमत हूँ, ये मान लीजिए मैं 100% इसकी फ़ैन हूँ। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि जिस पिछले वर्षों से 90 सालों से देशवासियों को सूत्र में बांध के रखा है, एक प्रो के एक माला की तरह मोती मोती चुनकर रखे गए हैं, आकाशवाणी का आरंभ भारत में रेडियो प्रसारण को जन जन तक पहुँचाना यानी पब्लिक तक पहुँचाना, धीरे धीरे लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए, इम्पोर्टेंस ही बन गई है लाइफ के लिए। ग्रामीण क्षेत्र यानी रूरल हो या किसानों के लिए कोई भी खास प्रोग्राम, स्पेशल सॉन्ग विद्यार्थियों के लिए यानी कि स्टूडेंट्स के लिए, या मेरे अपनों के लिए, संगीत प्रेमियों के लिए, लवर्स संग यानी कि म्यूजिक लवर्स को बोलते हैं हम उसके, और बहुत छोटे छोटे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से मिल करके उनसे रिलेशन, उनकी बातें, आधुनिक भारत का आकाशवाणी ने देश को जोड़ने का और जागरूक करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भले ही हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, लेकिन रेडियो की वही आवाज़ आज भी दिल को छूने वाली है, दिल को छू जाती है, एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब रेडियो आकाशवाणी पर चल रहा है। तो संस्कृति, मेरा मानना यही है कि आकाशवाणी हमारी संस्कृति और भाषा दोनों ही है। हमें, मुझे फील होता है या मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, हमें गर्व है, आई प्राउड कर रहा है कि आकाशवाणी के 90 वर्षों को अपनी मधुर वाणी से

0: को एकता, ज्ञान और मनोरंजन का संदेश दिया है। बस लास्ट में यही कहना चाहूँगी, दो लाइनें हैं बोलना चाहूँगी, पसंद आइए। बदले मौसम बदले दौर, फिर भी कायम इसका गौरव और शोर, 90 वर्षों की ये अमर कहानी, हर दिल की धड़कन आकाशवाणी। थैंक यू,
1: बहुत बहुत शुक्रिया गुलनाज मैम आपका, आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।

श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर हमसे अपने विचार साझा कर रही थी श्रीमती गुलनाज फुरकान, जो कि एक इंटर कॉलेज की प्रबंधक हैं। श्रोताओं, अब बात करते हैं आज के खास दिन की। आज 30 मई और आज हम मना रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस, यानी हिंदी जर्नलिज्म डे। कलम की ताकत ने जग को उठाया है, सच्चाई की राह पर चलना सिखाया है। हर शब्द में छुपा है देश का अभिमान, हिंदी पत्रकारिता है भारत की शान। आज ही के दिन वर्ष 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदम मादर्ड यानी द राइजिंग सन शुरू किया था। इसी ऐतिहासिक पल की याद में हम आज का दिन मनाते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो समाज में जागरूकता लाने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है। जो सच को आवाज दे वही पत्रकार कहलाता है, जो अंधेरों में दीप बने वही समाज को राह दिखाता है। पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं बल्कि समाज का आईना है। ये जनता की आवाज बनकर हर सच को सामने लाता है और लोगों को जागरूक करता है। हिंदी पत्रकारिता ने देश की स्वतंत्रता से लेकर आज के आधुनिक भारत हर दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी ये हमारी संस्कृति का रक्षक है। शब्दों की मशाल लेकर जो आगे बढ़ जाते हैं, सच की खातिर हर मुश्किल से लड़ जाते हैं, उन पत्रकारों को आज हमारा सलाम, जिनसे रोशन होता है देश का नाम।

श्रोताओं, बात करते हैं आज के इतिहास की। आज 30 मई के इतिहास में क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं। साल 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अंग्रेजों द्वारा दी गई नाइटहुड सर की उपाधि लौटा दी थी। 1998 में आए अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप में लगभग 5,000 लोगों की मौत हुई। 2012 में आज ही के दिन विश्वनाथन आनंद ने इसराइल को बोरिस गेलफ्रेंड को हराकर 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता। और अब जानते हैं आज जन्मी हस्तियों के बारे में। पंडित मुखराम शर्मा, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1909 में हुआ था, आप भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध कथा और पटकथा लेखक थे। भारत के प्रख्यात सितार वादक देबू चौधरी का जन्म भी आज ही के दिन 1935 में हुआ था। वर्ष 1985 में जन्म हुआ लोकप्रिय भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री जेनिफर विंगेट का। और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता परेश रावल जी का जन्म भी आज ही के दिन 1955 में हुआ था। श्रोताओं, ये तो थी जन्मतिथि, और अब आइए जानते हैं आज हुई पुण्यतिथियों के बारे में। गुरु अर्जन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु हैं, आपका शहीदी दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। आपका देहांत वर्ष 1606 में हुआ था। रामविलास शर्मा, जो कि आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार और कवि, आपका निधन भी वर्ष 2000 में आज ही के दिन हुआ था। श्रोताओं, ये तो था आज का इतिहास। और श्रोताओं, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय गोवा दिवस की। गोवा यानी वो खूबसूरत शहर जिसको कहा जाता है कि समुद्र की लहरों सा संगीत जहां, रेत पर खिलता खुशियों का जहां, संस्कृति सौंदर्य और अपनापन खास गोवा की धरती देती है सबको उल्लास। जी हां श्रोताओं, गोवा एक ऐसा शहर जिसको आज ही के दिन 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और ये भारत का 26वां राज्य बना। वो शहर जहां प्रकृति की मुस्कान, संगीत की धुन और संस्कृति की रंगीन छटा एक साथ दिखाई देती है। ये एक पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, इतिहास, समुद्री सौंदर्य और खुशमिजाज जीवन शैली का अद्भुत संगम है। यहाँ के समुद्र तट, चर्च, मंदिर, लोक नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजन दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ की फिजा में संगीत बसता है और हर चेहरा मुस्कान से खिलता है। यहाँ की पहचान केवल यहाँ के बीच नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का अपनापन है। और यहाँ की खूबसूरत शाम, इसीलिए कहा जाता है कि लहरों की ताल पर गाता है गोवा, हर दिल को अपना बनाता है गोवा, रंगों, खुशियों और प्यार की पहचान, भारत का चमकता हुआ अरमान।

किया को कोई सब्जा मिली का कोई खुशियारी।

श्रोताओ, अब बात करते हैं ऐसी सब्जी की जो केवल हर दिल अजीज नहीं बल्कि सभी को भाती है, जो केवल एक सब्जी नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों के भोजन और पोषण का आधार है। इसलिए हर साल 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। आलू सबसे लोकप्रिय फसलों में से एक है। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ ऊर्जा, विटामिन और पोषण से भरपूर होता है। इसमें विटामिन सी, पोटेशियम और सारस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि एक पोषक तत्व से भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। आलू में लगभग 75 से 80% पानी होता है, जिसे शरीर में जमा करके रखने में मदद मिलती है। गांव की रसोई हो या शहर का होटल, आलू हर जगह अपनी जगह बना लेता है। हर थाली की मुस्कान है आलू, हर पकवान की पहचान है आलू। गरीब अमीर सबको भाए, सचमुच बड़ा महान है आलू। जी हाँ श्रोताओ, सादा सा दिखने वाला आलू हर दिल का बन जाता है प्यारा। कभी समोसे में मुस्कुराए तो कभी पराठों में लगे न्यारा। जो हर सब्जी का साथी है, हर स्वाद की जान है और हर रसोई की शान है। बच्चों के फ्रेंच फ्राइज से लेकर दादी माँ के आलू के पराठों तक हर उम्र के लोगों का इससे खास रिश्ता है। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर पौष्टिक भोजन अपनाने, भोजन की बर्बादी को रोकने और किसानों का सम्मान करना सिखाता है, जो खेतों में मेहनत करके हमारी थाली तक अन्न पहुंचाते हैं। उन सभी किसानों पर हमारा शत शत प्रणाम हो।

श्रोताओं अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आकाशवाणी रामपुर से इसी तरह जुड़े रहिए और आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की जैसी आगा को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।

0: खराब। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: घर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
6: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, इस भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
5: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
7: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
5: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ

0: दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तरह बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी भी है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वह भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
4: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
5: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rain, fall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinched 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
7: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it, and similarly for crude also we are working.
6: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia region. He said Indian embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals.
8: Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines. They are also in close touch with the local governments. Advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. We are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns.
6: Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, informed that the merchant vessel Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz and is expected to arrive in Vishakhapatnam on the 3rd of June. He said the vessel is carrying around 270,000 metric tons of crude oil.
9: A merchant vessel, Nissos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25-26 and is bound to arrive at Vishakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 270,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe.
6: The Ministry of Health and Family Welfare has released the National Family Health Survey 6 with the data reflecting India's accelerated progress in maternal and child health, nutrition and financial protection. The survey released yesterday highlights that institutional deliveries increased from 88.6% to 90.6%. We have a detailed report.
0: The National Family Health Survey 6 showed 95.9% of pregnant women received antenatal care, while mothers receiving antenatal care in the first trimester increased from 70% to 76.2%. It also said that India's total fertility rate, TFR, remains at 2 and vaccines received by children aged from 12 to 23 months remains consistently high above 96%. The Health Ministry said that these improvements underscore the continued impact of national family planning programs, including Mission Parivar Vikas. The survey also records continued advancement in women's digital inclusion and financial empowerment. It said that women who had ever used the internet nearly doubled from 33.3% to 64.3%. The survey said that Ayushman Bharat, PMJAY, and expanded health protection initiatives strengthen financial security in healthcare. With Akshit, Swati Rakheja, Akashwani News, Delhi.
6: President of Myanmar, U Min Aung Hlaing, will arrive at Bodh Gaya in Bihar this morning on a 5-day visit to India. He will be accompanied by a high-level delegation comprising several cabinet ministers, senior officials and business leaders. This will be the first visit of President Hlaing to India in his current capacity. We have a report.
10: President of Myanmar, U Min Hoang Lang, will offer prayers at Mahabodhi Temple and Sujata Temple in Bodh Gaya. Later today, he will arrive in New Delhi, where he will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. On Monday, he will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi on further strengthening the historical and civilizational ties between the two countries. Briefing the media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said all issues that form the part of the gamut of relations between Myanmar and India will come up for discussions during meeting between the two leaders.
2: This is Myanmar's president's first visit and first visit to India in his official capacity right now. Myanmar is a neighbor. It lies at the confluence of India's neighborhood first, Act East and Mahasagar policies. This visit is expected to further strengthen and deepen the multifaceted relations between the two countries.
10: As a part of the visit, the Myanmar president will also travel to Mumbai on 2nd of June for business and industry interactions and site visits. With Suparna and Anupam, this is Jigyasa Pandey, Akashwani News, Delhi.
6: Outgoing Karnataka Chief Minister Siddaramaiah has called a Congress Legislative Party CLP meeting at 4 p.m. today to elect its new leader, with D.K. Shivakumar emerging as the frontrunner to succeed him. Governor Thavarchand Gehlot has accepted Mr. Siddaramaiah's resignation and asked him to continue as caretaker Chief Minister until a new leader is chosen. All 136 Congress MLAs have been issued a circular to attend the CLP meeting. AICC General Secretary and Karnataka in charge Randeep Singh Surjewala will observe the proceedings. After the new CLP leader is elected, he will meet the governor to seek permission to form the government and finalize the date for the swearing-in of the Council of Ministers. Our correspondent reports that the cabinet formation exercise has already started, with many aspirants trying to get ministerial berths. In Punjab civic body elections, the ruling Aam Aadmi Party, AAP, has won 958 of the 1,977 wards across 8 municipal corporations, 75 municipal councils and 19 Nagar Panchayats. The Congress won 397 wards, while the Shiromani Akali Dal won 192 and the BJP secured 172 wards. The BSP managed just 7 wards. Interestingly, independents secured 251 wards, placing them third. A total of 7,554 candidates contested in these urban local body elections held on the 26th of this month. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Murmu has extended greetings to the people of Goa on its statehood day today. The president said that Goa is renowned not only for its rich cultural heritage and warm hospitality, but also for its remarkable progress in education, technology, startups and sustainable development. Meanwhile, Vice President C.P. Radhakrishnan will participate in the Statehood Day celebrations at the Kala Academy in Panaji today. More from our correspondent.
11: The Statehood Day celebrations in Goa today will highlight the state's remarkable transformation over the last four decades. After liberation from Portuguese rule in 1961, Goa became a union territory along with Daman and Diu. A defining moment came in 1967 when Goans voted in the historic opinion poll to retain Goa's distinct identity. The recognition of Konkani as the official language in 1987 paved the way for statehood, and Goa became India's 25th state on 30th May that year. Today's program includes a release of a commemorative stamp on renowned cartoonist Mario Miranda, a launch of profitable book, presentation of awards and citizen welfare initiatives. Later in the day, the Vice President will visit the CSIR National Institute of Oceanography in Goa, where he will tour research and technology exhibits and interact with scientists and release a profitable book of CSIR NIO. Mahesh Sopra, Akashwani News, Panaji.
6: Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the people of Goa. He said this occasion is an opportunity to remember all those who worked tirelessly for the state's progress and identity. The Special Intensive Revision SIR of Electoral Rolls begins in Odisha today. The month-long exercise being conducted by the Election Commission of India will continue till the 28th of June and cover over 3.33 crore voters across the state. The revision aims to update the voters list by removing duplicate, deceased and ineligible entries while including all eligible voters. More than 45,000 booth-level officers have been deployed for door-to-door verification and distribution of forms. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted a thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbh and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. In sports, India continued its impressive performance at the Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, taking its medals tally to 8, including 4 golds, 2 silver and 2 bronze, and climbing to second place in the standings behind China. On the second day of the competition yesterday, Indian athletes won 7 medals, including 4 golds. The standout performance came from 19-year-old Pooja Singh, who clinched the gold in the women's high jump with a leap of 1.93 meters. India's other 3 gold medals came from Nitin Gupta, who won the men's 5,000-meter race walk, while Amanat Kamboj topped the women's discus throw and Rahul Jakhar bagged the yellow medal in the men's decathlon. In cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. With this victory, Gujarat Titans have set up the title clash against defending champions Royal Challengers Bengaluru, which will be played in Ahmedabad tomorrow at 7:30 p.m. Chasing a formidable target of 215 runs, the 2022 champions produced a batting masterclass, reaching 219 for 3 in just 18.4 overs. Skipper Shubman Gill led from the front with a scintillating 104 off 53 balls, while Sai Sudarshan scored 58 runs. Gill was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
5: Thank you, Naresh. Ministry of Home Affairs clears record CAPF deployment for 57-day Amarnath pilgrimage, says the Pioneer. IMD lowers monsoon outlook and puts off date of onset to June, is a top headline in the Hindu. Decades driest monsoon looms. Met cuts estimate to 90% of 50-year average, notes the Indian Express. Under the headline, next energy challenge, cheap power, costly transition, Financial Express writes that though consumers understand the long-term savings for a push to green energy, the challenge is affordability at the point of purchase. Hindustan Times carries a picture of Blue Origin's New Glenn rocket exploding in a massive fireball during a test on a Florida launch pad as the firm was preparing the vehicle for its fourth launch, slated to deploy a batch of satellites for Amazon's Leo. In its editorial, Breather for Now, For How Long? The Times of India writes that as a tentative US-Iran deal awaits Trump's signature, the global economy is hoping for a break. But geopolitics as well as politics in Trump camp and among Iran hardliners means conflict can restart after a few months. And finally, demand for gold turning cold on steep duty hike. Under that headline, the Economic Times says that gold sales have fallen 70% on muted consumer sentiment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
6: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां।
13: مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازارائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں۔ خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچے کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے۔ ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے۔ میانمار کے صدر مین آنگ لینگ بھارت کے 5 روزہ

0: अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने सरकारी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों से कहा है कि वो एलपीजी के जखीरे कम से कम 30 दिन के लिए कायम करें, क्योंकि मगरबी एशिया में महाजाराई से तवानाई की आलमी सप्लाई में बार बार रुकावट आ रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने यह बात मगरबी एशिया महाजाराई के बारे में बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल नामनिगारों से बात करते हुए कही। सप्लाई में रुकावट की रोकथाम से मुतालिक एहतियाती इकदामात का जिक्र करते हुए मोहतरमा शर्मा ने कहा कि भारत खाम तेल को जखीरा करने की गुंजाइश में इजाफे के लिए भी काम कर रहा है। मोहतरमा शर्मा ने कहा कि हुकूमत अहम जखीरों और बिला रुकावट सप्लाई को यकीनी बनाकर ईंधन की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम बनाने पर भी काम कर रही है। इसके अलावा जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने खानदानी सेहत का छठा कौमी जायजा जारी किया है, जिसमें आदाद शुमार से माँ और बच्चे की सेहत, तगजिए और माली तहफ़ के मैदान में भारत की खातिर खा तरक्की का पता चलता है। ये जायजा कल जारी किया गया, जिससे ये बात खास तौर पर पता चली है कि इदारों में की गई जजगी में जो पहले 88.6% थी, इजाफा होकर 90.6% हो गई है। एक तफसीली रिपोर्ट।
1: आदाद शुमार से पता चला है कि 95.9% हामला खवातीन को जज्जी के बाद की निगहदाश्त मिलती है, जबकि माओं को पहली सेमाही में मिलने वाली जज्जी के बाद की निगहदाश्त में भी इजाफा हुआ है। पहले ये 70% थी, जबकि अब ये 76.2% हो गई है। जायजे में कहा गया है कि भारत में ख्वातीन के हमला होने की मजमूई शरह TFR 2% बरकरार है और बच्चों की टीकाकारी से खानदानी मंसूबाबंदी के कौमी प्रोग्रामों के असरात की अहमियत जाहिर होती है, जिसमें मिशन परिवार विकास भी शामिल है। जायजे में ख्वातीन की डिजिटल शमूलियत और माली तफवीज अख्तियार के मैदान में लगातार पेशरफ भी जाहिर की गई है। यह भी कहा गया है कि जिन ख्वातीन ने कभी न कभी इंटरनेट इस्तेमाल किया है, उनकी तादाद तकरीबन 2 गुना हो गई है। पहले ये 33.3% थी, जबकि अब ये तादाद 64.3% हो गई है। सर्वे में बताया गया है कि आयुष्मान भारत, PMJAY और हिफ्जान सेहत के तौसी शुदा इकदाम से हिफ्जान सेहत में सबके लिए पैसे की यकीनी फराहमी का इस्तेहकाम पैदा हुआ है। वजारत ने बताया कि इस दरियाफ्त से तरक्याती मकासद हासिल करने की राह में भारत लगातार तरक्की कर रहा है। स्वाति रखेजा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: म्यांमार के सदर मिन होंग यांग भारत के 5 रोजा दौरे पर आज सुबह बिहार के बौद्धगया पहुंचेंगे। उनके हमरा एक आला सतह का वफद भी होगा, जो बहुत से काबीना वजीरों, सीनियर अफसरों और सरकर्दा ताजिरों पर मुश्तमिल होगा। सदर मिन का उनकी मौजूदा हैसियत से भारत का यह पहला दौरा है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: म्यांमार के सदर यू मिन ऑंग ह्यांग बोधगया में महात्मा बोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज बाद में उन्हें दिल्ली पहुंचेंगे, यहां वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि कल वो म्यांमार भारत तेहती फोरम में शिरकत करेंगे। पीर को वजी आजम नरेंद्र मोदी के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल करेंगे। नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए वज़ीरे ख़ारिजा के तर्जमान रंजीत जायसवाल ने कहा कि उन सभी मामलात पर जो म्यांमार और भारत के दरमियान बहुत से पहलुओं पर मबनी ताल्लुकात का हिस्सा है, दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
3: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
1: दौरे के हिस्से के तौर पर म्यांमार के सदर 2 जून को मुंबई जाएंगे, जिसका मकसद ताजिरों और सनतकारों से बातचीत करना और मौकों का दौरा करना है। हमारे नामनिगार ने बताया कि म्यांमार भारत की पड़ोसी मुकदम मशरक पर खसूसी तवज्जो और महासागर पॉलिसियों का कायल है। म्यांमार के सदर के भारत के सरकारी दौरे से उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान कसीर जहती ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और गहराई पैदा होगी। सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कर्नाटक के सुबुकदोश हो रहे वजीर आला सिद्धारमैया ने नया रहनुमा मुंतखब करने के लिए आज सपहर 4 बजे कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग तलब की है। इस दौरान DK शिवकुमार वजीर आला सिद्धारमैया की जगह लेने की दौड़ में सबसे आगे हैं। गवर्नर थावर चंद गहलोत ने जनाब सिद्धारमैया का इस्तीफा कबूल कर लिया है और नए रहनुमा के चुने जाने तक

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर, मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
1: और अब कार्यक्रम का अगला गीत सचेत टंडन की आवाज में, फिल्म का नाम है अर्जुन पटियाला।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर से मॉर्निंग हिट्स कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए लेकर आए हैं श्रेया घोषाल की आवाज में। फिल्म का नाम है एक्शन रिप्ले।

0: अभी आप सुन रहे थे मॉर्निंग हिट्स। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:15 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे
1: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संत कबीरनगर और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संत कबीरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
2: संत कबीरनगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट परिसर में बुजुर्गों के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की। ट्रेजरी कार्यालय के निकट नवनिर्मित पेंशनर कक्ष का उद्घाटन जिलाधिकारी ने जनपद की सबसे बुजुर्ग पेंशनर 95 वर्षीय दुलारी देवी से फीता कटवाकर कराया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने दुलारी देवी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस कक्ष के बनने से अब पेंशनर को कलेक्ट्रेट आने पर बैठने और आराम करने की बेहतर सुविधा मिलेगी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कोषाधिकारी त्रिभुवन लाल और पेंशनर संघ के अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव सहित कई सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन की संवेदनशीलता की सभी पेंशनर ने सराहना की है। संत कबीर नगर जनपद की प्रभारी मंत्री और प्रदेश की राज्य मंत्री ग्राम विकास एवं समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिनों खैलाबाद स्थित डाक बंगले में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में महिलाओं के अधिकार संबंधी बिल पेश किए जाने के दौरान राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं ने जिस तरह की टिप्पणी की और मजाक उड़ाया वह देश की आधी आबादी के लिए काला दिन था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने महिलाओं के अधिकारों को संसद में छीनने का प्रयास किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश और देश की महिलाएं जन आक्रोश के साथ वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर इस गठबंधन को खदेड़ने का काम करेंगी। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने तहसील खैलाबाद के ग्राम पंचायत पटखौली में रवि वर्ष 2025-26 के तहत गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग का औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण सीसी ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप में संपन्न हुआ। डीएम की मौजूदगी में चयनित किसान शैलेश कुमार के गाटा के दायरे में फसल की कटाई कराई गई, जिसमें कुल 19.700 किलोग्राम प्लाट उपज प्राप्त हुई। इस आधार पर क्षेत्र में गेहूं की औसत पैदावार 45.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अनुमानित की गई। संत कबीर नगर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी जयकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 1600 का लक्ष्य मिला है, जिसे बैंकों को भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स और जिला समन्वयकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों को निपटारा 1 सप्ताह के भीतर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लीड बैंक मैनेजर पवन कुमार सिन्हा को उद्योग विभाग की योजनाओं का लगातार फॉलो अप करने के निर्देश दिए गए। संत कबीरनगर जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की समीक्षा बैठक की। वर्ष 2026-27 के लिए जिले को मिले 1600 के लक्ष्य को बैंकों को भेजते हुए डीएम ने लंबित ऋण आवेदनों को 1 सप्ताह में निपटाने के कड़े निर्देश दिए। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले अग्रणी जिला प्रबंधक पवन कुमार सिन्हा, क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रसाद और युवा उद्यमियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर संदीप कुमार मीना द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स परिसर में निर्माणाधीन आधुनिक जिम एवं गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यदायी संस्था को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाए और मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। उन्होंने सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि पुलिसकर्मियों को जल्द ही इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने जिम में आधुनिक फिटनेस उपकरण उपलब्ध कराने का, गेस्ट हाउस में बेहतर वेंटिलेशन, स्वच्छता और भविष्य के लिए रखरखाव आदि को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। संत कबीर नगर जनपद में कानून व्यवस्था और जेल की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आलोक कुमार व पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने जेल परिसर के भीतर सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा और जेल अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान बैरक, मेस और पूरे जेल परिसर की सघन चेकिंग की गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कैदियों से सीधे वार्ता कर उनकी समस्याओं और मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ड्यूटी पर मौजूद सभी कारागार कर्मियों को सख्त हिदायत दी कि जेल के अंदर किसी भी परिस्थिति में कोई भी प्रतिबंधित सामग्री नहीं जानी चाहिए और सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता व सही तरीके से करें। साथ ही जेल परिसर की साफ सफाई को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण के बाद जिला कारागार में कैदियों के हुनर और सुधार की दिशा में एक नया कदम बढ़ाते हुए नवनिर्मित बेकरी का फीता काटकर भव्य उद्घाटन भी किया गया। इस पूरे निरीक्षण उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक PRO PK गुप्ता सहित अन्य जेल अधिकारी और भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे।
1: संत कबीरनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
3: झांसी में मई के महीने में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने पर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर स्कूल और खेल अकेडमी के समय में बदलाव किया गया। खुले मैदान में दोपहर के समय खेल गतिविधियों पर रोक लगाई गई तथा बच्चों और बुजुर्गों को अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। नगर निगम द्वारा प्रमुख चौराहों पर प्याऊ शीतल जल केंद्र और छायादार शेड लगाए गए। प्रदेश के कई शहरों की तरह झांसी में भी गर्मी से राहत के लिए सार्वजनिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए विशेष हेल्पलाइन और चिकित्सा व्यवस्था सक्रिय रखी। जिला अस्पताल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक वार्ड तैयार किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेषकर झांसी को औद्योगिक और ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने की योजनाओं को गति मिली। झांसी सोलर पार्क परियोजना तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर कार्य आगे बढ़ा। शासन स्तर पर रोजगार और औद्योगिक विकास को लेकर लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी रहा। झांसी मंडल में सड़क और रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास भी जारी रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण, ग्रामीण संपर्क मार्गों की मरम्मत तथा शहर के यातायात प्रबंधन को लेकर कई योजनाओं पर काम तेज हुआ। शहर में ट्रैफिक सुधार और अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान को और गति दी गई। वार्ड स्तर पर सफाई निरीक्षण किए गए तथा खुले में कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माने की कार्यवाही हुई। शहर के प्रमुख बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की निगरानी बढ़ाई। कई गांवों में टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की गई। खराब हैंडपंपों की मरम्मत तथा पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया गया। शिक्षा विभाग की बात करें तो ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले विद्यालयों में सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा नामांकन अभियान को गति दी गई ताकि इस नए शैक्षिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल से जोड़ा जा सके। कृषि क्षेत्र में किसानों को गर्मी और सूखे की स्थिति से बचाने के लिए कृषि विभाग ने सलाह जारी की। किसानों को कम से कम पानी वाली फसलें, सिंचाई प्रबंधन और पशुओं की सुरक्षा के लिए जागरूक किया गया। कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जिले में जल संरक्षण और तालाब पुनर्जीवन अभियान को लेकर प्रशासन सक्रिय दिखाई दिया। मनरेगा के अंतर्गत तालाबों की सफाई और ग्रामीण जल संरचनाओं के संरक्षण का कार्य जारी रहा। महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय रहा। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालयों और कॉलेजों में महिला हेल्पलाइन और साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए साइबर सेल द्वारा लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने की सलाह दी गई। पुलिस ने कई मामलों में कार्रवाई करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की। धार्मिक और सामाजिक आयोजन को लेकर भी जिला प्रशासन अलर्ट रहा। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए। सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सोशल मीडिया से जुड़े मामलों में पुलिस कार्रवाई भी चर्चा में रही। खेल गतिविधियों की बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड क्षेत्र में क्रिकेट, हॉकी और एथलीट प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन जारी रहा। भीषण गर्मी को देखते हुए सुबह के समय अभ्यास कराने की व्यवस्था की गई। खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई और प्लेटफॉर्म प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। गर्मी के मौसम में यात्रियों को राहत देने के लिए स्टेशन परिसर में सुविधाएं बढ़ाई गयी। स्वास्थ्य विभाग ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की तैयारी भी शुरू कर दी है। बीमारियों से बचाव के लिए फॉगिंग और साफ सफाई अभियान चलाया गया। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीमें संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर रही हैं। युवा और रोजगार से जुड़ी योजनाओं में कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। विभिन्न विभागों द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश सरकार की निवेश और विकास योजनाओं के तहत बुंदेलखंड को विशेष प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और औद्योगिक परियोजना को गति देने पर जोर दिया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त फ्लैग मार्च भी किए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी रखी गई। गर्मी और जल संकट के बीच पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी कई अभियान चलाए गए।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: जिले की हलचल। अभी आप सुन रहे थे संत कबीर नगर और झांसी जिलों की हलचल। मीडियम वेव
0: 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:25 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं गौरव भारत देश के, इसमें आज का प्रसंग है बंकिम चंद्र चटर्जी।
5: अमर गीत वंदे मातरम के उद्बोधक है कवि महान, भारत भू की महिमा गाकर जगा दिया सोया अभिमान। ओजस्वी कविता से बंकिम चंद्र अंगार क्रांति बरसाते हैं, अपने जीवन की ज्योति जला जीवन ज्योतित कर जाते हैं। राष्ट्र मंत्र गीत के उद्गाता बंकिम चंद चट्टोपाध्याय का जन्म 26 जून 1838 में हुआ था। पिता विशंभरनाथ भट्टाचार्य के निर्देशन में शिक्षा का आरंभ कॉलेजियत स्कूल मिदनापुर में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट कॉलेज की विधि विभाग से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करते ही यशोहर जिले में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त हो गए। बात सन 1858 की है। 1888 में

0: भारतीय होने के कारण पदोन्नति न होने पर स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले ली। बंकिम बाबू पर उनके पितामह और ईश्वर चंद्र गुप्त की रचनाओं और पूर्ववर्ती लेखकों का व्यापक प्रभाव था। 1874 में उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की और 1882 में आनंद मठ उपन्यास लिखा। इसके अतिरिक्त मृणालिनी, विश्ववृक्ष, देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास लिखे। बंकिम चंद ने सदियों से सोए देश को जगाने का कार्य किया। मातृभूमि के सच्चे सपूत बंकिम चंद देश के महान विचारकों में से एक थे। अद्भुत देशभक्ति के कारण ही वो जन जन के कंठहार बन गए। राष्ट्रगीत के इस अमर रचयिता महान देशभक्त बंकिम चंद चटर्जी को हमारा शत शत नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।
2: एक बार सोच के देख जरा, क्या जल बिन तुम जी पाओगे? तरस जाओगे बूंद बूंद को, जो व्यर्थ में जल को बहाओगे।
3: बिन पानी जीवन बदहाली, पानी से ही है खुशहाली।
4: जल है असली सोना, इसको कभी मत खोना।
2: अगर चाहते हैं भविष्य सुरक्षित बनाना, तो बेहद जरूरी है जल को बचाना।
3: पानी की रक्षा, देश की सुरक्षा।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
2: ये है आकाशवाणी रामपुर, जिसे सुन रहे हैं आप मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम
5: लखनऊ के मरकज से, जिसमें आइए सुनते हैं उर्दू अदब में जदीद अफसाना निगारी पर गुफ्तगू। आज के मेहमान हैं आतियाबी और समनुदेशिती है सैयद मोहम्मद उमेर की, आइए सुनते हैं।
6: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमेर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब, कबूल फरमाएं। सामीन, उर्दू अदब में अफसाना निगारी एक अहम और मकबूल तरीन सिन्फ़ अदब है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। उर्दू अफसाना अपने आगाज से ही इंसानी जिंदगी के जज्बात, मसाइल, समाजी तगयुरात और तहजीबी अकदार का आईना रहा है, लेकिन वक्त के बदलते तकाजों के साथ साथ अफसाना निगारी में भी नए रुझानात, नई फिक्र और नई असालीब ने जन्म लिया, जिसे हम जदीद अफसाना निगारी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जदीद उर्दू अफसाना सिर्फ वाकयात के बयान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने इंसान के बातिन, नफसियाती कशमकश, तन्हाई, बेचैनी, माशरती इंतिशार और बदलती हुई कदरों को बड़ी गहराई के साथ पेश किया। तरक्की पसंद तहरीक के बाद जदीदियत ने अफसाने को एक नई सिमत अदा की, जहां अलामत, तजरीद, दाखली एहसासात और फिक्री पेचीदगियों को खास अहमियत हासिल रही, वहीं जदीद अफसाना निगारों ने रिवायती

0: रजिया सज्जाद जहीर ने लिखे, इस तरह से मुशर्रफ आलम जौकी ने बड़े अहम अफसाने लिखे हैं, फ्रिज में औरत या बेटी, ये मुशर्रफ आलम जौकी के बहुत ही अहम तरीन अफसानों के नाम हैं।
1: बहुत अच्छा कहा कि जदीद अफसाना निगारी में औरत को एक बाशऊर खुद मुख्तार शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है और इसके समाजी घरेलू मसाइल को हकीकत का रूप देकर पेश किया गया है, बयान किया गया है, जिसमें बहुत से अफसाना निगार आपने जिनके नाम लिए काबिले जिक्र हैं। एक सवाल और यहाँ पर करेंगे, आपने शुरू में कौमी यकजहती का हवाला दिया था, कौमी यकजहती के ताल्लुक से करेंगे कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के अनासिर किस हद तक मौजूद हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जी हाँ, जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती का रंग आपको जा बजा देखने को मिलता है और काफी अफसाने लिखे गए, काफी पहलुओं पे अफसाने लिखे गए और आज से नहीं, मेरे ख्याल से मंटो ने भी लिखे हैं इस पे और रजिया सज्जाद जहीर ने भी लिखे हैं। सभी को पता है कि टॉबा टेक्सिंग बहुत ही मशहूर अफसाना एक रहा मंटो का, और जिसमें उन्होंने एक ऐसा इंसान जो कि पागलपन के उरूज पर पहुंच चुका था और पाकिस्तान की जेल में था, टॉबा टेक्सिंग, और क्योंकि वो नाम उसका टॉबा टेक्सिंग नहीं था लेकिन वो टॉबा टेक्सिंग जगह का रहने वाला था और उसको इतनी ज्यादा उनसियत उस जगह से थी कि वो पागल होने के बावजूद भी अपनी जमीन से इतनी बेपनाह मोहब्बत करता था कि वो हर पागलखाने में आने जाने वाले जो उससे मिलने आता था उससे यही पूछता था कि टॉबा टेक्सिंग कहाँ है। और उसका नाम जो था वो बिशन सिंह था लेकिन उसको लोग जानते टॉबा टेक्सिंग के नाम से ही थे। और आखिर में भी यही होता है कि जब लोगों को ये फैसला आता है कि हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम पागल हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान के हिंदू पागल हिंदुस्तान लाए जाएंगे, बंटवारे हो चुका होता है, उस वक्त टॉबा टेक्सिंग को जब लाया जाता है तो वो सरहद पे खड़े होकर सिर्फ यही बात कहता है कि टॉबा टेक्सिंग कहाँ है। और जब उसे पता चलता है कि वो पाकिस्तान में है तो वो जाने को हरगिज तैयार नहीं होता, उसे ये मतलब नहीं है कि वो किस जमीन पर है, सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने से बंटवारे नहीं होते, कौमी यकजहती का रंग वहीं पर वो खत्म हो जाता है और आधा हिस्सा उसका पाकिस्तान और आधा हिंदुस्तान में रह जाता है। इसी तरीके के बहुत से अफसाने हैं।
1: बहुत अच्छा कहना है कि जदीद अफसाना निगारी में कौमी यकजहती, भाईचारा और समाजी हम आहंगी के अनासिर नुमाया तौर पर मौजूद हैं और हमें मिलते हैं, जो मुआशरे को मुस्बत पैगाम देते हैं और इससे अफसाना निगारी ने बहुत अहम तरक्की भी की है। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, आपने बहुत सारे अभी अफसाना निगारों के नाम लिए, तो अहद हाजिर में जदीद अफसाना निगार कारी या सामे के लिए महज तफरी फराहम कर रहे हैं या गौर व फिक्र की भी दावत दे रहे हैं अपने अफसानों में, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जदीद अफसाना निगारों में आज भी बहुत अहम अफसाना निगारों के नाम आते हैं, जिनमें अभी कुछ दिन पहले गुजरे हुए अफसाना निगारों में रामलाल जी का नाम है और इस तरह के अभी मौजूदा अफसाना निगारों में आयशा सिद्दीकी साहिबा हैं या सबिया अनवर साहिबा हैं और मोहसिन खान साहब हैं और तमामों दीगर ऐसे अफसाना निगार हैं जो आज भी सिर्फ तफरी का सामान नहीं फराहम कर रहे हैं, वो उनके इसलाह का काम बराबर चल रहा है और वो अपने अफसानों के जरिए उनके में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, ख्वाह वो डिजिटली तौर से हो, ख्वाह वो किताबी शक्ल में हो, किसी भी तरीके से हो। अफसाने का मकसद ही यही होता है कि समाज को इसलाह के दायरे से बाहर नहीं रखना है, इसलाह दर इसलाह करते जाना। तो अफसाना निगार जितने भी हैं चाहे कोई भी हो, वो हर वक्त इसलाह के लिए ही अफसान गए, सिर्फ तफरी का कोई जरिया, क्योंकि तफरी के जरिए में उन पहलुओं को नहीं उजागर किया जाता है जो कहीं समाज में दब के रह गए, जिन पे लोग को भी गौर नहीं करते या लोग उन पे रोशनी डालने का कोई, अरे ये तो बहुत बोरिंग पहलू है, तो बोरिंग नहीं है, वो एक नजरिया है जिस नजरियों को उजागर करना है एक अफसाना निगार का बहुत अहम फरीजा है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जदीद अफसाना निगार सिर्फ तफरी फराहम नहीं करते, ये आपने बिल्कुल वाज़े किया, बल्कि कारी और सामे को जिंदगी और मुआशरे के मसाइल पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं। यहाँ अभी आपने सोशल मीडिया का तذکرہ किया और इसी तरह डिजिटल का भी तذکرہ किया, एक सवाल इसका लेंगे कि मौजूदा डिजिटल दौर और सोशल मीडिया ने जदीद उर्दू अफसाना निगारी को किस तरह मुतासिर किया है, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जैसे भी हमने पहले भी कहा आपसे कि सोशल मीडिया क्योंकि लाइफस्टाइल को बहुत मुतासिर करता है, आज का दौर ही डिजिटल युग है, डिजिटल दौर में आज हम जिंदा हैं, हर काम हमारा इवन की फोन से लेकर के टेप रिकॉर्डर हो, डिजिटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, हम उस पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन चूंकि सोशल मीडिया जो है वो बहुत मुतासिर करता है अफसाने को, इसमें बहुत सारे पहलू आ जाते हैं, इसमें अफसाने की इशात बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी फौरन फौरन इशात हो जाती है, जबकि पहले बहुत वक्त

0: लगता था आसानी की इशात के लिए। सोशल मीडिया के दौर में इसकी बहुत ही आसानी हो गई। मुख्तसर अफसानों की तरफ रुझान लोगों का बढ़ा है क्योंकि अब वक्त कम होता है लोगों के पास, तो मुख्तसर तरीके से
1: और दे रहे हैं क्योंकि अब अफसाने तेजी के साथ कारीन तक पहुंच जाते हैं, एक क्लिक में उनके सामने होते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आज के प्रोग्राम के पेश नजर जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल आपका
0: कहीं से जवाल आ रहा है। लिखने वालों की भी कमी नहीं है, बस गौर और फिक्र करने की बात है। सामाइन से ये है कि जिस तरह से चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या अपनी बुक्स के जरिए हो, वो काफी सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, चाहे रेख्ता है, उर्दू वेब पेज है, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी हो सकता है या किताबें हो सकती हैं, उनसे अफसानों का मुताला करें। मुताले की आदत को मत छोड़े क्योंकि मुताले इंसान को आगे बढ़ाता है और आपका मुताला ही लिखने वालों का हौसला भी बढ़ाता।
1: बिल्कुल सही कहा आपके। जदीद अफसाना निगारी का मुस्तकबिल रोशन है, बहुत वाजे कर दिया आपने और पैगाम बहुत उम्दा दिया आपने कि नौजवान नस्ल मुताले से जुड़े, मुताले को फरोग दे ताकि उर्दू अदब से वाबस्तगी उनकी बनी रहे और अफसाना निगारी इसी तरह तरक्की करता रहे। सामीन, आज की इस संजीदा और बामकसद बातचीत से ये हकीकत वाजे होकर सामने आती है कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी ने अदब को नए मौजूआत, नई टेक्निक और जदीद उसलूब से मालामाल किया है। इसने इंसानी जिंदगी के बातिनी पहलुओं और असली मसाइल को बहुत ही संजीदगी के साथ पेश करके उर्दू अदब को आलमी अदबी रुझानात के हम कदम बना दिया है। जदीद अफसाना आज भी उर्दू अदब की एक जिंदा, मुतहर्रिक और मुअस्सिर सिम्ह के तौर पर अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जदीद उर्दू अफसाना निगारी न सिर्फ अपने अहद की तर्जुमानी है बल्कि आने वाले जमानों के लिए भी फिक्री और अदबी रहनुमाई फराहम करती है। अदब के संजीदा कारीन और नौजवान कलमकारों के लिए ये एक ऐसी अदबी रिवायत है जो मुसलसल इर्तिका के सफर पर गामजन है, चल रही है। और अब हम अपने खुसूसी मेहमान मोहतरमा अतिया बी साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाजत। आदाब।
2: आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। आज की पेशकश थी आकाशवाणी लखनऊ के मरकज से। मीडियम वेव।
3: अभी आप समाप्त फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम जिसे हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर कर रहे थे। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संधि संगीत। आज इसमें आपको सुनवा रहे हैं विनय अग्रवाल का सितार वादन।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत, इसमें आपने सुना विनय अग्रवाल का सितार वादन। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 10:05 हो चुके हैं। अब आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शहजी आगा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम में पहली फरमाइश के साथ हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं। मोहल्ला अफगानान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम अलीम अजीम अदीम अब्दुल गनी अलमीर जन्नत और आपके परिवार के समस्त लोग। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र धोडिम्बा, इंगोले से सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले।

रामाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभी मंजूषा गौतम इंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास सुनील जबड़े, अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठेके, पार्वती सखाराम ठेके, रोहित सोनू मोनू, जिजमाता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम कांबले, तामसा रोड तहसील हदगांव से श्यामराव वटघड़े, बेबी बिट्टू वटघड़े और डोंगरगांव जिला राजानंद गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अंशिका और तन्मय गजबिये, जिला खांडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार दंजे, राहुल कुमार दंजे, विशील कुमार दंजे, शीला दंजे गायत्री, कुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू और आपके परिवार के समस्त लोग। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक, समस्त डागला परिवार, दोबिया नेवादा, गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय, कोटवा नारायणपुर से बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, जाबरून से दुर्भादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानंद जोशी, संजय आशीष, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी, अतुल गौतमी, तुषार कुर्णे, प्रतीक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुर्णे, ये हैं चंदूर हाथकंगला जिला कोल्हापुर से, मौला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। आप सब ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी को, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

दो रास्ते, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। ख्वाहिश हमारे आप सभी श्रोताओं की, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और नकमा नाज मंसूरी, मोहल्ला मजार चांद शामिया जिला रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अंदान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, फौजिया रोशनी, शायना काजल, अजमत और आशु भाई मंसूरी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा, सालिया शोएब खान, साइमा खान, पोतरा मुश्तबा खान, पोतरी आफिया खान और रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिर्क, जेतेन बिर्क और मीका बिर्क, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खड़जे, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, अनिल पोहरकार, महेंद्र पोहरकार, सुनील, साहिल और सुजाता पोहरकार। तो पेश है आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर की आवाज में दो रास्ते फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी रामपुर के साथ और सुन रहे हैं फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरमगुड़िया शुएब खान, नावेद खान, सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, पुराना तालाब डुमराऊ से वलीउल्लाह अंसारी, आसमान अंसारी और इनकी प्यारी बेटिया सोनम, सारिमपुर बक्सर से शरफुद्दीन अंसारी, फातमा नाज अंसारी और मोहम्मद समी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी, वसीम अकरम और बीबी अंसारी, छटिया पोकरा डुमराऊ से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुरत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुरत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुरत, अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी कपिल, वेदराम कैलाश, सुनील खुशबू, एरोही, स्वाति मौर्य, ये हैं कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, भावना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदी नाज, महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम, ममता रानी, बच्चू शेख, बेगम इशरत, रुबीना, नदीम, अमन, पूनम कुमारी शर्मा, चीना शेख, कोहद बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, नूर महल महसूल से हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबिहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, अफजालपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, भविता, आशा गौतम, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहब वडोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कनेरी, कार्तिक युवराज, भटपारा दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। तो पेश है आप सबकी फरमाइश पर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में नया दौर फिल्म से ये गीत।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी फरमाइश पर छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही महराज जहां जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजम बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन मोहम्मद रेहान और माहिरा नूर। आप सब ने सुनने चाहा है मोहम्मद रफी आशा भोसले को। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। मीडियम वेव 336.7 मीटर पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं गोल्डन हिट्स में कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं। धरोहर कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सुरेश बाबू मिश्र का लिखा नाटक भूल का एहसास। प्रस्तुति है रमा अरुण त्रिवेदी की।

0: कल्लू की अम्मा, ओ कल्लू की अम्मा, जरा देखियो तो कौन है दरवाजे पे।
1: अच्छा, भाई देखा था।
2: भाभी कहाँ है भैया?
0: अच्छा अच्छा, हरपाल है। आओ हरपाल, आओ बैठो।
2: कहो हरकू भैया, अब कैसी तबीयत है? फायदा हुआ कि नहीं?
0: कोई फायदा वायदा ना है भैया, आज तो सवेरे से ही खांसी रुकी हुई ना रही है। मैं तो ऐसो मालूम पड़त है कि अब ही 4-5 दिन और काम पे ना जाए पाएंगे।
2: अरे तुम इस समय काम की चिंता मत करो हरकू भैया, काम तो होता ही रहेगा। अरे पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, पहले अपने शरीर की चिंता करो। देख ना रहे कैसे सूख सूख के कांटा हो गए हो।
0: बात तो तुम्हार सोलवान ठीक है हरपाल, मगर ऐसो काम कैसे चली है, आज 8 दिन हो गए।

0: छुट्टी ले भर, अगर 4-5 दिन और कारखाने ना जा पाए तो बाल बच्चा खाइए का, घर में चूलो कैसे जली है।
1: हाँ, ये बात तो सही है हरकू भैया। बढ़ती महंगाई के कारण गरीब आदमी का तो जैसे जीना दूभर हो गया है, और ऊपर से जे ससुरी बीमारी।
0: कछु समझ में ना आए रही हरपाल कि करें का।
2: अरे जामे, इतन हल्का अनहोन की कौन सी बात है। अपने मैनेजर बाबू से कुछ रुपया उधार ले लें, हम लोग हियन से कहूं भाजे थोड़ी ना जा रहे हैं।
0: अरे तू जानती है कल्लू की अम्मा, जे बड़े लोग गरीबन की मजबूरी ना समझत हैं, बस 24 घंटा काम में जुटे रहो तो खुश वरना नाराज। गरीबन की बीमारी को जे लोग बहानों समझत हैं, बहानों।
1: मन छोटा मत करो हरकू भैया, अरे जान है तो जहान है। 4 दिन से तो उठ बैठना है पाए रहे, ऊपर से काम की चिंता। अरे जिसने चोंच बनाई है चुगा देगा ही, ऊपर वाले पर विश्वास रखो भैया।
2: अरे अरे, जे तो बेहोश हो गए। हाय भैया, इनकी उल्टी से तो खून आए रहो है। ये हरपाल भैया अब कहो है, हे भगवान अब कहो।
1: अरे घबराओ मत भाभी, धीरज रखो धीरज रखो। हाँ अबे, गांव से डॉक्टर को बुलाए के लाते हैं।
2: राम अब कहो है, भगवान हमारे रक्षा।
1: आइए डॉक्टर साहब आइए, देखिए मरीज की हालत कैसी खराब हो गई है।
3: अरे आप लोगों ने इतना धुआं क्यों कर रखा है? इस अंगीठी को हटाओ यहाँ से, हटाओ इसे।
1: हाँ हाँ, अब हटाओ थे डॉक्टर साहब, अब हटाओ थे।
3: इन्हें खांसी कितने दिन से है?
2: खांसी को तो 3-4 साल हो गए डॉक्टर साहब, 8-10 दिन से तो बुखार आएगा है।
3: देखो बीमारी गंभीर है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। इन्हें

0: ये काम कहाँ करते हैं?
1: हमारे गांव के पास जो कारखाना है वहीं में काम करे थे।
0: अच्छा, कितने दिन हो गए ये वहाँ काम करते हैं?
1: जी कोई 5-6 साल हो गए साहब।
0: अच्छा अच्छा, इनको खांसी कब से है?
1: बाको भी कई साल हो गए साहब।
0: इससे पहले कहीं दिखाया था इन्हें?
1: पहले कछु घरेलू दवाई खाई ही, फिर गाँव के एक बैजी से दवाई लाई, एक दो डॉक्टर को भी दिखाओ, मगर कछु फायदा ना है भसा।
0: देखो इन्हें टीबी है।
1: टीबी?
0: इनके फेफड़े खराब हो गए हैं।
1: हे भगवान, टीबी हो गए? अब मैं क्या करूं? तो लट गए।
0: धीरे रखो, धीरे रखो। देखो देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं रही जो लाइलाज हो।
1: डॉक्टर बाबू, हम गरीब लोग हैं, तुम इनको इलाज करो, जैसे हो इन्हें ठीक कर दो। मैं तुम्हारा जैसा कम है ना भूलूंगी डॉक्टर बाबू, कम
0: है ना। नहीं नहीं, एहसान की कोई बात नहीं है। देखो हरकू की बीमारी काफी पुरानी हो गई है, तुम्हें अस्पताल में दाखिल करा दो।
2: एक बात हमारी समझ में नहीं आई डॉक्टर साहब।
0: क्या?
2: अरे हरकू भैया तो बड़े हट्टे कट्टे थे, फिर इन्हें भला टीबी कैसे हो गई?
0: देखो हरपाल, टीबी कमजोर आदमी को हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्षमता से अधिक काम करने, सीलन भरे स्थान पर रहने, सांस के साथ धुआं शरीर के अंदर पहुंचने या कुपोषण के कारण ये बीमारी हो जाती है। खैर घबराओ नहीं, उचित देखभाल रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, हर कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूं।
3: कल्लू की माँ, 3-4 महीना तक तो हीन रहन में बहुत रुपया खर्च हुई जाई है। इतो सारो रुपया हम लाइए कहां से?
1: रुपया पैसा तो हाथ पैर को मैलू है कल्लू के बापू, तुम फिक्र ही मत ही करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हुई गई है। हाँ अच्छा, अब तुम आराम करो, मैं दवाई लेन जाता हूँ। चलो भैया।
2: हाँ चलो भाभी।
1: अब का हुई है हरपाल भैया, हमारे पास ना तो जगह जमीन है, ना रुको गहना है जाको बेच लूं, बड़ी विपदा टूटी पड़ी है, कछु समझ में ना आया रो, अब का करो जाई।
2: अरे हौसला रखो भाभी, मायूस हो से थोड़ो काम चले दो, पूरे काम पड़ो है, कहीं ना कहीं से तो पैसा को इंतजाम हुए जाएगो। देखो भाभी, मैं पैसा को इंतजाम करने को गांव जा रहा हूँ।
1: अच्छा,
2: अब तुम जरा हरकू भैया को ध्यान रखियो भाभी।
1: जल्दी आइए भैया।
2: हाँ हाँ,
1: तुम्हारे ही आसरो है।
2: अरे फिकर मत करो।

0: ठीक ठाक
1: बाल बच्चा
0: कहिए प्रधान जी, हरखू के बारे में कुछ पता चला?
2: अरे भैया, अभी तक तो अस्पताल से लौटा ही नहीं है। पता नहीं क्या हालत है उस बेचारे हरखू की।
0: लो हरपाल आ गया, अब पता चल जाएगा हरखू के बारे में।
2: आओ हरपाल आओ, कहो हरखू के क्या हाल है भैया।
3: अरे भैया, हरखू को अस्पताल के बड़े डॉक्टर ने टीबी बताई है।
2: टीबी बताई है?
3: हाँ। अरे अभी तो उसे 3-4 महीने अस्पताल में रह के और इलाज कराना पड़ेगा।
0: हे भगवान, तब तो गजब हो गया। उस बेचारे के पास तो पहले से ही पैसे की बड़ी तंगी थी। अरे भगवान भी गरीबों को ही सताता है।
3: ठीक कह रहे हो मास्टर साहब, हरखू की बीवी तो इस वजह से बड़ी रो रही थी बेचारी।
2: अरे इसमें रोने या इतने परेशान होने की क्या बात है भैया, हरखू कोई गैर तो नहीं है, अपने गांव अपने घर का आदमी तो है। अगर उसकी मुसीबत में हम लोग उसके काम नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? हम सब लोग मिलकर उसकी मदद करते हैं भैया।
0: अरे ये तो आपने मेरे मुंह की बात छीन ली प्रधान जी, मगर एक बात और है जिसकी तरफ शायद आपका ध्यान नहीं गया।
2: वो क्या मास्टर साहब?
0: हरखू की ये हालत क्यों हुई, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।
2: मैं कुछ समझा नहीं मास्टर साहब।
0: देखिए प्रधान जी, हमारे गांव के पास जो कारखाना है ना।

0: हाँ
1: हाँ, उससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वही हरकू की बीमारी की असली जड़ है।
0: वो कैसे मास्टर साहब, जरा समझा कर बताइए।
1: देखिए प्रधान जी, कारखाने का जहरीला धुआं उसमें काम करने वाले मजदूरों और आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के शरीर में सांस के साथ अंदर पहुंचता रहता है, और धीरे धीरे धुएं का कार्बन फेफड़ों पर जमता रहता है, जिससे लोगों को टीबी हो जाती है। और फिर प्रधान जी, हमने गांव के चारों तरफ के पेड़ भी तो काट दिए हैं, अगर पेड़ होते तो ये सब कार्बन को सोख लेते और हम सब इस मुसीबत से बच जाते।
2: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मास्टर साहब।
0: मास्टर साहब, धुआं तो चूल्हे से भी निकलता है, क्या वो भी नुकसान पहुंचाता है?
1: हाँ प्रधान जी हाँ, धुआं चाहे कारखाने का हो, चूल्हे का हो या बीड़ी का, हमें नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सरकार गांव-गांव में गोबर गैस प्लांट लगाने पे जोर दे रही है।
0: अच्छा मास्टर
1: हाँ,
0: साहब,
1: इसमें धुआं बिल्कुल नहीं निकलता। मगर इस समय तो हमारी सबसे बड़ी समस्या कारखाने के धुएं से बचने की है।
0: अब आप ही कोई उपाय बताइए मास्टर साहब, जिससे हम सब इस मुसीबत से बच सकें।
1: अरे हम सब लोगों को मिलकर कारखाने के मैनेजर से बात करनी चाहिए। अगर जल्दी इसकी रोकथाम नहीं हुई तो फिर एक दिन हम सब हरखू की दशा में पहुंच जाएंगे।
0: मास्टर साहब, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। कल हम सब लोग चलेंगे और मैनेजर से बात करेंगे।
2: हम भी चलेंगे प्रधान जी आपके
3: हाँ,
2: साथ।
3: हम
2: हाँ
0: तुम चलोगे तो हरकू को देखभाल कौन करेगा? ऐसा करो, ये तुम रुपए रख लो और अस्पताल में ही रहो,
2: अच्छा
0: उसकी देखभाल करो, समझे?
2: ठीक है प्रधान जी, ठीक है।
1: अच्छा तो प्रधान जी अब चला जाए, हाँ काफी रात हो गई है।
0: ठीक है भैया, राम राम
2: राम राम।

0: नमस्ते मैनेजर साहब।
1: आइए आइए मास्टर साहब आइए। आज आप लोगों ने कैसे कष्ट किया?
0: हम लोग आपसे प्रार्थना करने आए हैं मैनेजर साहब।
1: हाँ हाँ कहिए मास्टर साहब, क्या काम है?
0: मैनेजर साहब, आपको हरफू की हालत का तो पता चल ही गया होगा।
1: हाँ बता तो रहा था शायद कोई, बड़े दुख की बात है।
0: हरफू के बारे में डॉक्टर ने बताया है कि कारखाने के धुएं के कारण ही उसे टीबी हुई है।
1: तो क्या आपकी राय में कारखाने को बंद कर देना चाहिए?
0: नहीं मैनेजर साहब नहीं, हमारा ये मतलब नहीं है। कारखाने तो देश की तरक्की के साधन है, मगर हमें वो खुशहाली और तरक्की कभी नहीं चाहिए जो अपने साथ मौत का पैगाम लाए।
1: फिर आप लोग चाहते क्या हैं?
0: हम लोग चाहते हैं कि कारखाने की चिमनी ऊंची की जाए, उसमें फिल्टर लगाया जाए और आप कारखाने के आसपास पेड़ लगवाएं, जिससे कारखाने का ये काला धुआं लोगों तक ना पहुंचे।
1: मगर इस पर तो बहुत खर्च आएगा मास्टर साहब, इस समय तो ये काम हम नहीं करा पाएंगे। हाँ इस बारे में अगले साल जरूर सोचेंगे।
2: सोच लीजिए मैनेजर साहब, आपके पास रुपयों की क्या कमी है? क्या आपकी नजर में अपने मजदूरों की जान की कोई भी कीमत नहीं है जो थोड़ा सा रुपया खर्च करने से आप कतरा रहे हैं?
1: देखिए मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मैं ये काम इस समय नहीं करा सकता।
2: ये तो आपकी हठधर्मी है साहब, चाहे मजदूरों की जान चली जाए चाहे वो बीमार पड़ जाए, मगर आपका पैसा ना खर्च हो।
1: देखिए प्रधान जी, हम मजदूरों को काम के लिए उनके घर तो बुलाने जाते नहीं हैं। जिसे अपने शरीर की इतनी चिंता है वो कल से काम पर ना आए।
2: अच्छी बात है मैनेजर साहब, इस समय तो मैं जा रहा हूँ, मगर जल्दी ही अपनी बात मनवाने के लिए आपके कारखाने के सामने धरना दूंगा।
1: हाँ हाँ जाइए जाइए और जो मन में आए कीजिए, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं।
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: इंकलाब
3: जिंदाबाद,
2: हमारी मांगे
3: पूरी हो,
2: मजदूर एकता
3: जिंदाबाद,
2: मजदूर एकता
3: जिंदाबाद।
0: भाइयों, कारखाने का ये जहरीला धुआं हमारे आसपास के पर्यावरण को बुरी तरह प्रदूषित कर रहा है। धुएं के कारण कारखाने में काम करने वाले मजदूर टीबी जैसी जानलेवा बीमारी के शिकार बन जाते हैं।

0: आते हैं। कल हम लोगों ने मैनेजर साहब से मिलकर धुएं की रोकथाम करने के बारे में बात की थी, मगर मैनेजर साहब के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। भाइयों, अगर हमने मिलकर इसके लिए आवाज नहीं उठाई तो ये धुआं धीरे धीरे हम सब के लिए जानलेवा बन जाएगा।
1: मास्टर साहब ठीक कह रहे हैं भाइयों।
2: हाँ ठीक कह रहे हैं।
1: आज हम लोग मैनेजर साहब से अपनी बात मनवा कर ही रहेंगे। चलो मैनेजर साहब के पास। इंकलाब, हमारी मांगे,
3: भाइयों मांगे, मजदूर
0: भाइयों आप लोग शांत रहे, चिल्लाने से समस्या हल नहीं होगी, ध्यान से हमारी बातें सुने।
1: जरा रुकिए मास्टर साहब, ये औरत कौन है जो मंच की ओर आ रही है?
2: अरे अरे ये तो अपनी मालकिन है, मालकिन
1: मालकिन है, मालकिन।
0: भाइयों भाइयों आप लोग शांत रहे, मालकिन शायद आप लोगों से बात करना चाहती है, आप लोग शांत रहकर उनकी बात सुने।
4: भाइयों ये जहरीला धुआं वास्तव में चिंता का विषय है, मुझे आप लोगों की समस्या से पूरी हमदर्दी है, मगर मेरी राय में केवल मैनेजर साहब की दया के इंतजार में बैठा रहना ठीक नहीं है। आप लोग खुद ही इस समस्या के हल के लिए कोशिश क्यों नहीं करते?
1: हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं मालकिन, ये तो मैनेजर साहब के ही बस की बात है।
4: ये आपकी भूल है प्रधान जी, धुआं को रोकने के लिए आप लोग अपने मकानों के आसपास पेड़ लगा सकते हैं, इससे धुआं आप तक नहीं पहुंचेगा और उसका असर भी कम हो जाएगा। प्रधान जी पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग अपने गांव के आसपास पेड़ों को कटने से रोकिए, घरों को धुएं से बचने के लिए धुआं रहित चूल्हे लगवाइए।
1: मगर मालकिन इससे हम कारखाने के धुएं से पूरी तरह तो बच नहीं पाएंगे और समस्या क्यों की त्यों ही रहेगी।
4: आपकी बात ठीक है प्रधान जी, मगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने की जगह पहले आप लोग वह काम करें जो आपके हाथ में है, फिर मैनेजर साहब पर भी दबाव डालेंगे कि वह कारखाने के धुएं को रोके।
0: मालकिन ठीक कह रही है भाइयों, कल हम लोग गांव की सफाई करेंगे, गड्ढे और नालियां पाटेंगे, कूड़े करकट के ढेर हटाएंगे। देखिए कल कोई भी मजदूर काम पर नहीं जाएगा, ठीक है साहब। और कारखाना बंद रहने से मैनेजर साहब को भी हमारी मांगे मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
1: यही ठीक रहेगा भाइयों, कल कारखाना बंद रहेगा, सब लोग गांव में काम करेंगे, समझे?
0: हाँ भैया ठीक कह रहे हैं। चलो
5: अरे सरिता तुम आओ आओ, आज अचानक कैसे रास्ता भूल गई?
6: बस यूं ही तुमसे मिलने चली आई थी। अरे लग रहा है कुछ लिख रही हो।
5: हाँ विश्व पर्यावरण दिवस के सिलसिले में हमारे कॉलेज में एक संगोष्ठी हो रही है।
6: अच्छा,
5: उसी के लिए भाषण लिख रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, तुम तो अपने टाइम में कॉलेज की हर डिबेट में फर्स्ट आती थी ना, अब मेरा भाषण अच्छा तैयार हो जाएगा।
6: अच्छा देखो क्या लिखा है।
5: बस यूं ही अभी लिखना शुरू ही किया था कि तुम आ गई, ले देख जो लिखा है वो ठीक भी है या नहीं।
6: हाँ, बढ़ता प्रदूषण दिन पर दिन हमारे लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, पूरी दुनिया इससे चिंतित है। आज शहर का हर आदमी गंदी हवा में सांस ले रहा है, दूषित जल पी रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण ये मुसीबत अब धीरे धीरे गांव में भी पहुंच रही है। हर तरफ फैला हुआ धुआं, शोर, कचरा वातावरण को दूषित कर रहा है, जिससे हमारे जीवन को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। अरे वाह वाह वाह प्रोफेसर साहिब, वाह वाह, भूमिका तो अच्छी लिखी है।
5: देख ज्यादा बातें मत बना, हाँ ये बता कि आगे क्या लिखूं।
6: मेरे विचार में पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले खतरों की जानकारी दे दी जाए, जैसे प्रदूषण जल पीने के कारण पेट संबंधी पेचिस, डायरिया, अतिसार तथा हैजा जैसी जानलेवी बीमारी हो जाती है। तुम्हारे विचार से पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य क्या कारण हो सकते हैं?
5: जहाँ तक मैं समझती हूँ पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण तेजी से बढ़ता औद्योगिकरण ही है। तेजी से बढ़ती आबादी भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकती है ना?
6: हाँ ये तो ठीक है उमा, मगर मेरे विचार से पर्यावरण प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण है हमारा बढ़ता हुआ स्वास्थ्य, हमारे सोचने का तंग नजरिया तथा पैसे के प्रति हमारे दिनों दिन बढ़ती हुई हवस।
5: तुम ठीक कह रही हो सरिता, अगर उद्योग लगाते

0: समय हम कारखाने से निकलने वाले पानी, धुएं तथा कचरे की निकासी का उचित प्रबंध कर दे तो शायद पर्यावरण प्रदूषण की समस्या खड़ी ही ना हो। मगर आज हम अपने स्वार्थ में अंधे हो गए हैं, हमें तो बस पैसा चाहिए, पैसा।
1: उमा, यही मेरी उलझन का कारण है जिसके लिए मैं तुम्हारे पास राय लेने आई हूँ।
0: तुम्हारी उलझन?
1: हाँ।
0: मैं कुछ समझी नहीं।
1: मेरे पति जिस कारखाने में मैनेजर हैं, उसका धुआं आसपास के रहने वाले लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। मजदूर मांग कर रहे हैं कि धुएं की निकासी का प्रबंध किया जाए, मगर मेरे पति इसके लिए तैयार नहीं है। अब तू ही बता उमा, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
0: तो ये बात है। देख, ऐसा करते हैं, परसों कॉलेज के बाद मैं तेरे यहाँ आऊंगी, तभी इस बारे में बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा।
1: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तो अच्छा उमा, मैं चलती हूँ।
0: रुकना।
1: नहीं, मैं चलते हैं।
0: अच्छा।

0: देखिए प्रधान जी, आप लोगों ने मजदूरों को भड़काकर काम पर आने से रोक दिया है। ये अच्छी बात नहीं है आपकी। आप उन लोगों को कल तक काम पर भेज दें, नहीं तो हम उन्हें काम से निकाल देंगे।
1: मैनेजर साहब, आपके कारखाने के मजदूरों को किसी ने जबरन नहीं रोका, वो तो खुद ही आपके कारखाने में काम करना नहीं चाहते।
2: आपने मजदूरों की मांग नहीं मानी मैनेजर साहब। हरकू की हालत देखकर उन लोगों के मन में भी अपने स्वास्थ्य के बारे में भी डर समा गया है। आप धुएं के निकास का कोई इंतजाम कर दें, नहीं तो मजदूर काम पर नहीं आएंगे।
0: देखिए मास्टर साहब, मैं दबाव में आकर कोई काम नहीं करूंगा। इन्हें काम पर आना हो आए, ना आना हो ना आए। हेलो, आप कौन बोल रही हैं?
3: मैं उमा बोल रही हूँ भाई साहब।
0: अरे उमा जी, आप? नमस्कार।
3: नमस्कार।
0: कहो, कहाँ से बोल रही हो?
3: मैं आपके घर से ही बोल रही हूँ भाई साहब।
0: मेरे घर से? अरे सब खैरियत तो है। कहो, कैसे फोन किया?
3: आप जल्दी घर आ जाइए भाई साहब, संगीता की तबीयत अचानक खराब हो गई है।
0: क्यों, क्या हुआ संगीता को?
3: पता नहीं भाई साहब, संगीता को अचानक जोर की खांसी उठी और वो खांसते खांसते बेहोश हो गई।
0: उमा जी प्लीज, आप सरिता को होश मिलाने की कोशिश करें। मैं अभी घर आता हूँ।
3: जल्दी पहुँचिएगा।
0: वो बिल्कुल अभी पहुँचता हूँ।
2: राम राम भैया।
4: राम राम भैया। राम राम। मास्टर साहब,
2: हाँ भैया,
4: 3 दिन हो गए काम पर बिगड़ गए। अगर 4-6 दिन और बीत गए तो कुछ लोगों को तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी।
2: अरे घबराओ मत हरपाल, अब सब ठीक हो जाएगा। इन 3 दिनों में हम लोग खाली थोड़ी बैठे। अरे पूरे गांव की सफाई कर ली, गड्ढे पाट दिए, कूड़ा करकट साफ कर दिया और फिर सब लोगों ने अपने अपने घर के आगे पेड़ भी तो लगा लिए। अब भैया हरपाल, देखो अब गांव कितना अच्छा लग रहा है।
1: मास्टर साहब ठीक कह रहे हैं हरपाल, एक तंदुरुस्ती और 1000 नियामत।
2: हरपाल, तुमने हरकू के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं, अब कैसी तबीयत है हरकू की?
4: पहले से तो ठीक है, मगर अभी अस्पताल में ही रहना होगा। मालकिन भी 3 दिन से अस्पताल में दाखिल हैं।
1: मालकिन?
4: हाँ, उनकी भी तबीयत खराब है।
1: क्या कहा, मालकिन अभी अस्पताल में ही है?
4: हाँ, उनकी हालत पहले जैसी ही है।
1: अच्छा?
4: डॉक्टर साहब बदल बदल कर दवाई दे रहे हैं, मगर मालकिन को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अब मैनेजर की अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे भैया, भगवान सबको देखता है ना।
2: अरे नहीं भैया हरपाल, नहीं ऐसा नहीं कहते। अब किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अब मेरी राय में तो मालकिन को देखने चलना चाहिए।
5: मेरा मरीज तो मर रहा है, देख लो भैया डॉक्टर साहब, मेरे मरीज को बचा लो। हे भगवान, अरे सिस्टर को बुलाओ जल्दी।
0: मैनेजर साहब जी, आपकी पत्नी की खून की रिपोर्ट आ गई है।
6: अच्छा,
0: इन्हें टीबी है।
6: टीबी?
0: हाँ, घबराइए नहीं, आप इनका कुछ दिन यहीं रहकर इलाज कराइए। इनके खाने पीने का ध्यान रखिए, ये ठीक हो जाएंगी।
6: मगर टीबी इन्हें कैसे होगी डॉक्टर साहब, मैं तो इनके खान पान का पूरा ध्यान रखता हूँ।
0: देखिए, केवल खाने पीने की कमी से ही टीबी नहीं होती है। खाना बनाते समय सांस के साथ जो धुआं शरीर के अंदर जाता है, अक्सर उससे भी टीबी हो जाती है।
6: मगर डॉक्टर साहब, खाना तो ये गैस के चूल्हे पर बनाती है।
7: डॉक्टर साहब, जो 22 कारखाने के मैनेजर हैं, जाने कल्लू के बापू काम करत रहे।
0: अच्छा,
7: मालकिन को तो कारखाने को धोना है लग गया।
0: मैनेजर साहब, क्या आपकी पत्नी आपके साथ कारखाने ही में रहती हैं?
6: जी हाँ डॉक्टर साहब।
0: क्या आपके कारखाने की चिमनी नीची है और कारखाने के आसपास पेड़ पौधे भी नहीं हैं?
6: पेड़ पौधे तो काफ़ी थे डॉक्टर साहब, लेकिन धीरे धीरे सब कट गए। चिमनी भी कुछ नीची है और फिल्टर भी नहीं है।
0: बड़े दुख की बात है मैनेजर साहब, आप लोग शिक्षित होते हुए भी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। पेड़ ना होने से कारखाने का धुआं सीधा मजदूरों और गाँव वालों को प्रभावित करता है। धुएं के कारण ही आज हरकू और आपकी पत्नी मौत के कगार पर खड़े हैं। अगर धुएं की निकासी का उचित इंतजाम नहीं किया गया तो एक दिन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी।
6: आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, स्वार्थ ने मेरे विवेक पर पर्दा डाला है, जिससे हम मजदूरों के दुख दर्द को नहीं समझ पाए। आज आपने हमारी आंखें खोल दी, हमें भूल का एहसास करा दिया। जल्दी ही इस बात का इंतजाम करेंगे कि ये जानलेवा धुआं लोगों तक ना पहुंच पाए और पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। हरखों का इलाज भी हम कारखाने की तरफ से ही कराएंगे डॉक्टर साहब।
0: मगर आपकी बात पर विश्वास कैसे किया जाए मैनेजर साहब?
6: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा डॉक्टर साहब। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस काम की शुरुआत आज से ही की देते हैं। इस काम की जिम्मेदारी हम प्रधान जी पर डालते हैं। ये लीजिए प्रधान जी, ये 20,000 रुपये का चेक, और आज से ही आप काम शुरू कर दीजिए। ये लीजिए।
1: बहुत अच्छा मैनेजर साहब, आज से ही काम शुरू हो जाएगा।
3: मेरी समझ में डॉक्टर साहब, अब मैनेजर साहब को वास्तविकता बता ही देनी चाहिए।
8: हाँ हाँ, बता दे उमा, बता दे। बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, अब ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं है।
0: वास्तविकता? कैसी वास्तविकता? बात यह है मैनेजर साहब कि आपकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं।
6: अच्छा?
0: हाँ, वो मजदूरों और गाँव वालों की परेशानी से बड़ी चिंतित थी। कारखाने की धुएं की रोकथाम के लिए आपको तैयार करने के उद्देश्य से ही उन्होंने ये बीमारी का नाटक किया था। सरिता जी के अनुरोध पर मुझे और उमा जी को भी उनका साथ देना पड़ा था।
6: तो यह बात है, अरे मैं तो डर ही गया था डॉक्टर साहब।
2: हम आपके बहुत आभारी हैं मालकिन, आपने हम लोगों को बहुत बड़े संकट से बचा लिया।
6: वास्तव में आज हम भी तुम्हारी सूझबूझ का लोहा मान गए सरिता।
8: अच्छा, अधिक तारीफ ना करो, हम घर चलो। 3 दिन से लेटे लेटे मेरी कमर दुखने लगी।
6: चलो चलो चलो चलो चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो, चलो।

0: धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नाटक भूल का एहसास। लेखक थे सुरेश बाबू मिश्र और प्रस्तुतकर्ता थी रमा अरुण त्रिवेदी।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रामपुर, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं नमस्कार। मनभावन कार्यक्रम में आज गीतमाला के साथ मैं हूं मनोज कुमार। आज है शनिवार और शनिवार को रहता है गीतमाला का इंतज़ार, तो आपके इंतज़ार को और बढ़ाते हैं थोड़ा सा। और इंतज़ार उस बात के लिए कि गीतमाला आज किस विषय पर है, ये हम आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। लेकिन कुछ लाइनों से आप अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि आज की गीतमाला किस विषय पर होने वाली है। लाइनें हैं, एक आरजू है अगर पूरी परवरदिगार करे, मैं देर से आऊं और वो मेरा इंतज़ार करे।

श्रोताओ, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज की गीतमाला किस ट्रैक पर जाएगी। जी हाँ, आपने सही पहचाना, आज बात होगी इंतज़ार की। उस इंतज़ार की जिसमें एक पल भी मुद्दतों सा लगता है, एक दिन का इंतज़ार भी सालों सा लगता है। सब कहते हैं कि वक्त बहुत तेज़ चलता है, मगर किसी का इंतज़ार करके देखो वक्त कितने धीमे चलता है।

सच में इंतज़ार की अपनी एक कसक होती है, उसका एक अलग एहसास होता है। कैसे कोई आसानी से कह देता है कि इंतज़ार कीजिए, लेकिन इंतज़ार की भी एक सीमा होती है। इंतज़ार में दिन की महफिलें सूनी हो जाती हैं, रातों की खामोशियां वीरान हो जाती हैं, मगर नज़रों को इंतज़ार रहता है हर पल हर वक्त।

तेरी राहों में इकरार किए बैठे हैं, एक झलक पाने को पलके बिछाए बैठे हैं, एक नज़र तो देख लो इस आस में बेकरार बैठे हैं। ऐसा ही कुछ हाले दिल होता है जब किसी का प्यार दिल में बसा होता है और उसका इंतज़ार पल पल रहता है।

इंतज़ार, जी हाँ इंतज़ार। इंतज़ार में गुस्सा भी होता है, प्यार भी होता है, छटपटाहट भी होती है इंतज़ार में, कल्पनाएं भी होती हैं इंतज़ार में कि कैसे होंगे, किस हाल में होंगे, यही कुछ होता है इंतज़ार की घड़ियों में। हालात कह रहे हैं मुलाकात नहीं मुमकिन, और उम्मीद कह रही है थोड़ा और इंतज़ार कर।

तो श्रोताओं, आज की गीतमाला का सफ़र यहीं तक। अगले हफ्ते फिर एक नई गीतमाला के इंतज़ार के साथ मनोज को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मनभावन। आज के मनभावन में आकर्षण था गीतमाला। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से रिले होंगे हिंदी में समाचार।

0: म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यभार मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी,
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजासुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि गोवा न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह अवसर उन सभी को याद करने का है जिन्होंने राज्य की प्रगति और पहचान के लिए अथक परिश्रम किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पत्रकारों, लेखकों और हिंदी भाषा के समर्पित प्रबुद्ध व्यक्तियों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचे और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।

ये पहली सूचना हमें दे रहे हैं इमरान पुत्र सत्तार, निवासी लक्ष्मणगंज, कस्बा थाना चंदोशी, जिला संभल। ये सूचना देते हैं कि सवीना, जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका कद लगभग 5 फीट, रंग गोरा, शरीर की बनावट सामान्य, चेहरा लंबा, बाल काले हैं और घर से लापता होने के समय इन्होंने सलवार व कुर्ता पहने थी। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। मोहल्ला लक्ष्मणगंज, कस्बा व थाना चंदोशी, जिला संभल। मोबाइल नंबर है 8445897114। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 8445897114।

ये अगली सूचना हमें मिली है। आकाश शर्मा पुत्र स्वर्गीय अशोक शर्मा, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 5 फीट 4 इंच, चेहरा गोल, रंग गेहुआ, बाल काले हैं। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। मोहल्ला महाजन, थाना चंदोसी, जिला संभल। मोबाइल नंबर है 9149094478। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9149094476।

0: ये अगली सूचना हमें मिली है अशोक नगर थाना बनियाठेर जिला संभल से। सूचना देने वाले हैं सोनम पत्नी अनमोल। ये सूचना देते हैं कि अनमोल शर्मा, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, कद 5 फीट 4 इंच है, चेहरा गोल, आंखें सामान्य हैं। घर से लापता होने के समय इन्होंने पैंट व शर्ट पहने थे। जिस किसी व्यक्ति को इनके संबंध में कोई सूचना हो अथवा प्राप्त हो तो कृपया इस पते पर सूचना देने का कष्ट करें। अशोक नगर थाना बनियाठेर जिला संभल। मोबाइल नंबर है 7983579732। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 7983579732। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: देश की शान जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल राष्ट्रीय पुरस्कार https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत आपके नाम।

कार्यक्रम गीत आपके नाम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मनोज कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना तो लिख भेजिए अपने संदेश हमें इस ईमेल एड्रेस पर गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। और अब सिलसिला उन ईमेल्स का जिन्होंने गीत आपके नाम आईडी पर हमें अपने संदेश लिख करके भेजे हैं। ये हमारे श्रोता हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा, हर्ष और इनके परिवार के सभी लोग ईमेल के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं रंजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और इनका समस्त परिवार। अगला संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं ग्राम भोइनापार लाटो वार्ड जिला बालोद छत्तीसगढ़ से देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी साहू, उमाबाई, गंगाराम साहू और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी और इनके परिवार के सभी लोग। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और इन्हीं के साथ हैं बलवीर सिंह। ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग दतरंगी से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है जिला अमरोहा नई बस्ती पतई खालसा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद

सिफ़ान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया, इनकी बेटी अलीशा, शकील, फ़हीम, मोहम्मद यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं दादरी गेट भिवानी से, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल और इनके परिवार के सभी लोग। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर से मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद फरमान और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेज रहे हैं। यह संदेश हम तक पहुंचा है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी जी का। ईमेल के जरिए ही कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी, रमेश चंद्र, राजकुमार बुड़ाना और इन्हीं के साथ हैं सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। ये ईमेल हम तक पहुंचा है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और इन्हीं के परिवार के सभी लोग। आप सबको सुनना है फिल्म रॉकी से ये गीत, स्वर है किशोर कुमार और लता मंगेशकर का। इस गीत में संगीत दिया है आर डी वर्मन ने और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए हमें ईमेल मिला है सहारनपुर से। राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा, ये संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इन्हीं के साथ हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक और इन्हीं के साथ हैं श्रीमती अंकु राघव गुप्ता। पिपरिया से कमल कांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और इनके परिवार वाले। ये हमारे श्रोता हैं आजमगढ़ से जावेद अख्तर, राही शमशुल और इन्हीं के साथ हैं रुखसार, अफरीन, शमीम अख्तर अंसारी और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान और अरजान अवान और इनका अब्बासी परिवार। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा और इनके परिवार के सभी लोग। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, इन्हीं के पापा नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी चौक कॉलोनी रोहतक से ये ईमेल हम तक पहुँचा है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का और इनके परिवार के सभी लोग। कुम्हार गली कोलाव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश पांडुरंग और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन, अंकुश और इनके परिवार के सभी लोग। बीर गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, प्रवीण और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।

ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से, पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से, दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार और इन्हीं के साथ हैं वसुधा बज्रसेन। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और इन्हीं के साथ हैं पूजा परिहार। अगला ईमेल हमें मिला है, ये हमारे श्रोता हैं नई दिल्ली उत्तम नगर से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आप सबको सुनवाते हैं ये गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास के स्वर में। संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है हीरो।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत आपके नाम। श्रोताओ, यदि आप भी चाहते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होना तो हमें ईमेल संदेश अपना भेज दीजिए, लेकिन ईमेल आपका एक ही बार हम तक पहुंचे। बार बार आप ईमेल भेज करके और श्रोताओं के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं और अच्छा भी नहीं लगता आपका नाम दोबारा से पढ़ा जाए। तो ईमेल एड्रेस है गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। और एक रिक्वेस्ट और आपसे कि सिर्फ अपने नाम के साथ ही ईमेल भेजें, किसी और का नाम आप ना भेजें। इससे बहुत सारे श्रोताओं को दिक्कत होती है और उनकी शिकायत भी बराबर कार्यक्रम में पहुंच रही है। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, इन्हीं के साथ हैं दुबेहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं रामपुर से गुरमीत सिंह मीता और साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता हैं ये हमारे श्रोता। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है जयमंत्री केवट, अंजलि केवट, रुद्राणी केवट, कृष्णा केवट, अनूपपुर मध्य प्रदेश से। ये ईमेल हमें मिला है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल विलिस डिकैस्ट्रो और इनके परिवार के सभी लोग। ये हमारे श्रोता हैं सनावर से शेख मूसा मोहसिन और इन्हीं के परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती और इन्हीं के साथ हैं कंचन कुसुम प्राची और प्रवीण पुजारी। ये हमारे श्रोता हैं गणेशपुर गंडुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज, बेबी मुस्कान और इनके परिवार वाले। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके परिवार वाले। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी, पूजा पायल और इनके परिवार के सभी लोग। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें ईमेल भेज रहे हैं। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर और इन्हीं के साथ हैं वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी, ध्वनि गवाड़कर और इनके परिवार वाले। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश रावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और इन्हीं के साथ हैं श्रीमती शीतल राजेश। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल सोपान, मलकापुर से नारायण इंगले और

आशीष मुहरेकर, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है रामगढ़ कैंट से महेंद्र।

परिवार, अगला ईमेल हम तक पहुंचा है। ये हमारे श्रोता हैं, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हम तक पहुंचा है पाकुड़ झारखंड से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहेड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से, मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ये ईमेल हमें मिला है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा, सबिहा, अनस और रेहान जी का। गांव लोहोगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल, अविराज और इनके परिवार वाले हमें संदेश भेज रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आप सबने सुनना चाहा है हेमलता के स्वर में ये गीत। शब्द रचना है निदा फाजली की और संगीत निर्देशन है उषा खन्ना का। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, स्वर हेमलता का।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं, ये हमारे श्रोता हैं गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम, अदीब हसन और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है महरारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम, यशफ और रसीद वारसी। इन्हीं के साथ हैं सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी और इशरत जहां। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, प्रहलाद वर्मा, राजेंद्र, मनहरन वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हम तक पहुंचा है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। ये ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं हिंगोली मराठ से शाहजी बोट के, श्रीमती नंदा बोट के, हनुमान बोट के, उत्तम जमदाड़े और इनके परिवार वाले, चंदूलाल पटवा, श्रीमती सुनीता पटवा, हर्ष कुमार पटवा, विनीत कुमार, कुमारी कृष्टि पटवा। आप संदेश

रहे हैं हरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से। अगला ईमेल हमें मिला है मुलापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और इनके परिवार वालों का। ये संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से हमें संदेश भेज रहे हैं। गांव जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक और इनके परिवार वाले। ग्राम धुर्रावादा भाटापोरा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज और इनके परिवार के सभी लोग। यह संदेश हम तक पहुंचा है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और इन्हीं के साथ हैं समरीन परवीन। अब ये श्रोता पहले भी शामिल हो चुके हैं इसलिए बार बार संदेश भेजने से यही दिक्कत होती है श्रोताओं, फिर आपकी शिकायत रहती है कि बार बार एक ही श्रोता का नाम पढ़ा जा रहा है। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है नूर महल महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहां, रिफात रिफत जहां, नुजत जहां, साजिया शाहीन और नाजिया नूरीनाज। ये हमारे श्रोता हैं गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। अगला संदेश हमें मिला है दाऊदसराय सहारनपुर से अनवर सावरी, शन्नू सावरी, मुदस्सिर सावरी, मुजक्किर और इन्हीं के साथ हैं जरीफ अंसारी। तेलंगाना निजामाबाद से शेख लवक्ष, बेगम राविया शेख, शेख रहीमुन्ना और इनके परिवार वाले। मामूली वाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसंतराव भोजने और पीएस और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत, प्रियम्मा और वामिका वाणी थांदी। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और इनके परिवार वाले। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जीएस रामगढ़िया। करमवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम, दमन और अभिजोत। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है नेहरू चौक पेटर से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, इन्हीं के साथ है जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ, संगीता और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं, आपका संदेश भी शामिल हो चुका है लेकिन आप बार बार संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू और चंपा साहू, छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी, आवाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी, लीबा मलिक और इनके परिवार वाले। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, सोनू भाटिया और इनके परिवार के सभी लोग, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुँचा है ये हमारे श्रोता हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, इन्हीं के साथ हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रेधान खुराना और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं
ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीश।

मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। ये अगला ईमेल हम तक पहुंचा है, ये हमारे श्रोता हैं। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद गोविंदपुरा से, जुनैद मुजावर सभिया और मिखाइल मुजावर के साथ हैं, जैनब मुजावर। अगला ईमेल पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहरा अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा के साथ हैं, कीर्ति अरोड़ा, ममता अरोड़ा और इनके परिवार वाले। आप सबने सुनना चाहा है रफू चक्कर फिल्म में ये गीत, स्वर आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह का है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने और गीत को लिखा है गुलशन बावरा ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनना चाहते हैं ये हमारे श्रोता हैं, अनंता भगत, अरुणा भगत, सुलोचना भगत, चेतन भगत और इनके परिवार के सभी लोग पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश हमें मिला है बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त और इनके परिवार वाले। अगला संदेश हम तक पहुंचा है हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा और इनके परिवार वाले दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल हम तक पहुंचा है बनवधेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रोकेश, योगेश शारवा, आशा शारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुन्ना और इन्हीं के साथ हैं इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं राधे कुमार विद्यार्थी और इनके परिवार वाले। राजद्वारा रोड मीठा कुमार रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी और इनके परिवार के सभी लोग। अगला संदेश हम तक पहुंचा है गुन्नौर से आदिल कुमार, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और इनके परिवार के सभी लोग। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तनबी बोट और इनके परिवार के सभी लोग। ये ईमेल हम तक पहुँचा है अमरावती से कमरुला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान और आफिया खान। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और इनके परिवार के सभी लोग। ये संदेश हम तक पहुंचा है वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और इन्हीं के साथ हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या और इनके परिवार के सभी लोग अनारकली बाजार जगराओं से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल हमें मिला है विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन छोटू, ललन मिश्रा और इनके परिवार के सभी लोग समस्तीपुर बिहार से हमें संदेश भेज रहे हैं। ये ईमेल हम तक पहुँचा है बंटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार वाले। हेमंत माफ़ कीजिए राजधानी रायपुर से नीलू, मेघ, नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार हमें संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश मिला है गांव खावरी अब्बल से चौधरी राजवीर सिंह, चौधरी अवन्या, कंचव और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं राष्ट्रपाल गजभैये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभैये, राधिका गजभैये, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक पहुंचा है मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या रावत और इनके परिवार के सभी लोग। इंदिरा कोटी, तल्लीताल, नैनीताल से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला ईमेल हम तक मिला है रज्जक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान, जीशान खान आप भेज रहे हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। ये ईमेल हम तक पहुंचा है ये हमारे श्रोता हैं गांव फरांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और इनके परिवार वाले। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल हम तक पहुँचा है ये हमारे श्रोता हैं राजद्वारा मीठा कुमार रामपुर से आकाश रसोगी, दीपक, रवि और अभैरिया और आरुष। अगला ईमेल हमें मिला है गांधी चौक, माफ़ कीजिए गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदिया खान, सुभान खान, फिरोज खान और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हम तक पहुंचा है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी और चांदनी अनमत, आशु भाई और मंसूरी और इनके परिवार वाले। ये ईमेल हमें मिला है ये हमारे श्रोता हैं ईदगाह मुरादाबाद से सफ़ी अहमद अंसारी, रईसदुल अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। अगला ईमेल संदेश हम तक पहुंचा है वटिंडा रोड डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग और इनके परिवार वाले। आप सब ने सुनना चाहा है बरसात फिल्म में सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति के स्वर में ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहते हैं तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और शिवाय राठौर। और इसी गीत को सुनने की ख्वाहिश की है हमारे श्रोता हैं विजय महोबियार और कविता महोबिया रामगंज खंडवा से।

अभी श्रोता सुन रहे थे ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, कुछ ही पलों में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड की रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में

0: सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 1:05 और 7 सेकंड हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के संबंध में, लेकिन पहले एक संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आज रात 9:30 पर अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती और रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये दोनों ही कार्यक्रम हम आप तक पहुंचाएंगे अपने दिल्ली केंद्र के माध्यम से। रात 8 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गाता चल। सुगम संगीत कार्यक्रम में संध्या 7:31 पर आज कलाकार होंगे पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा। संध्या 7 आज श्रोता मंच कार्यक्रम में सुनिएगा श्री राजवीर सिंह से श्री असीम सक्सेना की बातचीत। समय याद रखिएगा श्रोता मंच कार्यक्रम में संध्या 7:00।

किसान भाइयों के कार्यक्रम कृषि जगत में संध्या 6:20 पर चर्चा होगी गर्मी से बचाव एवं पानी की बचत पर। साथ ही डॉक्टर हसन तनवीर से बातचीत का विषय रहेगा धान से अधिक पैदावार लेने हेतु वैज्ञानिक सुझाव। मनोरंजन के लिए लोकगीत और कृषि संकेत में जानकारी देंगे शिमला मिर्च की खेती पर। क्षेत्र संकलित बातचीत के अलावा मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम लेकर आएंगे अखिलेश कुमार और अनिल किशोर। प्रस्तुति रहेगी विक्रांत चौधरी की।

युवा साथियों के लिए उनका कार्यक्रम युववाणी होगा संध्या 5:15 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे। कार्यक्रम आज शाम के साथ सुनहरा दौर, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा दोपहर 2:30 पर। सुनिएगा आज 2010 के दशक के कुछ फिल्मी हिट्स गीत। हेलो फरमाइश, ये सजीव फोन इन कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा अब से कुछ ही देर में, यानी 1:15 पर। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर से याद दिला दें, कार्यक्रम श्रोता मंच

आज आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। इस कार्यक्रम में सुनिएगा श्री राजवीर सिंह से श्री असीम सक्सेना की बातचीत। समय याद रखिएगा, संध्या 7 बजे श्रोता मंच कार्यक्रम में। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 1:05 होने को हैं। कुछ ही पलों में इलाकाई खबरें आकाशवाणी लखनऊ से रिले की जाएंगी।

0: में तैयार नौसेना शौर्य वाटिका का आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इफ्तिताह किया। 19 करोड़ की लागत से तैयार ये नौसेना शौर्य वाटिका हिंदुस्तानी बहरिया की बहादुरी, जज्बे और तकनीकी सलाहियत को मानवन है। ये वाटिका सीजी सिटी में डेवलप की गई है। यहां कायम रिटायर्ड जंगली पोत INS गोमती सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज है। हिंदुस्तानी बहरिया और उत्तर प्रदेश महकमा सयाहत की मुश्तरका कोशिशों से तैयार ये ओपन एयर म्यूजियम जदीद इंटरप्रिटेशन सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है। इससे दारुल हुकूमत में सयाही सरगर्मियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। आज नौसेना शौर्य वाटिका की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा,
1: लखनऊ में एक तरफ राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने 25 दिसंबर को किया था, और यहां पर नौसेना म्यूजियम के रूप में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का एक अद्भुत केंद्र यहां पर हमें प्राप्त हुआ है, और इसका भी यह फर्स्ट फेज का काम का लोकार्पण हो रहा है। इसके आगे के कार्य भी और आगे बढ़ेंगे।
0: हुकूमत ने मगरबी एशिया तनाजों की वजह से आलमी तवानाई फराहमी में रखने को देखते हुए अवामी शोबे की तेल मार्केटिंग कंपनियों को 30 दिन का LPG जखीरा महफूज करने के अहकाम दिए हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की मुश्तरका सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। ज्वाइंट सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत हिकमत अमली जखीरों के तवसुत से ईंधन तहफ्फुज मजबूत करने और बगैर किसी रखने के फराहमी यकीनी करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर मरकज पर फराहमी की कमी की कोई खबर नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में NTA के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मुतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और यह यकीनी करने के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरियासना मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। DD न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक़िद होगा।
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भयता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव

0: से संबंधी हो या फिर रोचक जानकारी हो, किसी महापुरुष के बारे में जानकारी हो, देश विदेश की घटना की जानकारी हो, और उसके बाद साइबर ठग से भी जानकारी मिलता है सर, और महिलाओं से संबंधित, तो बहनों से संबंधित, बच्चों से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित जितनी जानकारी मिलता है तो रेडियो के माध्यम से मिलता है, और जितना जानकारी अच्छा मिलता है तो आकाशवाणी या रेडियो के माध्यम से किसी चीज से नहीं मिलता है सर।
1: यही प्रयास आकाशवाणी ने हमेशा से किया है श्रोताओं के साथ कि अपने हर वर्ग के श्रोताओं को जानकारी परक सूचनाएं, उनका मनोरंजन हो और हर तरीके से उनकी जानकारी में इजाफा किया जाए।
0: उनका उद्देश्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।
1: बिल्कुल, इसी उद्देश्य के साथ हम 90 साल का सफर पूरा करने जा रहे हैं 8 जून को। आज आपने हेलो फरमाइश कार्यक्रम में फोन किया है, तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे आप?
0: फिल्म का नाम है कति पतंग और गीत के बोल है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, गायक किशोर कुमार।
1: चलिए ये गीत,
0: सबसे पहले ये गीत आपको के निर्देशक साहब को, प्रभात श्रोता को, आकाशवाणी रामपुर में जुड़े सभी लोगों को, हेलो एकता रेडियो फरमाइश ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, आकाशवाणी रामपुर में सभी उद्घोषक भाई बहनों को, पूरे भारत श्रोता को जुड़े कम सर, आप इंतजार करें अपने पतंग के बीच सुनने के लिए फोन सामने की सर, धन्यवाद। कहीं पर गलती हुआ हो तो क्षमा चाहता हूँ।
1: बिल्कुल, गलती कुछ भी नहीं हुई है त्रिवान जी, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए शुक्रिया आपका।

0: हसन सिद्दीकी बोल रहा जनाब।
1: बहुत बहुत स्वागत है बहरुल हसन सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप?
0: बस अच्छे हैं भाई साहब, बढ़िया हैं।
1: आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
0: हाँ देखिए मीनू सुनने हैं, ठीक ठाक प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: अच्छा, आकाशवाणी अपने 90 साल की यात्रा पूरी कर रहा है, क्या कहेंगे आप?
0: देखिए काफी टाइम हो गया हमें भी सुनते हैं, कम से कम 20-30 साल हो चुके, तो अच्छा लग रहा है आकाशवाणी से जुड़े हुए, तो काफी अच्छा रहा। कुछ तो परिवर्तन भी हुए इन 20-25 सालों में, जब से हमने सुनना चालू किया, तो अच्छे प्रोग्राम है इन दिनों, ठीक ठाक है।
1: चलिए, ये सफ़र आपके लिए यादगार है। और आज आपने फ़ोन किया है तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
0: देखिए फिल्म का नाम रहेगा जुड़वा, गाने के बोल रहेंगे दुनिया में आए हो तो लव कर लो, ये गाने के बोल रहे हैं
1: चलिए,
0: और
1: ये गीत
0: धरती के
1: हम
0: नाम
1: आपको
0: पे,
1: सुनवाएंगे। जी
0: जैसे मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, बिटिया लीसा सिद्दीकी, शिफान सिद्दीकी, माविया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानी सिद्दीकी, मेहसूर खेम से, इकराम फिरोनी साहब रामपुर से, महबूद भाई रामपुर से, दुलापुर मुरादवार से, मुकेश जी हैं, राशिद अंसारी, पागवाड़ा से मुजाहिद अंसारी।
1: चलिए, आपके साथ हम भी सुनते हैं ये गीत फिल्म जुड़वा से। फ़ोन करने के लिए
0: धन्यवाद।
1: शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी हेलो फरमाइश बोल रहे हैं, कौन से श्रोता इस समय हमसे जुड़े हैं?
1: जिला अमरोहा नहीं फतेह खालसा से बाहर।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर नमस्ते।
0: जी। नमस्ते, कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: जी राम बछोड़ा नागपुर जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।

0: सिंह जी, आकाशवाणी रामपुर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैसे हैं?
1: जी थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: क्या करते हैं आप?
1: सर मैं बताऊँ, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ
0: अच्छा,
1: और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, चलिए, भजन गायक हैं तो छोटा सा कोई एक दो लाइनों का गुनगुना दीजिए भजन, ताकि इस 90 साल के सफ़र में, आकाशवाणी का जो सफ़र तय होने जा रहा है 8 जून को, उसमें और
1: जी
0: भी खुशियां महक सकें।
1: जी बिल्कुल, मैं एक थोड़ी सी लाइन सुना दूँ आपको।
0: जी
1: कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जी सर
0: वाह, बहुत ही सुंदर गुनगुनाया है आपने। तो आज आपने फ़ोन किया है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम है पाकीज़ा और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे मौसम एकदम आशिकाना बन चुका है क्योंकि सुबह बारिश भी हुई है हमारे यहाँ पे। हाँ,
0: अरे वाह।
1: और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, इस मौसम में सुनना चाहूंगा। फिल्म का नाम है पाकीज़ा और गाने के बोले मौसम है आशिकाना।
0: वाह, आपने गाना भी कुछ इसी तरीके का सुना है जैसा आपकी तरफ मौसम हो रहा है। चलिए,
1: जी
0: आपके
1: बिल्कुल
0: उज्जैन में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पाकीज़ा से ये गीत। फ़ोन करने के लिए आपका शुक्रिया।

हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश। ये हमारे श्रोता रामपुर से ही जुड़े थे और इन्होंने अपनी पसंद का गीत भी हमें बता दिया था, तो इन श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत और उम्मीद ये करते हैं कि ये फिर से कोशिश करेंगे।

0: हेलो फरमाइश
1: जय माता जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बात कर रहे हैं
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है
0: जी?
1: और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंचमहल बुगड़ा से बोल रहा हूँ सर।
0: बहुत दूर से आप फोन कर रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम कैसे लगते हैं आपको?
1: जी सर, मैं आकाशवाणी रामपुर का कार्यक्रम बहुत अच्छा सुनता हूँ और मैं कार्यक्रम सुनता रहता हूँ। और मेरे को फोन कार्यक्रम जो आप जानकारी देते हैं और जो भी आते हैं तो सुनता रहता हूँ। न्यूज AIR के माध्यम से चल रहा है आपका कार्यक्रम सर।
0: कितने दिन से आप रेडियो को सुन रहे हैं?
1: सर मैं आपका कार्यक्रम सुन रहा हूँ, 2-3 महीने से जुड़ा हूँ। मेरा दोस्त है राकेश, ने उसने बताया कि आपको लगाओ, तो लगाता रहता है तो मेरे को बताया कार्यक्रम के बारे में, तो मैंने लगा दिया कॉल।
0: अच्छा, तो आज आपने फ़ोन किया है, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर फिल्म का नाम है यकीन और गाने के बोला तेरा तेरा जब जब जब।
0: चलिए, ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में है। कुछ आपके
1: जी
0: साथ सुनने वाले हैं तो उनका भी नाम ले लीजिए।
1: जी सर, सबसे पहले तो आप हैं और मेरा दोस्त है राकेश, भगवान सिंह जी, अविनाश जी, रमेश प्रजापति जी, गोल्डी भाई है और जितने कॉलर आकाशवाणी रामपुर के चाहने वाले हैं।
0: चलिए, आपके साथ हम भी सुनते हैं ये गीत। फोन करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू सर, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: नमस्कार,
0: जी। नमस्कार
1: मैं कश्मीर सोनावाना से लतीफ अहमद।
0: बहुत दूर से आप फ़ोन कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है
1: हाँ,
0: आपका
1: मैं आपका रेगुलर श्रोता हूँ।
0: जी। कैसे लगते हैं आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम आपको कश्मीर
1: बहुत
0: में?
1: अच्छा सर, जो जुम्मे के दिन प्रोग्राम आते हैं ना वो सर, उसमें तो कॉल नहीं लगता है। हाँ, 10 से 11।
0: चलिए आज तो आप लकी हैं कि आपका फ़ोन कार्यक्रम में शामिल हो रहा है।
1: हाँ
0: तो
1: सर,
0: कब से रेडियो सुन रहे हैं आप?
1: बस 5-10 साल हुआ।
0: अच्छा, कैसे लगते हैं आपको आकाशवाणी के कार्यक्रम?
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: आज आपने फ़ोन किया है तो किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: कुर्बानी फिल्म का,
0: कुर्बानी
1: अल्लाह
0: फिल्म
1: का प्यार ये है कुर्बान।
0: जी। ये गीत हम आपको सुनवाएंगे आपके कश्मीर में। कुछ और कहना चाहते हैं?
1: बहुत अच्छा सर, यहाँ पे आजकल मौसम भी ठीक।
0: चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया आपका।
1: शुक्रिया आपका भी सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, हेलो फरमाइश। देखिए,
0: हाँ जी हेलो फरमाइश से बोल रहे हैं, हमारे कौन से श्रोता इस समय बात कर रहे हैं?
1: हमारा नाम उन बहारुल हसन के नाम में आता है। यासीन अंसारी बोल रहा हूँ,
0: अच्छा, यासीन अंसारी जी बोल रहे हैं
1: जिला अमरोहा फतेह खालसा से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं आप? वो देखिए, काफी देर से फोन कर रहे, नेटवर्क प्रयास कर रहे थे, आज क्या आपके पास अच्छा लग गया।
0: अच्छा, किस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: देखिए, आंटी लवर मूवी का गाना सुनना था, उसका टाइटल सॉन्ग।
0: अच्छा, इसका टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनवाएंगे। आकाशवाणी रामपुर के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं?
1: देखिए, अच्छे लग रहे हैं, हमारा नाम जाता है, आप लोग पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है।
0: चलिए, अच्छी बात है। और आज आपने फ़ोन किया है तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, आंटी
1: एक
0: नंबर।
1: नाम लेना चाहेंगे था,
0: जी जी बताइए।
1: बहारुल हसन चुप्पी
0: अच्छा,
1: और
0: बाहर।
1: दोस्त उनका नाम बोलना चाहेंगे।
0: चलिए चलिए, आप सबके साथ हम भी सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमरीका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमरीका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमा के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ

0: उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ओमी नावलाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
2: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक

0: आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 और 21 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 2010 दशक के कुछ हिट्स गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं हिमेश रेशमिया के स्वर में। फिल्म का नाम है आपका सुरूर।

आकाशवाणी रामपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 2010 दशक के कुछ हिट्स गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, राणा मजूमदार के स्वर में। फिल्म का नाम है वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं राहत फ़तेह अली खान के स्वर में। फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू।

आप सुन रहे थे ड्रीम गर्ल फिल्म में मीत ब्रदर्स के स्वर में ये गीत। इसी के साथ सुनहरा दौर कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे 2010 दशक के कुछ हिट्स गीत। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 3 बजे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के कार्यक्रम। इन्हीं मीटर्स पर संध्या 5 बजे अपनी दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे, लेकिन अब से लेकर संध्या 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर जारी रहेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम। मीडियम वेव पर हमें ये सभा यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।
1: वाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलिंद का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है समसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अंजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में है, राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी मीत, शिवांश, अनुप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मालूम हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं एक नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे हैं। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया है। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। तुम आप वही डेजी है ना?
1: हाँ।
0: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: मैं सुनाऊंगी आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी मां ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री या डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर नहीं थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सहसा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
2: ओह, डॉक्टर रामदास। गुड मॉर्निंग डॉक्टर।
3: गुड मॉर्निंग बेनी। गुड मॉर्निंग।
2: कभी तबीयत कैसी है?
3: बीच बीच में कभी कभी सीने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
2: चिंता की कोई बात नहीं। अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
3: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
2: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
3: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
2: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। अरे ये क्या, गिटार? गुड, कितना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
3: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
2: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
3: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
2: अच्छा,
3: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
2: तब तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
1: नमस्ते डॉक्टर।
2: ओ नमस्ते,
3: कहाँ गई थी तुम?
1: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए हैं।
3: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
2: मेरी पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
3: हम दोनों के लिए।
1: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
3: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
2: अच्छा अच्छा, मैं जरा वार्ड हुआ हूं, फिर मिलेंगे।
3: अच्छा,
1: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं, हम ऐसे हम वैसे?
3: इसमें हर्ज क्या है, सच तो यही है ना?
1: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने इस तरह खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
3: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
1: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें, इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: देजी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है, ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ऐ, इधर आओ ना।
1: बेनी, ये अस्पताल है।
0: तो क्या हुआ? आओ ना।
1: बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, बेनी, क्या हुआ?
0: कुछ दर्द सा हो रहा है।
1: मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। लेट जाओ बेनी, लेट जाओ ना तुम। अरे, तुम्हारे तो चेहरे पर पसीना आ रहा है।
0: नहीं नहीं नहीं, फिक्र मत करो, जरा सी गिदी में से चिंता की कोई बात नहीं।
1: नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ।
0: ठीक जी।
1: बेनी, एक बात बताओ।
0: पूछो।
1: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
0: बताऊं? दोनों।
1: मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हें सबसे अधिक सुख किसमें मिलता है?
0: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: कलाकार भी
0: हैं? कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
1: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: जी हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ। तुम बेनी हो ना?
0: हाँ डॉक्टर, तुम लॉरेंस हो ना?
2: हाँ मैं लॉरेंस हूँ।
0: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
2: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
0: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका।
2: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया बेनी।
0: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना कि अमेरिका से एक फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा कि जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
2: तो क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
0: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
2: यही कोई 14 या 15 साल।
0: और तुम मुझे देखते ही पहचान गए, खासतौर पर इस हालत में।
2: एग्जैक्टली।
0: गजब की याददाश्त है तुम्हारी। अरे हाँ, मैंने परिचय तो करवाया ही नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेजी।
2: नमस्ते नमस्ते, तो मैं देखते ही समझ गया था
1: आप आ गए हैं, तो लगता है जैसे।
2: सब वो बातें रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
0: चेस्ट में पेन है।
2: हाँ,
0: दिल की तरफ भी पेन है।
2: वैसे
0: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
1: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह देते इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
2: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेजी
1: जी,
2: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूर होगा जरूर करूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
0: डेजी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही इन्हें दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेजी के सुपुर्द कर दिया है।
2: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान देता है।
0: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन इस 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
2: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड में जा रहा हूं, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
0: ओके, बाय।
1: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
0: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
1: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म हो गया होगा। मैं अभी जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
0: अरे गिरिजा, तुम?
1: आप यहाँ?
0: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
1: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
0: जरा शिष्टता से बात करो।
1: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
0: जरा आहिस्ता बोलो।
1: मुझे पहचान लिया आपने?
0: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
1: अब भी मन में विष भरा है, दूषित विचारों का विष।
0: तुम ऐसा सोचती हो?
1: सोचती नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाएंगे इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्यों?
0: हाँ, ये कल्पना नहीं की थी कि तुम्हें नर्स की ड्रेस में देखूंगा।
1: हाँ, आपने तो मुझे किसी हीन वेश में देखने की कल्पना की होगी। इसका दर गिर तो नहीं गई हूँ?
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है गिरिजा।
1: मैं किसी का आशीर्वाद नहीं चाहती।
0: क्या?
1: आपके पास खड़ा रहना तक मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
0: मैं तुम्हारा पेशेंट हूँ गिरिजा।
1: ये तो आज की बात है, उन दिनों तो आप एक चेहरा थे। चेहरा?
0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर बात क्या है?
1: आपको ये कहते हुए शर्म नहीं आती?
0: तुम इससे बात करो, मैंने ऐसा किया क्या है जो तुम ये सब कह रही हो?
1: अच्छा, 4 साल पहले उस दिन जो कुछ हुआ था आपको याद नहीं? मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
0: देखो, मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज आज चुप हो जाओ।
1: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
0: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना कहो।
3: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। 2 तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती, मैं पास के चर्च में जाकर बेनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
1: मुझे कुछ नहीं कहना है।
0: लेकिन मुझे तो कहना है, कल जहां बात रुक गई थी मैं वहीं से शुरू करता हूं।
1: मैं कुछ सुनना नहीं चाहता।
0: तो नहीं सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझाकर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए ही मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। तुम कौन हो यह मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
1: आप चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
0: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
1: आप इतने ही सज्जन और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
0: हाँ, लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस ही बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
1: अच्छा।
0: हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
1: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
0: कितने रुपए खर्च हुए?
1: करीब 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
0: माफ नहीं की थी गिरिजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था, चाहो तो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
1: क्या?
0: हाँ, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
1: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
0: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरिजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं है।
3: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया, कह नहीं सकती। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस जांच की रिपोर्ट लेकर आए। क्या हुआ डॉक्टर? टेस्ट में क्या निकला? कोई खास बात?
2: वो बेनी कहाँ है?
3: चेरिन के पास गए हैं, अभी आते होंगे। डॉक्टर, सारी रिपोर्ट्स आ गई ना?
2: हाँ डेजी, सारी रिपोर्ट्स आ गई।
3: कोई खास बात बताइए ना डॉक्टर।
2: डेजी, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। बेनी के हार्ट के एक वॉल्व में गड़बड़ है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अगर वॉल्व बंद हो गया तो उसकी सांस रुक जाएगी और ऐसी इमरजेंसी किसी वक्त उठ सकती है। जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा इसी हफ्ते में। हाँ डेजी प्लीज, बेनी से कुछ नहीं कहना, मेजर ऑपरेशन है, लेकिन मैं अपनी पूरी जान लड़ा दूंगा।
3: डॉक्टर, डॉक्टर किसी तरह मेरे बेनी को बचा लीजिए डॉक्टर। उनके
2: अरे भाई, अभी तो ऑपरेशन हुआ भी नहीं और तुमने चिंता करनी शुरू कर दी।
3: मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर।
2: डेजी, इस तरह अधीर होने से कैसे काम चलेगा? तुम्हें तो बेनी को आत्मविश्वास और सहारा देना है। अब तुम इस तरह हिम्मत हारोगे तो कैसे होगा? तुम्हें तो मुझे सब बात सच सच बतानी ही थी।
3: नहीं, मुझे सुनने का साहस नहीं है डॉक्टर।
2: डेजी धीरज रखो, डेजी धीरज रखो। बेनी इस समय आ गए तो ये सब देखकर दुखी हो जाएंगे। अरे लो, बेनी आ रहे हैं।
4: आइए आइए, कहाँ पे जाना?
2: ओ डॉक्टर भाई, जब भी डॉक्टर पेशेंट को देखने आता पेशेंट बेड पर नहीं मिलता। इस पैकेट में क्या?
0: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया?
2: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
0: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
2: अरे भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं तो हूं, आई विल डू माई बेस्ट।
0: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कह दो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
2: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
3: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
0: तुम्हारे लिए एक चीज है।
3: अच्छा, देखो तो।
0: लो देख लो।
3: ये अब काहे को? और यहां
0: मेरी ओर से प्रेजेंट।
3: प्रेजेंट?
0: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। ए? तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रही हो? लो ये रख लो।
3: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
0: ऐसा हाँ, मुझे भी लग रहा है तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
3: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
0: अब अगर मैं और मौका ना पाऊं तो? तुम तो बड़ी ना समझो, तुम अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अब अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाऊं? नहीं नहीं ना। अच्छा तो फिर हंस दो, देखो ये ऐसे ऐसे
1: क्या क्या हुआ आपको? इधर ले जाइए, ले इधर। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, डॉक्टर!
3: कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा। गिरजा की निष्ठापूर्ण सेवा ने मुझे अचरज में डाल दिया। जब ब्लड का स्टॉक खत्म हो गया तो उस नाजुक परिस्थिति में गिरजा ने अपना खून दिया। बेनी धीरे धीरे बोलने चालने लगा तो मेरा मन खुशी से खिल उठा, लेकिन मेरा सुख क्षण भंगुर था। साहसा सब खत्म हो गया। चौथे दिन मेरा बेनी स्वर्ग से डर गए। सदा के लिए मुझसे बिछड़ गया।
5: आखिर ये हुआ कैसे?
3: ऑपरेशन के बाद एक दिन बेनी के हृदय में दर्द उठा। सांस लेने में बड़ा कष्ट होने लगा। फौरन डॉक्टर के पास आदमी दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्य से डॉक्टर लॉरेंस घर पर नहीं मिले। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी के प्राण फकीर उड़ चुके थे। टूटे हुए पेड़ की तरह मैं जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
6: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
7: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
6: दुख तो मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया था।
7: मैं अब क्यों जीवित हूँ गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई। मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
6: ना डेजी,

0: इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो देखो, इससे पेड़ी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम तेज तक बैठकर बातें करेंगे।
1: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। हर एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस विवाह सूत्र में बंध गए।
2: अच्छा,
1: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय गिटार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
3: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
4: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
5: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
4: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
6: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
4: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
6: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
4: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
7: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
8: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
7: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: थी धन्य जवानी।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ है अभिनेत्री साधना सिंह, यानी नदिया के पार की गुंजा।
2: जोगी जी प्रेम भरो
1: इनसे बातचीत कर रही है विधि जैन।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है, हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं। और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष हैं जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओ चलो एक प्रश्न पूछती हूं। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चुहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है। और वही मस्तीखोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची पीस के खिला देती है कहीं पानी गिरा के चली जाती है, कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक के निकल भी जाती है। और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने खुद के लिए। तो आप उन दोनों में से, हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप पहली वाली गुंजा होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो गुंजा बैठी है वो कौन सी वाली गुंजा है।
1: एक्चुअली तो फर्स्ट हाफ में जो दिखा है चुलबुली, बदमाश
0: जी,
1: प्रैंक करने वाली हूँ मैं वही, लेकिन उसके साथ ही ये आता है साथ में जो सेंसिटिविटी है, जो उसका अलग भाव, जो
0: समझदारी,
1: सैडनेस है या किसी के लिए फील करना है,
0: हाँ।
1: वो अपने आप इसके साथ बायो प्रोडक्ट की तरह आता है।
0: हाँ।
1: तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो जो गुंजा है वही मैं हूँ,
0: दिल की सच्ची अच्छी बच्ची।
1: हाँ, जो भी है बदमाशी भी करती हूँ और आज तक करती हूँ पहले मेरे बच्चे थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाते थे, क्या मम्मा रुको, अब वो भी इंजॉय करते हैं क्योंकि उनको पता ही है औरत रुकने वाली है नहीं तो मैं आज भी वैसे ही मस्ती करती हूँ, घर में भी,
0: हाँ।
1: बाहर भी, फ्रेंड्स के साथ भी। और जब बोलते हैं गुंजा, गुंजा के कैरेक्टर में इतनी ढल गई मैं कि मुझे पता ही नहीं चला ये मेरे अस्तित्व में कैसे शामिल हो गई।
0: अच्छा।
1: और कुछ चीजें थी जो मेरी थी
0: जी,
1: और मेरे दादा जो ये थे डायरेक्टर गोविंद मुनीस जी, वो मुझसे सुनते थे, अच्छा बताओ तुमने और क्या बदमाशी की, तो वो सब बताती थी, जैसे कलर लगाया उसको सचिन को लगाया ना, वो मेरा एक्चुअली रियल इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड के भाई को, सोया हुआ था और सुबह उठ नहीं रहा था होली में, तो उसको पूरा लगाया था ऐसे मैंने, तो दादा ने डाल दिया वो और जो वृक्ष खिलाई अभी भी करती हूँ मैं वैसे काम।
0: यानी साधना जी जो है वो ये बदमाशियां कर चुकी थी और अभी भी कर रही हैं। और गुंजा
1: करती रहूंगी
0: सच बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उस समय बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कई मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं।
0: अच्छा।
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ
0: जी,
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसी रहना, ठीक है। और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई मैं कहा दादा एक्टिंग ही नहीं कराई।
0: अच्छा।
1: आपने तो बोलते बस तुम देखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है
0: जी।
1: लेकिन चलिए जो बने, लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन ऑब्जर्व किया
0: जी,
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह।
1: हाँ,
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने भी बोला कि आपको पता नहीं था कि हाँ, आप अभिनेत्री बनेंगी।
1: हाँ,
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था।
0: अच्छा।
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे, कानपुर में मैं थी
0: जी,
1: तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी। और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी, क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ साधना को। और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चलता था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना। तो या कुछ क्योस होता था तो बोलते साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है। लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हम हमारे श्रोताओं को सुना दें। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3-3.5 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तोरा मन दर्पण कहलाए।
0: क्या है ना।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगी और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उससे वक्त आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज।
1: हाँ, बुलंद आवाज थी
0: जी। तो आपका जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।

0: अब साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थीं, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बला की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए हो।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया।
0: अच्छा,
1: वो मेरी बहन करती थी।
0: अच्छा,
1: तो मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज जी की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा,
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना
0: बहुत दुखद घटना है।
1: मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन वो था तो है अंदर।
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की है उस जोगीरा में, हमने देखा
1: जोगीरा में मार खा के की हूँ।
0: वो किस्सा भी जरा बता दे।
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी
1: हमारे डांस डायरेक्टर
0: जी,
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ, और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी।
0: अच्छा,
1: तो मैं तो नहीं थी। उसमें एक स्टेप है ना, थोड़ा मुश्किल स्टेप है, ऐसे करके ताली एकदम और घूम के आना था। मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये। तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 3-4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है। तो एक बार आएगा, आज तुमको डांस आएगा देखना। लेकिन डंडा मारा पैर में, एकदम ठीक कर दिया मैंने।
0: अच्छा, एक डंडे में डांस हो गया।
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या
0: लाठी के भूत,
1: लाठी के भूत। मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैंने कहा मैं कर लूंगी।
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप हम तक पहुंचाया,
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी।
0: हाँ,
1: तो मैं देखती रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया और बहुत खूब नृत्य किया आपने। हमें नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं उस डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं। कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं। तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं, आप किसी रंगमंच की अभिनेत्री नहीं है, वो सब कैसे, इतना छोटा छोटा अंतर, हम जब नदिया के पार देखते हैं तो हमें वो अंतर दिखाई देता है कि पल में शोला पल में माशा वाला, कि आप एक सेकंड पहले उसी चंदन को देख के आपके अंदर से प्रेम के भाव आ रहे हैं और अगले ही क्षण वो प्रेम के भाव बदल गए। वो किरदार किया कैसे आप?
1: वो इसीलिए हो पाया कि मैंने कोई मेथड एक्टिंग नहीं सीखी थी। अगर सीखी होती तो मैं बन जाती किसी भी चीज में।
0: अच्छा,
1: वो बह गया, बह रहा था जैसे। तो मुझे कुछ ऐसा खास ऐसा बोलना नहीं था, बहुत बड़ी स्पीच नहीं देनी थी। छोटे छोटे मोमेंट्स अगर आप देखो तो जैसे मैं बोलती थी वैसे ही बोलती हूँ। तो कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। मुझे लगता है उसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
0: अच्छा,
1: हाँ, ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती है एकदम बाहर। कैमरे की तो यही सचिन। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ, उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सब बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ।
0: अच्छा,
1: तो 2-3 चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है।
0: हाँ,
1: ऐसे चल फ्रेम की बारी चली जाती है। तो वो नेचुरली था अंदर तो आ गया
0: जी।
1: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
0: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको तो खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
1: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज है जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए। तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया, कम हो गया, वो जो चीज है ही नहीं आपके अंदर,

0: शक्ल के उससे कि नहीं मैं बहुत सुंदर लग रही हूं या सुंदर लग रहा हूं, चले आते हैं मतलब पोटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके। तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के आए ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय
0: बिल्कुल
1: भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूं, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूं, तो
0: हाँ
1: मैं फिल्मों में कर रही हूं तो मैं टीवी में क्यों करूं।
0: हाँ ऐसा
1: एक
0: तो कुछ
1: ये
0: नहीं।
1: ईगो
0: हाँ
1: भी सामान्यतः लोगों में
0: हाँ
1: होता है
0: होता
1: कि हमने
0: है।
1: किया है,
0: हाँ
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं कुछ तैयार
1: नेचुरल?
0: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता
1: जी
0: है ना। हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी,
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होके प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ
1: जी
0: है ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं।
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूं कि मैं किसी को बोल पाऊं। ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूं
1: हाँ
0: कि
1: जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो साधना जी, हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
0: हाँ
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाइए।
1: पसंद सुन ली जाए
0: अच्छा ऐसा।
1: जी। तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और ब्रीजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं।
1: जी
0: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत है
0: खूबसूरत
1: ना
0: और
1: जी।
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सनत ना।
0: कुछ दिल

0: और गीत के पार वापस हम सब प्रस्तुत हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन में। ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं जिनमें एक आज के यूथ की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30। ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं। तो
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए।
0: अच्छा।
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी तो हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी, तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा।
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वॉज सेटिस्फाइड जो थी, और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं।
0: हाँ,
1: तो ह्यूमन टच नहीं रह गया है।
0: जी, जी जी।
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में, और बाकी थोड़ा सा अच्छा सा रोल था। और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग होती है
0: जी।
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है
0: जी।
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा
0: जी।
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत
0: नई
1: प्रोडक्शन में
0: जी, जी।
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है।
0: हाँ।
1: बट बाकी जो स्टार हैं वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है उसको भी देखो।
0: तो उस समय आप लोग दोनों उसमें बैठे रहते थे, यानी अपना करने के बाद फिर आप वहीं होते थे, सेट पे ही रहते थे?
1: सेट पे ही रहती थी, मतलब पहले ऐसे ही होता था।
0: अच्छा।
1: बैठ के साथ में खा रहे हैं, साथ में गप भी कर रहे हैं, कुछ सीन की बात भी कर रहे हैं
0: जी।
1: या अभी कुछ सीन हो रहा है तो इसके बाद मेरा है तो मुझे क्या सुर पकड़ना है क्या नहीं, बहुत सी चीजें। लेकिन आजकल शॉट देते ही लोग वैनिटी, मेरी वैनिटी तो खाली रहती थी क्योंकि सेट पे ही आदत
0: आदतन अनुसार आप लड़कियों से घिरी रहती थी।
1: हाँ, तो टाइम निकल जाता है। बट रोल अच्छा था, फिल्म अच्छी थी
0: जी।
1: तो एक लाइन बोलती हूँ ना, हमें नहीं चाहिए शॉल, हम बहुत हॉट है। तो वो एक छोटा सा था जो कि लोगों को बहुत पसंद आया वहां पे।
0: हाँ। नहीं वैसे आप बहुत हॉट है। हाँ। शॉल की जरूरत है। तो अभी उसके बाद आपने एक चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के पार के बाद जी।
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी,
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी, बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान। लेकिन ये है कि एक शंकरा वर्णम फिल्म आई थी
0: जी,
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उसका नाम था शंकरा वर्णम। तो जब मैं थिएटर में काम कर रही थी तो इप्टा में
0: जी,
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी, मुझे बिल्कुल बेटी की तरह। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं, तमिल मुझे समझ नहीं, वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब
0: जी।
1: लेकिन वो ले गए
0: जी।
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रह गई।

0: तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा. उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत, लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते एक्टिंग के लिए
1: जी,
0: कि एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है, दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है. तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना, तो ही जस्ट अभी पास्ड अवे, उनका मंदिर वगैरह बनाया. तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा. नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना शायद,
1: हाँ जी जी उसके बाद ही.
0: हाँ तो मस्ती में की बस. और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे, हस्बैंड जो आज है
1: जी,
0: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी.
1: अच्छा.
0: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
1: जी,
0: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए, तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ. तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी. तो सिर्फ बुआ बन के, दादी बन के, चाची बन के खड़े रहना. मैंने कहा मैं नहीं करूंगी.
1: हाँ.
0: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी, फिर बच्चों को देखना ये सब
1: जी, जी.
0: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी.
1: जी जुगनी.
0: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
1: है. बहुत अच्छी
0: फिल्म. तो ये नए नए लोगों के साथ मैंने काम करना शुरू किया जब.
1: हाँ.
0: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है. तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी. तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने, और उसका नाम है शेफाली भूषण
1: जी.
0: अभी भी उनकी मराठी एक फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल.
1: अच्छा.
0: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा. बच्चों के साथ काम करके दे वेरी ड्रिवन. सब लोग शीशा दिखा रहे हैं, आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना. सब मिलके काम कर रहे हैं,
1: मिलके काम कर रहे हैं. पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं.
0: फिर मैंने अनुराग कश्यप, वो मुझे ढूंढ रहा था कब से. तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके. तो कुछ देख रहा था, उसने कहा रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल. तो उन्होंने बताया यही है. तो उन्होंने मुझे बुलाया, आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ. तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत.
1: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का?
0: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था.
1: अच्छा.
0: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे.
1: हाँ.
0: कि ऐसा ही करना है. और कई कई जगह तो आए पैर वैर छुए, बोले हम नहीं सोचते थे कि आप इस तरह की लैंग्वेज बोलेंगी.
1: जी. हम लड़कियों को बचपन से कहा जाता है कि एक राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पे आपको लेके जाएगा.
0: पति का नाम राजकुमार
1: ही नहीं, राजकुमार आ गए. वो सफेद घोड़े पे आए थे या एम्बेसडर में आए थे?
0: अरे वो उन्होंने बदला लिया मुझसे शादी करके.
1: अच्छा. मैं हम जानना चाहते हैं वो किस्सा.
0: वो किस्सा मैंने बताया. मैं किस्सा यही था कि मुझे अंदर से ये नहीं था कि मुझे फिल्म करनी है. तो मैंने कहा नहीं करूंगी. तो ये बिहार विहार छोड़ के आए थे कि फादर ने बोला इस लड़की को लेके ही फिल्म बनानी है. तो फादर ने बोला तो आए, उन्होंने सब जमाया सब काम. हाँ. और मिलने आए तो उनको लगा मैं बहुत अकड़ू टाइप की हूँ. और मुझे मालूम नहीं क्या ऐसा किया होगा मैंने. तो एक बार मिले, उसके बाद दूसरी बार मिले मैं पहचानने से इनकार कर दिया मैंने. इनकार मतलब जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए. फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे. चौथी बार मिले, अरुण गोयल के दोस्त थे तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ. तो मैंने कहा कि अच्छा. तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके भी नहीं पहचान रही हो. मैंने कहा ओ गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं कभी दाढ़ी रख के आ जा, इनको इतना गुस्सा है. बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा.
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली.
0: शादी कर ली बताइए अब. हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग की चल रहा था अफेयर.
1: हाँ.
0: और मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे.
1: अच्छा.
0: फिर मेरी
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए. हाँ. थी लेकिन उसके साथ शादी नहीं करानी.
0: होता ना दिमाग में शादी फिल्म लाइन की लड़की है.
1: हाँ.
0: ऊपर से तुम उसको घर ले आओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी. लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने. फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें.
0: ये रात भीगी भीगी.

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने किए हैं यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की
0: वो वाली की है ना गंगा मैया, तो है
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे
0: जी।
1: सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़ाई वो
0: जी,
1: जो कि ब्लॉकबस्टर आज भी ब्लॉकबस्टर है
0: जी।
1: तो उसको मेरे फादर लॉ को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, जबकि वो चले गए इस दुनिया से
0: जी,
1: गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा,
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि उस वक्त शायद कोई और रेडी नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा घर में बैठी है चलो इसको
0: इतना लाइक तो नहीं लिया होगा।
1: बहुत अच्छी फिल्म बनी
0: जी,
1: लेकिन
0: बहुत प्यारी है।
1: वो
0: अच्छी फिल्म जी। एक प्रश्न और मन में आ रहा है, पंजाबी सिकड़ी लड़की सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की भाषा बोलने लगती है, मतलब सीधे ओ चंदन लाइक जो वहां की भाषा है उस भाषा में आ जाती, ये जो भाषा का बदलाव है इसको करने में तो तकलीफ हुई होगी?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं बनारस में की पैदाइश हूँ।
0: अच्छा
1: हमें अपनी जो बाइयां आती थी उन सबसे तो
0: मतलब वो चाट और लस्सी खाते
1: पीते हाँ
0: जी,
1: क्योंकि आज तक हम लोग बहन भाई हिंदी में बात करते हैं।
0: अच्छा।
1: सिर्फ मम्मी डैडी से पंजाबी सीखी मैंने।
0: अच्छा,
1: कि मुझे आनी चाहिए क्योंकि बनारस में ये मतलब आपस में मेरे भाई लोग दोनों पगड़ी बांध के और भोजपुरी में बात करते थे तो वो विजुअली बड़ा अजीब सा लगता था कि अरे
0: सरदार खड़े हैं और
1: तो हमारे पंजाबी एक्सेंट है ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ हम लोग जो बनारसी भाषा है और इलाहाबादी
0: जी,
1: हाँ ये काफी फर्क है
0: जी।
1: तो हमने सिर्फ जैसे उनको बोलिए अगर राजबाबू तो बहुत गुस्सा हो जाते थे कि ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
0: अच्छा,
1: ऐसा था।
0: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में भी बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ जो फिल्मों की हम बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को गुंजा को कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है वो गीत हम सुनाना चाहेंगे?
1: देखिए कौन दिशा में तो सब गाते हैं
0: जी,
1: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे चंदन चंदन, तो एक वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी
0: जी,
1: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था और थोड़ा अलग था,

0: चंदन ऐसा,
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा।
0: मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है गाना।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इसकी?
0: हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी,
1: होगा।
0: हाँ
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते
0: बहुत
1: समय?
0: अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा। अगर आप
1: जी बहुत
0: ये,
1: खूबसूरत गीत है।
0: हाँ, और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था। और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सब की तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, यानी क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद।
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है, क्योंकि और लगता है सुनते ही रहो आप, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में
0: एक साथ
1: एक साथ,
0: बहुत बड़े कमरे में।
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा, फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओहो
0: विराजमान होंगे।
1: भैया मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकती हूँ, कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आ रहा था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुनाए,
0: 30 गाने, 30 धुनें।
1: गाने में, और सुना रहती है पसंद है नहीं है अच्छा, और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी मुझे भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी ना,
0: जी
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिख
0: लेते
1: देते थे
0: हैं।
1: एक सेकंड में,
0: 30 गाने एक समय
1: हाँ
0: पे
1: बत्तीस
0: बनाकर
1: होंगे
0: सुनाना
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार।
1: रहे हैं नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जा रहा क्योंकि देख नहीं सकते तो लिखते नहीं है
1: हाँ, उसके
0: लगभग।
1: बाद फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए,
0: हाँ।
1: जिसमें राज बाबू राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहां से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: आपसे। जी
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्म में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
0: जी और
1: दादू
0: जब टूर
1: दादू
0: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख के।
1: तो शेरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है,
0: अच्छा
1: तो आई थिंक वो अक्खड़पन में सब कुछ सीख गई,
0: हाँ,
1: अल्लड़पन कहते ना, तो
0: ये कह सकते हैं आपके माता पिता की परवरिश का असर था कि आपको उतनी स्वतंत्रता दी गई, मानसिक स्वतंत्रता दी गई
1: हाँ ये
0: बचपन से।
1: बात है, मेरे दोनों मेरे पेरेंट्स बहुत ही प्रोग्रेसिव, बहुत उनको ये था कि जो भी करना है करो, बस उसके बाद का जो जो भी रिजल्ट है वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो,
0: अच्छा, खेलो कूदो, चोट लगे तो तैयार रहना,
1: हाँ
0: लगेगी तो
1: लगे
0: संभाल लेना।
1: हाँ हाँ
0: बहुत बढ़िया बात है, इतना आनंद आ रहा है आपसे बात करते हुए, इतना इतनी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। और उसके साथ में एक बात और, जो आपने सीरियल्स में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या आप चले गए ऐसे ही घूमते
1: नहीं नहीं
0: घूमते।
1: बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अभी शूटिंग भी करेगी, तो ये
0: हाँ,
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा,
1: नॉट फ्रॉम माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें, लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को, और बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है मैं कर लूं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह।
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी, तो इन लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल दिया, बाबा ने
0: एक
1: बोल
0: बार में
1: दिया
0: बोल दिया
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो,
0: यानी
1: तो
0: आपको मायका भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा
1: हाँ
0: मिला, दोनों
1: जी
0: बढ़िया बढ़िया।
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: तो जहां भी हैं बस खुश रहे
0: जी बिल्कुल।

0: साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का जो आपकी बदमाशियों से परेशान है, पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है। तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय के जगत में है?
1: नहीं नहीं, मेरे बेटा तो बहुत दूर है।
0: अच्छा,
1: उसको फेमस नहीं होना है। वो बिल्कुल ही अलग सोचता है
0: जी।
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की है
0: जी।
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने
0: जी,
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस वो तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ, तो उस समय वो चल,
1: फिर वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब तो उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता?
1: नहीं, मैं करती भी नहीं,
0: क्योंकि मेहनत करो अपनी।
1: हाँ, अपनी मेहनत करो,
0: ये बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि मैंने अपने लिए कभी किसी को बोला नहीं, बच्चे के लिए क्या बोलूंगी
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठ के अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना है, मेरा वो साइड अब एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना, ये सुपर 30
0: जी,
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मुझे जब बुलाना कॉमेडी कोई, अच्छा तो बोले 100%।
0: हाँ,
1: अब देखते हैं क्या होता है।
0: जी बिल्कुल होगा, आपने कह दिया, सोच लिया।
1: हाँ,
0: और विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं। हाँ, ऐसा हम मान के चलते हैं। बिल्कुल, ये जगह बड़ी,
1: हाँ,
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर आए हैं।
1: हाँ,
0: आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है यहाँ की।
1: हाँ, लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
0: जी,
1: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ,
0: ऊर्जा सकारात्मक।
1: हाँ, वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में है, या मुझे फोन करके अपना दुखड़ा नहीं सुनाना है। मुझे लगता है कि एक ऐसा फेज भी आया लाइफ में कि मुझे लगा मैं जीऊ या मर जाऊ।
0: अरे
1: हाँ, मतलब इतनी सीवियरिटी वाली चीज हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे जीना मतलब नहीं है इस टाइम, नेक्स्ट स्टेप ये होगा बेटर कि मेरी सांस ही ना आए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मुझे लोग ऐसा देखेंगे, क्या मुझे जानते हैं मेरी हंसी के लिए, मेरी खुशी के लिए, तो मैं कुछ तो अच्छा करके जाऊं। और फिर मैं बाउंस बैक मैंने किया था,
0: क्या बात है।
1: और तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये तरीका अच्छा है कि मैं खुश रहूं, खुश दिखूं, खुश बोलूं, और एटमोस्फियर अपने आप ठीक होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा।
0: बहुत अच्छी बातें हमको सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें, हमारा एक गाना जो है तो, क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम
1: मैं
0: भी सुन लें।
1: कोशिश करती हूँ
0: जी।
1: चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: आह,
1: मतलब मेरे लिए भगवान भी है, सब कुछ है
0: जी।
1: मुझे लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है
0: जी।
1: उनका ही गाना गा देती हूँ
0: जी।

हबीब की बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह।

0: अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो साधना जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो।
1: तो बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं।
0: जी
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए। और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम
0: ध्यान
1: ये
0: होता है।
1: ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बचेगा तो देखती हूँ अपने लिए,
0: और बचता कभी नहीं।
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती है माए।
0: जी
1: लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो ही आप सबको समेट पाएंगी, ऐसी सिचुएशन को फेस कर पाएंगी जो आती है कभी कभी। कर्मा है ना, वो तो छोड़ेगा नहीं। और अपनी सेहत पे ध्यान दें। 50 में औरतें सोचती हैं हम लोग तो जिंदगी खत्म हो गई,
0: जी
1: तो वो जिंदगी शुरू होती है उस वक्त, क्योंकि
0: हाँ
1: आप सारी जिम्मेदारियों से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। और उस उम्र में औरत सुंदर भी सबसे ज्यादा लगती है, लेकिन उसको एहसास नहीं है।
0: हाँ
1: तो अपने आप को देखें, अच्छी चीजें देखें, पहने। पहनने से मुझे याद आया, मैंने ब्रांड भी शुरू किया है,
0: अच्छा
1: हाँ, एक कच्चे धागे करके। और
0: अच्छा
1: साड़ियां, वीस वगैरह, मैं चाहती हूँ सब खुश, अच्छे से सज धज के रहें। औरतों का काम है, ये
0: जी
1: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली,
0: जी
1: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की। बहुत
0: अच्छा,
1: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
0: अरे वाह,
1: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
0: क्या बात
1: मैं
0: है।
1: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
0: फिल्म है कैसी है पहेली,
1: कैसी है पहले।
0: जरूर से हम
1: हाँ
0: सभी विविध भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है।
1: हाँ
0: और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा

0: अमन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी। सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
1: अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
0: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा लगता है विविध भारती में जब आप आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है। तो आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉबी टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: दू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर अभी तक आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। शाम के 5 बजे हैं। मीडियम वेव और FM पर हमारी दूसरी सभा के प्रसारण अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम।

आश्रम कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, इंसान जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो वो खाली हाथ आता है। उसको सारे रिश्ते नाते यहीं इस धरती पर मिलते हैं, उसको माँ बाप मिलते हैं और सारे रिश्ते, भाई बहन, चाचा चाची, ताई ताऊ, मौसी मौसा, जितने ढेर सारे रिश्ते हैं उसको धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करने लगते हैं, उसको आशीर्वचन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सबके बीच खेलता कूदता है, अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर गतिमान करता है। और उसका ये जीवन सबके साथ खेलने कूदने में, काम करने में और चारों ओर का माहौल देखने में बड़ा होता है, बढ़ता है। लेकिन इसी बीच जब उसके आसपास के वही लोग उससे किनारा करने लगते हैं तो बहुत दुख होता है। जब वो बड़ा होता है, किसी काबिल बनता है,

तो कोई भी इंसान अगर निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, किसी की सहायता करता है, हेल्प करता है, तो उसके मन में ये इच्छा नहीं होती कि वो सामने वाला व्यक्तित्व मेरे साथ ऐसा करेगा। लेकिन वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, सहायता करता है, और एक मानवता के नाते ये होना भी चाहिए इंसान में। लेकिन आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है। आजकल के लोग स्वार्थी होते चले जा रहे हैं। मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे हैं आप और हम महसूस करते होंगे अपनी ज़िंदगी में कि जब हम किसी के काम आते होते हैं, तब तो वो सामने वाला व्यक्तित्व हमसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है और अपना काम निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, यानी कि मक्खन लगाता है, जैसे कहते हैं बटरिंग करते हैं। अगर उसका काम होगा आपसे, तो आपसे वो बातें करेगा जो शायद आप में कल्पना भी नहीं कर सकते, कि सोचेंगे आप इतना प्यार हम पे लुटाया जा रहा है, क्या कारण है, आप महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच अगर आप अपने सारी जिम्मेदारी को दरकिनार करते हुए, सारे ज़रूरी कामों को दरकिनार करते हुए, प्रायोरिटी पे उसके काम को करते हैं, हेल्प करते हैं, और उसके बाद वो काम हल हो जाने के बाद जब उसका व्यवहार बदलता है, तो यकीनन हमें आपको दुख होता है। क्योंकि एक किसी ने कहा भी है ना कि मतलब की है दुनिया कौन किसी का होता है, धोखा वही देते हैं जिन पर एतवार होता है। और जो मतलबी लोग होते हैं वो असल में, जैसे हमने पहले बताया, कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिलते हैं और दूसरे के फायदों की परवाह नहीं करते। हमेशा काम निकलवाने के लिए मीठी मीठी बातें करेंगे, और अगर आपको मदद चाहिए होगी तो उस वक्त बहाने बना देते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं कि जन कितने बिजी हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अभी टाइम नहीं है, मैं हाँ कर दूंगा, टाल देंगे कामों को, और अंततः स्थिति ये आती है कि आप उस काम को हल करने में खुद ही जुट जाते हैं। कहने का मतलब है कि मन खिन्न हो जाता है, उम्मीद के धागे टूट जाते हैं, और उस पर भी ये कभी अपनी गलती नहीं मानते, हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। तो इसलिए इन सब से बचने का अच्छा तरीका यही है कि समय रहते इन सब की चालाकियों को पहचाना जाए और अपने आप को ऐसे लोगों से भावनात्मक रूप से दूर रखा जाए। ये सबसे अच्छा उपाय है, और समय रहते इन लोगों को पहचान ले जाए तो यकीनन पता होने पर दुख कम होगा।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे उन लोगों की जो अपने काम के वक्त दूसरों के लिए, दूसरों से हेल्प मांगते वक्त बहुत ही मिन्नतें करते हैं और ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं कि आप उनके झांसे में आ जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ऐसा करते हैं। यकीन जानिए दोस्तों, अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो आप उनसे हेल्प मांगिए, लेकिन उसके द्वारा की गई सहायता को आप समय रहते भूलिए मत, क्योंकि भूलना एहसान फरामोशी कहलाती है। ये नहीं है कि दूसरा सामने वाला अगर आपको जताए कि मैंने आपकी सहायता की है, मैंने आपका काम किया है, वो भी सही नहीं है। लेकिन हाँ, जिसने जो भी कुछ किया है उसको आप भूलिए नहीं। हो सकता है कि ऊपर वाले ने सामने वाले को अपना एक मतलब कहना चाहिए कि सहायता करने के लिए आपके लिए भेजा हो सकता है कि ईश्वरी उतर के आया हो आपके लिए, जिसने आपकी सहायता की। और आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग रील्स बनाने में तुले हुए हैं, फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए बड़े हुए हैं। मतलब इस कदर मतलब बाढ़ सी आ गई है सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, छोटी छोटी रील्स या वीडियो बना बना के डाल रहे हैं और अपना जो वर्चस्व है, वो अपनी जो प्रसिद्धि है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये माध्यम आपको मीडिया जगत में तो फेमस कर रहा है, लेकिन आप गौर कीजिए, एक ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या इतना वक्त आप अपने लोगों को दे पाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को दे पा रहे हैं, या उन लोगों को दे पा रहे हैं जिन्होंने पीछे बीते दिनों में, बीते सालों में आपकी सहायता की थी, आपकी सहायता की थी, आप उनको याद रख पा रहे हैं। यकीनन 90% से ज़्यादा लोगों का जवाब होगा नहीं। और अगर मन में सोच भी रहे होंगे नहीं है, हाँ ऐसा कुछ है कि हम उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे नहीं। तो मेरा कहना तो यही है, जुड़े रहिए, किसी भी माध्यम से जुड़े रहिए, लेकिन जो आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने हैं, आपके माता पिता, चाचा चाची, ताई ताऊ, फूफा बुआ, जो भी हैं रिश्तेदार, भाई बहन बड़े, जो आपके साथ पले बड़े हुए और जिसने आपको बचपन से लेकर अब तक अपने दुआओं से नवाजा, आशीर्वाद दिया, जिसके बलबूते आज आप इस मुकाम पर हैं, उनको इस सोशल मीडिया के चक्कर में मत भूलिए। आज स्थिति यह है लोगों दोस्तों के, लोग अपने घरों में साथ बैठ के खाना नहीं खा पा रहे हैं। अगर घर के अंदर 10 लोग भी हैं तो ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस है कि आप कह नहीं सकते। एक उस रूम में अपने मोबाइल पर लगा हुआ है, एक उस रूम में अपने मोबाइल पर लगा हुआ है, और पास बैठ के दो वक्त की सुख दुख की बातें, दो मिनट की बातें नहीं हो पा रही हैं। तो इस चीज़ पे हमें गौर करना होगा। देखिए, आपके फॉलोवर्स कई मीलों सैकड़ों दूर बैठे हैं जो आपको हाय हेलो मैसेज पर कर देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदारी एकदम काम आते हैं, ये ध्यान रखिए, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं।

तो दोस्तों कनेक्ट रहिए अपने अपनों के साथ, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, समय दीजिए और थोड़ा सोशल मीडिया से, मोबाइल से, इंटरनेट से दूरी बना के रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि उससे दूरी बना के रखिए, आप इम्पोर्टेंट काम ज़रूर करिए नेट के माध्यम से, जो आजकल डिजिटल युग है, ज़रूरी है इंटरनेट का उपयोग, लेकिन अपनों के साथ वक्त ज़रूर बिताइए, सुख दुख में उनके साथ रहिए, क्योंकि यही आपके काम आएंगे। आज का आज शाम कार्यक्रम समाप्त करने के बाद अखिलेश सक्सेना को आगे दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज शाम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। अब सुनिए युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: आसमान में बिखरे रंग, हल्की हल्की ठंडी हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाट इस शाम को और भी खूबसूरत बना रही है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति अपने सबसे सुंदर रंगों से हमारा स्वागत कर रही हो। इसी खूबसूरत शाम में स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में।
1: गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे और हर रोज की तरह बेसब्री से कर रहे होंगे अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी का इंतजार। तो दोस्तों, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। और आज आपके रेडियो साथी है मेघा सक्सेना
0: और साथ हूँ मैं फातिमा खान।
1: तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सवाल के साथ। हमारा आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने मानव वन्य जीव संघर्षों के समाधान हेतु हनुमान परियोजना शुरू की है?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। किस राज्य सरकार ने मानव वन्य जीवन संघर्षों के समाधान हेतु हनुमान परियोजना शुरू की है? दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर और आज के अपडेट किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने सही जवाब। और सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं के नाम हम बताएंगे प्रोग्राम के अंत में। मेघा, क्या पढ़ रही हो?
1: बस यूं ही हिंदी पत्रकारिता के बारे में पढ़ रही हूँ।
0: अच्छा, पर मेघा, क्या तुम्हें पता है हिंदी भाषा को पत्रकारिता के क्षेत्र में नई पहचान किसने दिलाई?
1: बिल्कुल, हिंदी पत्रकारिता दिवस ने, जो कि हर वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। इसे दिन वर्ष 1826 में पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ।
0: और मेघा, क्या तुम्हें पता है इस ऐतिहासिक समाचार पत्र के संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उन्होंने हिंदी भाषा में समाचारों के प्रसार की एक नई शुरुआत की।
1: सही कहा फातिमा, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। यह समाज को सही जानकारी देने, जनमत बनाने और लोगों की आवाज को सामने लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य करती है।
0: पर मेघा, आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता का स्वरूप बदल गया है। अखबारों के साथ साथ समाचार वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया भी सूचना का बड़ा माध्यम बन चुके हैं।
1: हाँ फातिमा, लेकिन इस तेजी के दौर में पत्रकारों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्हें निष्पक्ष, सत्य और तथ्यपूर्ण समाचार लोगों तक पहुंचाने होते हैं।
0: सही कहा मेघा, हिंदी पत्रकारिता ने स्वतंत्र संग्राम से लेकर आज तक समाज में जागरूकता फैलाने और जनहित के मुद्दों को उठाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: हाँ बिल्कुल, हिंदी पत्रकारिता दिवस उन पत्रकारों के योगदान को याद करने के अवसर देता है जिन्होंने सत्य और समाज की सेवा को अपना उद्देश्य बनाया है।
0: और मेघा, साथ ही ये दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि समाचारों को समझदारी से पढ़ें, उनकी सत्यता की जांच करें और अफवाहों से बचें।
1: तो आइए दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम सभी निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के महत्व को समझें और उसे सम्मान दें। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है दिन शनिवार और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, जो श्रोताओं की फरमाइशों पर आधारित होता है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे कॉल के माध्यम से और हमारा कॉलिंग नंबर है 0595-2324-326। हमें रहेगा आपकी कॉल्स का इंतज़ार।
0: साथियों, अब दीजिए इजाज़त एक छोटे से ब्रेक की। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर।
3: कुछ ख्वाबों की बात,
4: कुछ अपनों का साथ,
3: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
4: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
3: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
3: कुछ खास है आज।
5: साथियों, कुछ खास है आज में आज हम बात करेंगे भारत की एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक राज्य गोवा की, क्योंकि आज है गोवा राज्य स्थापना दिवस।
6: जी हाँ दोस्तों, हर साल 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ था।
5: साथियों, लेकिन गोवा का इतिहास केवल राज्य बनने तक सीमित नहीं है। लगभग 450 वर्षों तक गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के सफल अभियान ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया गया।
6: दोस्तों, मुक्ति के बाद गोवा दमन और द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जबकि दमन और द्वीप अलग केंद्र शासित प्रदेश बने रहे।
5: दोस्तों, गोवा केवल अपने सुंदर समुद्र तटों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ भारतीय और पुर्तगाली संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है।
6: दोस्तों, गोवा की आधिकारिक भाषा कोंकणी है। यहाँ के प्रसिद्ध समुद्र तट, ऐतिहासिक चर्च, रंग बिरंगे त्योहार और लोक संगीत दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गोवा हमें ये भी सिखाता है कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोते हुए विकास की राह पर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। शिक्षा, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी गोवा ने उल्लेखनीय कार्य किया है।
5: तो आइए दोस्तों, आज गोवा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम इस सुंदर राज्य की समृद्ध विरासत, स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और इसकी सांस्कृतिक विविधता को नमन करें।
6: और हमारी ओर से गोवा के सभी नागरिकों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कुछ खास है आज को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आज का दिन और क्यों है इतना खास।

0: अरे वाह दोस्तों, बचपन की ये प्यारी सी कविता सुनते ही कितनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। एक ऐसा नाम जो कविता में भी है, कहानियों में भी है और हमारी रसोई में भी। जी हाँ, बात हो रही है आलू की।
1: जरा सोचिए दोस्तों, अगर एक दिन आपकी थाली से आलू गायब हो जाए तो क्या होगा? समोसा अधूरा, पराठा फीका, चाट बेरंग और सब्जियों की दोस्ती भी कुछ कमजोर सी लगने लगेगी। यह वही साथी है जो हर सब्जी के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। शायद इसी वजह से आलू हमें जीवन का एक सुंदर संदेश भी देता है, हर परिस्थिति में कैसे एडजस्ट किया जाए।
0: और दोस्तों, इसी अनोखे साथी को सम्मान देने के लिए हर साल 30 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि साधारण दिखने वाला आलू दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, पोषण और किसानों की आजीविका में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: दोस्तों, आलू केवल स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही कारण है कि दुनिया के करोड़ों लोगों के भोजन का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: दोस्तों, दक्षिण अमेरिका से शुरू हुआ आलू का सफर आज दुनिया के लगभग हर कोने तक पहुँच चुका है। भारत में भी ये सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सब्जियों में से एक है।
1: तो दोस्तों, आज जब आप आलू की कोई डिश खाएं तो एक पल उसके महत्व को भी याद कीजिए, क्योंकि कभी कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजें ही सबसे बड़ा योगदान देती हैं। तो दोस्तों, कुछ खास है आज में, आज बस इतना ही।

0: दोस्तों अब वक्त हो गया है हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स का, और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस स्पेशल सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स में। आइए जानते हैं हमारे कौन से श्रोता साथी हमसे कॉल के माध्यम से जुड़ गए हैं।
1: हेलो हेलो फ्रेंड्स।
2: हेलो फ्रेंड, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, किस श्रोता साथी से बात हो रही है हमारी?
2: जी मैं आसाम से अमल बसुमतारी बात कर रहा हूँ।
1: अमल जी कैसे हैं आप?
2: जी बहुत अच्छे हैं। आज तो बहुत गर्मी है, फिर भी आपका प्रोग्राम सुन के थोड़ा राहत मिली हुई है थोड़ा थोड़ा। और अभी शाम हो गया ना, इसलिए थोड़ा हवा भी चलने लगी है।
1: जी तो सर
2: बहुत गर्मी था।
1: जी सर, आज हमारा टॉपिक है बचपन की कोई पुरानी याद, तो आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को?
2: बचपन में तो हम जब तक मैं छोटी थे तब तक मेरा पिताजी सब्जी बेचते थे। हमारा पिताजी वो सब्जी के लिए कुछ बाजार में लिया जाते थे और यहाँ पर हम भी हर रोज जाते थे। और ऐसे हमारे एक दोस्त थे, वो हमको हर रोज मिलने जाते थे और उसको बहुत अच्छा लगते थे मैं।
1: जी जी बहुत अच्छी याद है सर। ये बताइए आज आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे?
2: आज तो मैं बंदिश फिल्म का एक गाना सुनना है, बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना, गाने को सुनने के लिए मैं फरमाइश।
1: जी जी अभी आपको सुनवाते हैं आपका सॉन्ग, और आकाशवाणी रामपुर में आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद।
2: जी जी आज पहली बार कॉल लगाया है मैंने।
1: जी जी जी जी सुनिए अपना गीत।

0: हेलो हेलो फ्रेंड,
1: हेलो फ्रेंड, सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार। हाजी जी, कैसे हैं
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी रामपुर के और आकाशवाणी युवानी के क्या हाल है?
0: सब लोग? यहाँ बहुत अच्छे हैं और युवाणी परिवार में भी सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज हमारा टॉपिक है बचपन की सबसे पुरानी याद। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपने कुछ विचार बताइए श्रोताओं को।
1: जी, मेरा एक बचपन का बहुत ही पुराना बहुत ही अच्छा दोस्त था।
0: जी
1: हाँ, वो गुजर गया। उसकी जब भी याद आती है तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं।
0: जी ये तो आपने सही कहा। कोई हमारा बचपन का साथी जब हमसे बिछड़ जाए तो बेहद अफसोस होता है। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सच्चा झूठा। रफी साहब की और लता मंगेशकर की आवाज है और गाने के बोल है यूं ही तुम मुझसे बात करती हो। कुछ सुनने वालों के नाम है
0: जी
1: राजिया खान है, सिमरन खान है, इरफान खान, शाहिदा परवीन, शानूर अंसारी, शबनम अब्बासी, मकसूद हुसैन, रीना तमान, गुलस्ता, आकाश रस्तोगी, पम्मी पत्तेबाज से ये सब सुनना चाहेंगे।
0: जी ज़रूर, आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये गीत। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ कॉल करने के लिए आकाशवाणी रामपुर में।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो फ्रेंड,
1: हाँ जी, हेलो फ्रेंड।
0: सर किस श्रोता साथी से बात हो रही है हमारी?
1: जिला अमरोहा, नई बस्ती, पतई खालसा से बारह सिद्धि की बोल रहा
0: सर नमस्कार। सर ये बताइए,
1: हूँ। नमस्कार।
0: कि आज का हमारा टॉपिक है बचपन की कोई पुरानी याद, इसके पे आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बचपन का जो समय था उस टाइम पर, तो देखिए बरसात का मौसम बहुत प्यारा होता था, और बरसात के मौसम में एक दूसरे को छेड़ना छाड़ना, तो वो बहुत याद आती है।
0: अच्छा सर, ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हाँ, जहाँ तक पसंद का सवाल है, फिल्म का नाम रहेगा सनम दोस्तों, और गाने के बोल रहे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार होगा, ये गाने के शब्द हैं। और कुछ
0: सर
1: नाम जैसे
0: जी जी बताइए।
1: मोहम्मद आलम सिद्दीकी हैं, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी हैं, बिडिया लिसा सिद्दीकी हैं, शिफान सिद्दीकी, नादिया सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासिर अंसारी, सुदेश चौहान, अतीक तौफीक, दानिश सिद्दीकी, महेश पुरकैंत, इकराम प्रेमी साहब रामपुर, महाउद्दीन भाई रामपुर, फतुल्लापुर मुर्दाबाद से, मुकेश कसबी है, राशिद अंसारी है, पागबड़े से मुकेश अंसारी।
0: तो चलिए आपकी फरमाइश पे आपको सुनवाते हैं ये गीत।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फ्रेंड
1: हेलो फ्रेंड,
0: जी, हमारे कौन से श्रोता हमसे बात कर रहे हैं?
1: मैं कटोवा से बात कर रही हूँ। मैम
0: क्या नाम है आपका?
1: कहते हैं कि भमरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। भमरे तो करते हैं कलियों की चोरी, लेकिन दिल को चुराना काम है मेरा। हर शख्स को देती हूँ मोहब्बत की कली, यही तो इनाम है मेरा। और चांद सितारे रहते हैं मेरे आंचल में, इसीलिए तो शमा परवीन नाम है मेरा।
0: ओह अच्छा, आपका नाम शमा परवीन है। बेहद खूबसूरत शायरी आपने पढ़ी। आज हमारा टॉपिक है बचपन की सबसे प्यारी याद या कोई पुरानी याद जो आपको याद हो, बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ मैम, बचपन में जब बरसात होती थी तो बहुत मजा आता था, और कागज की कश्ती बनाते थे, यानी कि नाव बनाते थे और नहाते थे, उसे साथ में छोड़ते थे, वो कहाँ थी कहाँ पहुंचती।
0: जी, ये नाव वाली बात आपने बहुत अच्छी कही। बचपन में सभी बच्चों ने ये तो किया ही होगा, नाव बनाई होगी ज़रूर।
1: जी,
0: जी, ये बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: मैम मैं कल थोड़ी आपसे बात करना चाहूंगी। ईद उल अज़हा की मैं आपको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूंगी रेडियो की तरफ से सभी श्रोताओं को।
0: जी, आपका बहुत
1: और
0: बहुत शुक्रिया।
1: मैम मैं एक रेडियो की आरजे भी हूँ, और मुझे रेडियो पर फोन प्रोग्राम करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मैम।
0: अच्छा,
1: और
0: बेहद
1: मैंने भी
0: अच्छी बात है।
1: आकाशवाणी रामपुर से ही सीखा, आकाशवाणी रामपुर के जरिए ही मैं रेडियो की होस्ट बनी मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: और श्रोता मुझसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल का नाम है रेडियो डीएफटी वर्ल्ड हर दिल की धड़कन। रेडियो डीएफटी वर्ल्ड हर दिल की धड़कन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अच्छी बात है। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी वो बताइए अब आप।
1: मूवी का नाम रहेगा मुझसे शादी करोगी, और गीत के बोलेंगे लाल दुपट्टा उड़ गया मेरे हवा के। और
0: ठीक है,
1: मैम
0: आप
1: जाते जाते दो लाइनें कहना चाहूंगी,
0: जी बोलिए।
1: आप खास कर ईद उल अज़हा पे कहना चाहूंगी मैम। मैं कहते
0: जी जी
1: हैं कि
0: बताइए।
1: जब जब मेरे खुदा की मेहरबानी होगी, जब जब मेरे खुदा की मेहरबानी होगी, हमें इब्राहिम की सुन्नत निभानी होगी। एकाश मिल जाए शहीदी का हमको मर्तबा, फिर वो ईद कितनी सुहानी होगी।
0: जी, बहुत अच्छी शायरी आपने पढ़ी। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का आपको ये गीत। आपका बहुत शुक्रिया आकाशवाणी रामपुर में कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू
0: धन्यवाद।
1: मैम, अल्लाह हाफिज।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: नमस्ते। प्रेम
0: नमस्ते सर। किस श्रोता साथी से बात हो रही है आज हमारी?
1: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी सर। सर, आज हमारा टॉपिक है बचपन की कोई पुरानी याद, तो बताना चाहेंगे आज आप इसके बारे में?
1: बचपन की तो कई पुरानी यादें हैं, लेकिन उसमें से थोड़ी बहुत याद मैं आपको बताऊं। जैसे कि हम कहीं बाहर जाते थे ना दोस्तों के साथ में, तो
0: जी
1: एक दूसरे का मतलब टिफिन खा लेते थे, और अपने एक दूसरे की मतलब किताबें भी एक्सचेंज करके मतलब छुपा लेते थे। और मतलब 2 दिन बाद फिर बताते थे कि आपकी किताब हमारे पास में है, आपकी ये कॉपी हमने ले रखी है, तो फिर उनको वापस दे देते जाके हम।
0: जी जी सर। सर, स्कूल की तो बहुत अच्छी अच्छी यादें होती हैं। सर, आज ये
1: जी
0: बताइए,
1: हाँ,
0: आज
1: और
0: आप जी
1: जी, और आपको बताऊं, जैसे कि स्कूल जाने के बाद में हम घर पे आते थे और एक दूसरे के मतलब होमवर्क में भी मदद करते थे, और वो भी हमारी मदद करते थे, और साथ में बस घूमते रहते थे और पढ़ाई करते
0: जी
1: रहते
0: जी स्कूल की यादें बहुत अच्छी होती हैं। सर, ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: थे। ये फिल्म का नाम है पाकिजा और गाने के बोले मौसम में आशिकाना।
0: जी, आपकी फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको ये गीत आकाशवाणी रामपुर में। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो हेलो फ्रेंड
1: हेलो हेलो फ्रेंड,
0: जी, हमारे कौन से श्रोता साथी हमसे जुड़ गए हैं?
1: गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, अपना
1: मोहल्ला
0: नाम?
1: हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, सर कैसे हैं आप?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ और हाँ जानना चाहता हूँ आप लोग कैसे हैं और आकाशवाणी में सभी लोग कैसे हैं।
0: यहाँ पर सब लोग ठीक हैं, आकाशवाणी में सब लोग अच्छे हैं।
1: जी
0: आज
1: मैम,
0: हमारा टॉपिक है बचपन की सबसे पुरानी याद। तो कोई ऐसी याद है जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना
1: मैम
0: चाहेंगे?
1: बचपन की तो बहुत सारी यादें हैं,
0: कोई एक
1: लेकिन
0: याद बता
1: क्योंकि
0: दीजिए।
1: हाँ एक याद है मैम। एक बार मैं बचपन में जब थोड़ा छोटा था तो मैं एक पेड़ पे चढ़ा था,
0: जी
1: जामुन के पेड़ पे, जामुन तोड़ने के लिए। और वहाँ से उसका पेड़ का एक जो वो होती है, एक टहनी जो होती है, मतलब वो टूट गई थी और मैं नीचे गिर गया था। और काफी मतलब चोट भी लगी थी, तो
0: जी
1: वो बातें आज भी मतलब मुझे याद हैं।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मैम जामुन का जो पेड़ होता है वो बहुत मुलायम और बहुत नाजुक होता है, उसकी जो टहनियाँ होती है वो टूट जाती है एकदम।
0: जी उस वक्त आपको इतना ज्ञान नहीं होगा
1: हाँ
0: जामुन
1: उस
0: के पेड़
1: वक्त
0: के
1: हमें
0: बारे
1: इतना
0: में।
1: वो नहीं था, लालच था बस मन में जामुन खाने का, तोड़ने का,
0: ठीक है
1: और
0: सर,
1: हम पेड़ पे
0: बताइए,
1: चढ़ गए।
0: गीत बता दीजिए, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है बंदिश
0: जी,
1: और गीत के बोले, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ
0: जी सर,
1: देखो तेरी मांग में सिंदूर सजा के,
0: जी
1: ये
0: सर,
1: वाला गीत
0: आपकी
1: है मैम।
0: फरमाइश पर सुनवाते हैं आपको ये गीत। आपका बहुत बहुत
1: ओके मैम,
0: शुक्रिया,
1: थैंक
0: धन्यवाद
1: यू,
0: आकाशवाणी रामपुर में कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू मैम।

0: दोस्तों ये था हमारा सेगमेंट हेलो फ्रेंड्स, और हमारे इस सेगमेंट में आज बस इतना ही। अब घड़ी की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, पर उससे पहले जान लेते हैं आपसे शुरुआत में पूछे गए सवाल का सही जवाब। हमने आपसे सवाल पूछा था, किस राज्य सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्षों के समाधान हेतु हनुमान परियोजना शुरू की है, जिसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और इस सवाल का सही जवाब देने वाले श्रोता हैं आप सभी
1: जॉन डी कैस्ट्रो, पुंजाजी नावकर, भगवत चौबे, सुदर्शन शाह, हीरामणि वर्मा, राणा तलत, उत्तम सिंह, अजीत कसाना, आरसी कामड़े, धर्मेंद्र छिपा, मोहम्मद रफीक पवार, परवीन चौहान, दिनेश वर्मा, नंद कुमार, राजेश, रियासत हुसैन, तुलसी मस्कीन, दिग्दर्शन गौण, किशन सपकाल, बीएल थाकड़, संजय ढींगिया, राधेश्याम पांडे, विमल सिंह, राजू मेघलानी, नवी हसन अब्बासी, हनुमत शिंदे, रामकुमार रेवाड़, जगदीश थाकड़, मोहम्मद यासीन, गुरमीत सिंह, सुरेश जायसवाल, लक्ष्मण, मसरूर हसन, हाजी गफ्फार खां, निसार सलमानी, लालगिरी गोस्वामी, लाल मोहम्मद अंसारी, दामोदर, राष्ट्रपाल गजभिये, मोहम्मद सईद अब्बासी, धीराज भाई, बब्बल मल्होत्रा, अरविंद कुमार, कैलाश फूलमाली, इरशाद अहमद, विठल सुरोशे, फागुराम यादव, मोहम्मद आमिर, सुनील पाठक, हसमत अब्बासी, राजवीर सिंह विजय, रवि रस्तोगी, गंगा सिंह रावत, महाराजन कीर्तनपुरी गोस्वामी,
0: आमिर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, आकाश रस्तोगी, सत्येंद्र चंसोलिया, शकील अहमद इदरीसी, रवि कुमार राहुल, देवशंकर तमूरिया, जाकिर मंसूरी, शाहरून नूर अंसारी, शाहजी बोतके, गजनन येले, मोहम्मद वक्कार फरीदी, दुर्गाराम साहू, मोहम्मद हफीज, नितेश कुमार, गंगा सिंह रावत, चौधरी राजवीर सिंह, मुकेश कश्यप, राशिद हुसैन अंसारी और विनोद मुन्नत। आप सभी को हमारे सवाल का सही जवाब देने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी को हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलिएगा।
1: हमारे इस पते पर हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आइए युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारा पिन नंबर है 244901।
0: दोस्तों, आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी लिख भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876 और हमारा ईमेल एड्रेस है patrmila@rampur.gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त आपसे विदा लेने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। हम आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत गाता चल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में कुछ सूचनाएं दे दें।

थाना प्रभारी थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल हमें सूचित करते हैं कि प्रियंका पुत्री श्री इमरत सिंह निवासी ग्राम हाफिजपुर थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल विगत 1 दिसंबर 2024 से ग्राम हाफिजपुर से लापता है। प्रियंका की उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला, एकहरा बदन, चेहरा लंबा, बाल काले और वो सलवार सूट पहने हुए है। प्रियंका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। प्रियंका के बारे में जिस किसी को भी सूचना हो अथवा मिले वो कृपया इस पते पर सूचित करें। थाना प्रभारी थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, फ़ोन नंबर है 9149282299। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9149282299।

थाना कैला देवी जनपद संभल के थाना प्रभारी हमें सूचित करते हैं कि कुमकुम पत्नी मनोज कुमार निवासी ग्राम लालपुर पोस्ट कैला देवी जनपद संभल विगत 8 मई 2026 से दिन के 1 बजे से ग्राम लालपुर पोस्ट कैला देवी से लापता हैं। कुमकुम की उम्र 35 वर्ष है, कद 5 फुट है, रंग गोरा, इकहरा बदन, चेहरा गोल, काले बाल और वो लाल रंग का कुर्ता दुपट्टा और सलवार व लाल चप्पल पहने हुए हैं। कुमकुम की मानसिक स्थिति सही नहीं है। कुमकुम के बारे में जिस किसी को भी सूचना हो अथवा मिले वो कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना प्रभारी, थाना कैला देवी, जनपद संभल। फ़ोन नंबर है 8299020014। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8299020014। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रोता मंच, जिसमें आज आप सुनेंगे श्री राजवीर सिंह से की गई भेंटवार्ता। आपसे बात करेंगे असीम सक्सेना। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज आप सुनेंगे पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा की गई कुछ गजलें। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा गीत गाथा चल, रात्रि 8 बजे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती, इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, इसको भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में आज आप सुनिए सबसे पहला गीत मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म है अजूबा, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म नगीना के इस गीत के साथ चित्रपट संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप इस समय सुन रहे हैं हमारे आज की दूसरी सभा के प्रसारण। शाम के 6:20 होने को हैं। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो अनिल भैया, राम राम।
1: राम राम अखिलेश भैया, और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैया और बहनों को हम दोनों की राम राम, राम।
0: और भैया कैसे हो, घर पर सब कुशल मंगल तो हैं?
1: हाँ भैया, हम तो अच्छे हैं, और उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं ना, बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं और वे भी अच्छी तरह से होंगे।
0: हाँ भैया, और जब वे कड़ी मेहनत अपनी खेती बाड़ी में करेंगे तभी अपनी फसल से अच्छा मुनाफा ले पाएंगे।
1: बिल्कुल, देखो भैया, जानकारी हमारे पास बहुत सारी है और हम अपने सभी किसान भाइयों को ले बारी बारी से सब जानकारी कराएंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कुछ संदेश।
2: जनगणना से जन कल्याण, जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: तो भैया देखो, आपने जान ली कि जनगणना कितनी जरूरी है, और हमारे किसान भैया अपने जो घर परिवार है उसमें जनगणना जरूर करा लें। ऐसा ना हो कि अपने खेती बाड़ी के काम काज में वे भूल जाएं कि जनगणना कैसे होगी और कब होगी, तो जब बात को भी विशेष उन्हें ध्यान रखना।
0: हाँ भैया, और जाके संग संग जैसे बात खेती बाड़ी की चली रही है ना, तो जा समय खेती बाड़ी के बहुत से काम हैं जो हमारे किसान साथी इनको अपने खेत में करने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और भैया आप देख रहे हो कि गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसी गर्मी में हमारे किसान साथी किस तरीका से खेती बाड़ी के कामों को निपटाएं ताकि भैया वे गर्मी से बचे रहें और उनके जो खेती बाड़ी के काम है ना वे प्रभावित ना हों।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन किसान भाइयों को ध्यान रखनी है, गर्मी से किस तरह से उनको बचने हैं। देखो, एक तो बात यह है कि जब भी कपड़ा पहने तो फुल पूरी आस्तीन के कपड़ा पहने, और सिर पर अगर बाहर जाएं और धूप है तो कोई ना कोई कपड़ा बांध लें जिससे कि उनके सिर पर धूप ना लगे। और होत का है, जब सिर पर धूप लगती है तो उनको जो दिमाग है ना वो पूरी तरह से काम ना करता है, और तेज धूप में उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं। और एक काम और करें कि समय रहते पानी भी जरूर पिएं।
0: हाँ भैया, क्योंकि गर्मी को मौसम है जा समय हमारे किसान साथी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और संभव हो तो हमेशा अपने साथ पानी जरूर चलें। और जैसे आपने बात करी ना कपड़न की, तो भैया बहुत से हमारे भैया जो हैं वो का सोचते हैं कि भैया जितने कम कपड़ा पहनेंगे ना गर्मी में उतनी गर्मी कम लगेगी। तो भैया गर्मी तो कम ना लगे, लेकिन जो हमारे जैसे हाफ आस्तीन की हमने शर्ट पहन ली,

0: लेकिन तो भैया पता लगो कि बाकी हाथ पैर तो सब सही हैं और जो बाहर रह गए
1: वे काले पड़
0: वे
1: गए
0: जरूरत से ज्यादा काले रह गए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो इस
0: तो
1: क्योंकि काले क्यों पड़े, क्योंकि वहां धूप लग रही है।
0: हाँ
1: और बाकी शरीर देखो कपड़ा पहना है लेकिन हल्के कपड़ा पहना है, ज्यादा मोटे कपड़ा ना पहना है, क्योंकि मोटे कपड़ा में गर्मी लगेगी और हल्के कपड़ा पहनेंगे तो उनमें गर्मी कम लगेगी।
0: हाँ। और साथ ही जैसे बात खेती बाड़ी के कामन की, तो हमारे सभी किसान साथी सुबह को जल्दी उठ के अपनी खेती बाड़ी के कामन को करें,
1: बिल्कुल।
0: और भैया जाही तरीका से सांझ को करें, और दोपहरिया में भैया काऊ छायादार वृक्ष के नीचे या घर में अपने जो है ठंडी जगह पे आराम करें, ताकि गर्मी से उन्हें कोई प्रभावित ना हो, उनका स्वास्थ्य खराब ना हो।
1: बिल्कुल। तो इन बातों को ध्यान रखें। और एक काम और हमारे किसान भैया कर रहे हैं कि देखो जा रहे हो कि पानी की बहुत ज़रूरत है, जैसा मैं देखो जा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे किसान भैया की जो फसलें हैं उनमें भी पानी लगाने हैं और जो पशु हैं उन्हें भी पानी देने हैं। तो देखो पानी की बड़ी आवश्यकता है और पानी की बचत बहुत ज़रूरी है। पानी की छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी हद तक पानी को बचत करो जा सकता है।
0: हाँ भैया।
1: हमारे बहुत सारे किसान भैया देखो जाते हैं कि मोटर चला देते हैं और पानी व्यर्थ जाता है। पानी को बेकार ना करें, जितनों ज़रूरत हो उतनों ही पानी की लें
0: हाँ
1: और
0: भैया।
1: उतनी ही मोटर चलावें।
0: जैसे कि भैया बात अपने अगर धान की करें, तो धान के ताई 3 से 4 लीटर पानी जो है हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हम क्या करते हैं, गर्मी को मौसम है तो पतो लोगो भैया मोटर चल रही है धड़ल्ले से और पानी पे पानी डाले जा रहे हैं,
1: बिल्कुल।
0: और भैया ठंड में उनसे कह दो ना धान ताई, तो कहा बस इतना ही बहुत है।
1: इतना ही
0: तो
1: बहुत
0: जाला भैया गर्मी में उतने ही पानी को इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, कम से
1: बिल्कुल।
0: कम धान में पानी खर्च करें, और संभव हो तो जैसे हम फव्वारे से नहाते हैं, एक तो खुली टंकी से नहा लो, एक फव्वारे से, अगर
1: बिल्कुल।
0: हम फव्वारे से नहाएं ना तो हमें आनंद पूरा आए वो, और जो हमारा पानी जो है वो कम खर्च हो।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो फव्वारों हर जगह संभव ना है, हमारे बहुत सारे किसान भी इनके यहाँ पर फव्वारों ना होते
0: हाँ हाँ भैया
1: हैं।
0: जिनके धोरे हैं मैं उनकी बात कर रहा
1: हाँ,
0: हूँ।
1: लेकिन हमारे किसान भैया इनके लिए देखो जैसे अगर मग्गा डाल के नहा रहे हैं तो भी कम पानी से नहा सकते हैं, ऐसी बात ना
0: और
1: है।
0: आजकल भैया अपने किसान को तुम ऐसो मत समझो, आप देखो तो जाके किसानों के मकान गांव में कैसे कैसे बने हुए हैं,
1: बिल्कुल भैया
0: शहर
1: देखो।
0: में का मकान होंगे।
1: और हमारा तो जय प्रयास है कि हर किसान भैया के अच्छे मकान हों और उनके जीवन यापन की आमदनी बढ़े, और उसी के लिए हम बहुत सारी जानकारी भी अपने किसान बहन के लिए लेकर आते हैं। और हमारे जो किसान भैया जैसे कोई भी फसल उगा रहे हैं या कहीं कोई बागवानी कर रहे हैं, उनके जो उत्पादन है उसको किस तरह से तोड़ने हैं, उसे किस तरह से सुरक्षित रखने हैं, उससे किस तरह से ज़्यादा जो सावधानियाँ हैं वे बरती जाएँ जिससे उनको लाभ हो
0: हाँ भैया, जैसे
1: और
0: कि जा
1: उन
0: समय हमारे जो बागन में आम और लीची की फसल तैयार है, बाकी थोड़ा ही चल रही है, तो जाई संबंध में कुछ जानकारी अपने किसान साथियों को दिलवा दो।
1: बिल्कुल भैया जय विषय में हम एक जानकारी लेकर आए हैं, आम व लीची की तुड़ाई में सावधानियां। और जय विषय की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर AK सिंह और आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे हैं श्री राजेंद्र भट्ट। भेंट वार्ता को।
2: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंतनगर विश्वविद्यालय के फल वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह सर। सर आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों जैसे कि अब समय नजदीक आ रहा है आम की तुड़ाई का, तो सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं डॉक्टर साहब कि आम जो है गुणवत्ता युक्त मिले हमारे किसान भाइयों को आने वाले समय में, उसके लिए किसान भाई क्या करें।
3: किसान भाइयों और बहनों आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आम और लीची में तो फल फूल इसमें जो आता है मार्च में आ चुका, और उसके बाद बहुत सारी क्रियाएं की जा चुकी हैं, इसमें न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग, जो आपके केमिकल्स होते हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया गया है, और अच्छी गुणवत्ता हेतु जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं हम, जो पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं वो भी लगभग सारी की जा चुकी हैं, लेकिन जो दशहरी प्रजाति है यह यहाँ पर जो है हम जून के लास्ट वीक में ही तोड़ते हैं, तो इसमें एक सबसे पहली चीज जो है कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग। कैल्शियम क्लोराइड अगर 2% के हिसाब से आम तोड़ने के 1 महीना पहले कर दें तो आम की गुणवत्ता अच्छी होती है, उसकी सेल्फ लाइफ मतलब आम को तोड़ने के बाद वो लंबे समय तक लगभग 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है और आम खराब नहीं होता है। तो अच्छी उपज के लिए एक तो आपको ये करना है कि कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग करना है। दूसरा, इसके साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि कहीं कहीं आम में कोयलिया रंग, जैसे आम लगा हुआ है और आम के टिप में देखेंगे कि काला रंग आने लगा है। आम में आप सभी जानते हैं कि काटने के बाद कभी कभी जो है ना वो भूरा भूरा का पैच दिखेगा आम के अंदर, उसको इंटरनल नेक्रोसिस कहते हैं। तो अभी 1 महीने का समय बचा है, एक स्प्रे हम कर सकते हैं, इसको हम 0.5 ग्राम बोरेक्स का प्रयोग कर रहे हैं इमीडिएटली।

0: लास्ट वीक में पकता है। अगर हम चौसा की बात करें तो जुलाई के लास्ट वीक तक तैयार होता है। अगर लंगड़ा की बात करते हैं तो लगभग वो जुलाई के पहले सप्ताह तक तैयार होता है। ये जो आम की प्रजातियां हैं विभिन्न समय पर तैयार होने वाली होती हैं। इसमें अभी एक अर्ली प्रजाति आती है जैसे बॉम्बे ग्रीन, तो बॉम्बे ग्रीन आपकी 15 जून तक ही तैयार हो जाती है। तो जो तुड़ाई का समय है वो अलग अलग है, तो प्रजातियों के हिसाब से आप तुड़ाई करें, ये देख लें कि तुड़ाई के लायक हो गया कि नहीं। इसमें किसान भाइयों के लिए हम बताना चाहेंगे कि सबसे बढ़िया तरीका होता है कि हम कैसे पहचाने कि तुड़ाई के लायक हमारा आम हो गया है। तो इसमें उस आम के वृक्ष के नीचे जब आप जाएं और ये देखें कि इसमें से एक दो आम अपने आप टपक करके गिर गया हो, मतलब वो टपका मेथड कहते हैं कि आम अपने आप गिरा हो नीचे और वो पका हुआ हो। अगर उसको काट के देखें तो देखने में आएगा आपको कि ये तो अंदर से पका हुआ है, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो गया, तो वो वही समय होता है जब आम को हमें तोड़ना चाहिए। साथ ही साथ जब आम तोड़ते हैं तो ये किसान भाई को ये भी ध्यान रखना है कि जो बौने किस्म के प्रजाति है उसमें तो सिकेटियर की सहायता से आप आम को तोड़े, आम को उस सिकेटियर की सहायता से काट करके निकालना उसके डंठल को। और अगर बड़े आकार के फल हैं तो आजकल हार्वेस्टर आते हैं, पोल में ऊपर लगा दिया जाता है और उस मैंगो हार्वेस्टर का प्रयोग करें जिससे कि आपका फल खराब नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है कि फल तोड़ते टाइम जब तोड़ते हैं तो तोड़ते समय उसमें से एक चींपा निकलता है जो कि अगर आम के ऊपर फैल गया तो चींपा से आपका आम खराब हो जाता है। अगर वो 6-7 दिन बाद देखेंगे काला काला होने लगेगा। इससे बचने हेतु जब भी आम को तोड़ें 10 mm जो कहते हैं 1 cm के करीब, तो मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि इसमें जब हम आम का फल तोड़ते हैं तो लगभग 8 से 10 mm या कह लीजिए 1 cm के करीब उस पर डंठल छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि उसमें गोंद उसके ऊपर नहीं फैलेगा और चेपा नहीं फैलेगा और आम की क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। साथ ही साथ चूंकि गुणवत्ता की भी बात कर रहे थे तो इसमें एक चीज जरूर ध्यान दें कि चूंकि और गर्मी बहुत पड़ रही है तो समय समय पर आप सिंचाई का ध्यान अवश्य दें। जो भी आम की प्रजातियां हैं जो पहले पकने वाली हैं, लेट पकने वाली हैं, तो उसमें कम से कम आप हफ्ते में तो एक सिंचाई कर ही रहे ताकि अच्छी गुणवत्ता वाला आम आपको मिले। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो तुड़ाई का समय है जैसा कि हमने बताया तो लगभग उसके 10 से 12 दिन पहले आप सिंचाई उस बगीचे में रोक दें। तोड़ने के जो उसका तोड़ने का समय है 12 दिन पहले आप जो है सिंचाई करना बंद कर दें, तो ये बहुत ही जरूरी रहता है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे जब आप आम तोड़ते हैं तो उससे चेपा निकलता है जैसे मैंने बताया, तो डंठल लग दिया आपने तो ठीक है, थोड़ा सा रख करके काटा, नहीं तो आपको करना यह है कि आम को आप उल्टा करके रख दें कहीं भी, जैसे ट्रे टाइप का ले लिया, आजकल तो ट्रे आते हैं और नीचे छेद भी होता है उसमें, और उससे क्या होता है डी शेपिंग, जो गोंद निकलता है जो चेपा निकलता है वो बह करके निकल जाता है और आम के ऊपर नहीं फैलता है। तो ये जो है हमें तैयारी इस तरह से करनी चाहिए। और साथ ही साथ जब आम का फल तोड़ लेते हैं तो एक चीज और ध्यान दें कि ग्रेडिंग अवश्य करें। प्राय देखने में आता है कि किसान भाई ग्रेडिंग करते नहीं है और आम जो है कई साथ भर करके और बाजार भेज देते हैं, तो जब उनका रेट लगाया जाता है तो चूंकि मिक्स्ड होता है तो वो जब भी होता है तो उनके साथ यही होता है परेशानी कि उसका रेट जो है कम लगाएंगे, छोटे के हिसाब से दिखा के लगा देंगे। तो आप जो अच्छी किस्म के बड़े साइज के आम है, बढ़िया है क्वालिटी में, कहीं कोई दाग नहीं है धब्बा नहीं है, उसको एक तरफ छाट लें और जो सेकंड ग्रेड के आम है उनको एक तरफ छाट करके और दोनों को अलग अलग मतलब ग्रेडिंग करके तब आप मार्केट में भेजें, तो इससे देखेंगे कि आपके आम के उपज का जो है अच्छा दाम मिल जाता है।
1: जी सर, मक्खी होती है जो हमारे फल को काफी नुकसान पहुंचाती है, बताइए सर उसका जो नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करेंगे, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इसका नियंत्रण कैसे करेंगे।
0: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और उसको हम फल मक्खी कहते हैं। अब बात यह है कि फल मक्खी का नियंत्रण कैसे करें। फल मक्खी के प्रयोग हेतु आप अप्रैल से लगाया तो अप्रैल मई जून तीन अप्रैल से ही स्टार्ट कर देते हैं और इसको हर महीने पर वो ट्रैप लगाते हैं, ट्रैप को चेंज करते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि 1 हेक्टेयर अगर आपका बगीचा है आम का तो लगभग उसमें 10 ट्रैप लगाए जाते हैं। अब बात है कि वो ट्रैप क्या होता है, ये क्या होता है कि आप ट्रैप इस तरह से तैयार कर सकते हैं कि आपको 3 चीजें इकट्ठी करनी है, एक इथेनॉल, दूसरा मिथाइल यूजिनॉल और तीसरा क्लोरपाइरीफास। तो जो इथेनॉल बताया इसका 6 भाग, जो मिथाइल यूजिनॉल है इसका 4 भाग और जो क्लोरपाइरीफास है इसका 1 भाग, इन तीनों का आपको मिश्रण बनाना है। फिर आपको छोटे छोटे 1-1 cm के आपको टुकड़े लेने हैं, गुटके लेने हैं, जो लकड़ी के गुटके होते हैं, आप आरे की मशीन से भी उसको इकट्ठा कर सकते हैं। फिर इनको इस मिश्रण में भिगो करके और आप बॉटल ले लें, एक नॉर्मल बॉटल जो घरों में जो हम बिस्लरी का बॉटल लाते हैं, जो पानी पीने के लिए बॉटल जो आता है, उसको ऊपर से उसका थोड़ा सा गर्दन काट के और उसमें फिर आप जो है एक रस्सी बांधते हुए इन दवा को आप उसमें अंदर डालिए और दवा से भिगा हुआ गुटका है उसको अंदर डालिए और फिर इसको आप पेड़ पर लटका दीजिए। इससे क्या होता है कि जो ये फल मक्खी

0: हैं खुद ब खुद उनकी तरफ खींच करके आ जाती हैं, उसमें गिरती हैं, और चूंकि इसमें क्लोरपाइरीफास भी डाल रखा है तो ये फल मक्खी मर जाती हैं। तो अभी आप जो भी फल कुछ किसान भाई तो ऑलरेडी लगाए होंगे क्योंकि मैंने जैसा कि बताया अप्रैल से ही शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाए हैं और इसका अभी प्रकोप नहीं हुआ है तो आप इसको तुरंत जो है अपने बगीचे में जाकर के और इस ट्रैप को लगाएं जैसा कि हमने बताया उसी में लगाएं और जिससे फल मक्खी से बचाव हो सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, शीतगृह की अगर हम बात करते हैं तो शीतगृह के बारे में थोड़ा सा बताइए कि शीतगृह से क्या तात्पर्य है।
0: इसमें ऐसा है कि आम को हम स्टोर करने की बात करते हैं कि जैसे हमको दूर तक भेजना है तो पहले क्या करते हैं कि आम को तोड़ करके और अगर आपको शीतगृह में रखना है किसी के यहाँ अगर व्यवस्था है तो ये ध्यान रखें कि ये 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा देखा गया है कि अगर 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे टेम्परेचर पर आप स्टोर करते हैं तो आम में कई सारी मतलब जो आप आम स्टोर कर रहे हैं उसको इंजरी होगी, तो आम वो फिर जैसे आप निकालेंगे शीतगृह से वो आम खराब होने लगेगा और मार्केट में बेचने लायक नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही एक चीज और बताना चाहेंगे हम किसान भाइयों को कि जैसे आप आम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद आम को पकाने के लिए लोग प्रायः देखा जा रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। आप देखते होंगे कि आम के डब्बे हैं उसके अंदर एक पुड़िया सा डाला हुआ होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड है। जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है आम के बीच में रख देते हैं तो नमी रहती है, नमी जब उसके जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा इससे एक गैस निकलती है जिसका नाम है एसिटिलीन गैस, और वो एसिटिलीन गैस फल को पका देता है। लेकिन एसिटिलीन जो है बहुत ही हानिकारक होता है, इसका कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होता है, तो इसलिए आप उसका प्रयोग ना करें, उससे बचें। लेकिन आप पूछेंगे कि भाई क्या करें जैसे आम हमारा अच्छी तरह से पक जाए, बिल्कुल एक समान पके, इसके लिए मार्केट में इथरल नाम की एक जो है हार्मोन, इथरल नाम का हार्मोन आता है जिसको लाल दवा के नाम से भी लोग जानते हैं, तो ये इथरल ले लीजिए और इसका 300 से 400 पीपीएम का सोल्यूशन बनाते हैं। अगर मैं बोलूं कि 300 से 400 पीपीएम तो आपके लिए बताना चाहूंगा कि लगभग 0.9 ml, या आप ये कर लीजिए कि 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसका सोल्यूशन बना लीजिए। इथरल लाइए मार्केट से, 1 ml उसमें से निकालिए, 1 ml 1 लीटर में पड़ेगा। तो अगर आपको भाई आम उसमें डुबो करके फिर निकालना है तो 10 लीटर कम से कम पानी बनाना है, तो 10 ml वो इस केमिकल का प्रयोग करें तो 10 लीटर पानी लेकर के उसमें 10 ml ये डाल दें, एक सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन बनने के बाद उसमें आम को आप डुबो करके और फिर बाहर निकालते गए तो उससे ये दवा लग जाएगी और आपका आम जो है जैसे ही बाहर निकाल के रखेंगे और जब उसको एयर ड्राई करेंगे मतलब छाया में सुखा लीजिए और फिर उसको डब्बों में भर दीजिए तो खुद ब खुद अपने 3-4 दिन बाद उसमें बढ़िया सा कलर, बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर आएगा और आपका आम बिल्कुल पक करके तैयार हो जाएगा। जब हम जिस घोलने की बात कर रहे हैं कि 1 ml जो है इथरल 1 लीटर में डालें तो उसमें पानी को आप थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, लगभग 52 सेंटीमीटर के करीब कहते हैं कि 52 सेंटीग्रेड के करीब उसका तापमान हो। आप जो है उसमें अगर इस आम को दवा के साथ बनाया हुआ है और अगर आम को इस सोल्यूशन में डालते हैं तो एक आम में स्पॉन्जी टिश्यूज की प्रॉब्लम आती है और भी कई सारी समस्याएं आती हैं। तो अगर आप इससे इस दवा थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर जो मैंने बताया कि थोड़ा गर्म पानी हो और उसमें डुबो करके बाहर निकाल के रखते जाएं तो जो पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज होती है देखा गया वो भी कम होती है, जैसे एंथ्राक्नोज वगैरह वो कम लगती है। तो दोनों चीज आपकी हो गई कि इथरल का दवा जो मैंने बताया पकने हेतु तो उसका 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग करें। प्रयोग करने के बाद प्रयोग करने का मतलब यह है कि आप सोल्यूशन बना लें, उसमें आम को डुबोएं, डुबोने के बाद बाहर निकालें, फिर छाया में सुखा लें और फिर पैकिंग करें तो आप देखेंगे कि आपका आम बहुत ही अच्छी तरह से पकेगा, उसमें बढ़िया कलर आएगा और इसका मार्केट में जो प्राइस है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे ये तो ही आम की बात और जैसे कि डॉक्टर साहब आप हम सभी जानते हैं कि आम लोगों की पहली पसंद है, तो जिस तरह आम लोगों की पसंद है उसी तरह लीची भी लोगों की पसंद है। तो अगर हम लीची फल की डॉक्टर साहब बात करते हैं तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो बगीचे हैं वहां पे पेड़ों में इस समय लीची लगी हुई है, तो इससे में डॉक्टर साहब लीची में अभी कौन कौन से महत्वपूर्ण कृषि कार्य करने की आवश्यकता है?
0: अब लीची तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं किसान भाई लोग, 1 जून से प्रायः वो लीची तोड़ने लगते हैं, लेकिन तराई में अगर देखा जाए तो जो लीची का मिठास जो आता है वो लगभग 10 जून के बाद, आप 10 से 15 जून के करीबी तोड़ना, इसको उसके करीबी स्टार्ट करें तोड़ना, 1 जून से नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब फर्स्ट वीक से ना तोड़ करके आप सेकेंड वीक आप जून से शुरू करें। अब इसमें अब आपको बताना चाहेंगे कि देखिए लीची में 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इस समय। एक तो आप समय समय पर उसकी सिंचाई हर दूसरे दिन करें, पानी की अगर आवश्यकता है तो आप जो है अगर घर के आगे पीछे है तो उसकी सिंचाई करते रहें दूसरे दिन। खेत में भी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि उसकी सिंचाई हफ्ते में 1 दिन तो आप अभी खरीदें और जरूरत पड़ने पे दो दिन भी कर दें, क्योंकि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी से लीची भी फटता है और लीची फटने से बहुत नुकसान होता है।
1: जी जी।
0: और इसके लिए एक तरीका ये है कि हम कहते हैं ओवरहेड स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, मतलब ऊपर की तरफ से पानी का छिड़काव, तो वो भी हम कर सकते हैं। चाहे हम जेट लगा के कर दें या जो मशीन स्प्रे वाली आती है, फुट स्प्रेयर है, उससे भी आप जो है सुबह या शाम के टाइम में, दोनों टाइम सुबह और शाम को पानी का स्प्रे करते रहें ऊपर, ताकि नमी बनी रहे। नहीं तो लीची इसमें बहुत तेज फटती है, उसको लीची से फटने के लिए, फटने से बचाने हेतु आप उस पर पानी का छिड़काव सुबह और शाम दोनों टाइम करें। और बाकी नहीं तो मैंने बताया कि सिंचाई तो आपको करना ही करना है, हफ्ते में कम से कम दो सिंचाई करें। इसके साथ ही जो दूसरी बात है कि चूंकि अब ये समय आ गया है, अब जैसे हमारे थराई रीजन में रोज सेंटेड वैरायटी है लीची की, वो बहुत बढ़िया है। बाकी उसके बाद एक कलकतिया है, चाइना है, बेदाना है, ये सब वैरायटी भी है, लेकिन रोज सेंटेड जो वैरायटी है सबसे पहले पक्के तैयार होती है और लगभग ये 10 जून के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक चीज और रखें, और कैसे जानेंगे कि भाई इसमें मिठास बढ़िया आ गई, वो देखते हैं आप, कलर के हिसाब से भी आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ जाए। इसमें एक टीएसएस कहते हैं, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, लगभग वो 18 से 20% के करीब हो जाता है, तब उस समय लीची की तुड़ाई करनी चाहिए। तो ये किसान भाई जरूर ध्यान दें कि इस समय लीची को फटने से बचाएं, जिसके लिए पानी का स्प्रे करें जो मैंने बात बताई, सिंचाई करें, हफ्ते में कम से कम दो सिंचाई करें जब तक तुड़ाई ना शुरू हो जाए, और उसके बाद फिर आप जो है 10 जून 15 जून के बाद जैसी जहां पर स्थिति है उसके हिसाब से लीची में कलर को देखते हुए फिर आप उसकी तुड़ाई कर सकते हैं। तो एक चीज और ध्यान देना है कि जब यहां मैं बताना चाहूंगा कि किसान भाई तुड़ाई करते समय लीची का एक विशेष बात पर ध्यान देना है, वो है कि लीची में प्रूनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो छटाई की बात करते हैं तो छटाई स्वतः हार्वेस्टिंग के टाइम ही हो जाता है, जब आप फल की तुड़ाई करते हैं तभी छटाई हो जाएगी, अगर आप ध्यान दें थोड़ा तो, और करते भी हैं। जब हमारे किसान भाई लीची तोड़ते हैं या जो भी मजदूर लगाए जाते हैं तो वो पूरा लीची का गुच्छा तोड़ते हैं, और लीची का गुच्छा तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रूनिंग हो जाती है। लेकिन यहां मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जब आप लीची का गुच्छा तोड़ते हैं तो गुच्छा तो तोड़े ही, लेकिन पीछे से लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर पीछे से शाखाओं को लेते हुए, मतलब उसको 40 से 50 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा शाखा उस गुच्छा के पीछे भी आप लकड़ी को काट के निकाल दें, इससे स्वतः प्रूनिंग हो जाएगी, आपका गुच्छा भी कट के आ गया लकड़ी के साथ, बाद में आप उस लकड़ी को काट के निकाल दें, गुच्छा आप लेकर के उसमें बांध दें। गुच्छा बांधते टाइम ये ध्यान दें जो भी उसमें लीची फटा है उसको निकाल दें, जो छोटे साइज का है उसको निकाल दें, वहां भी थोड़ी सी ग्रेडिंग पर ध्यान दें, और उसमें से जो खराब दाने निकालते हुए फिर उसका एक गुच्छा बनाएं, और इस तरह से गुच्छा बनाते हुए उसको बॉक्स में पैक करें और फिर बाजार तक ले जाएं, तो इस तरह से आपको आपके लीची का भी दाम बहुत अच्छा मिलेगा।
1: जी, तो जैसे किसान भाइयों, अभी आपने सुना डॉक्टर एके सिंह सर को, जिन्होंने अभी आपको बताया कि आम और लीची में अभी हमें कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं ताकि हमको आने वाले समय में अपने बगीचों से जो आम और लीची के पेड़ हैं उनसे अधिक अधिक जो उत्पादन है कैसे मिल सके। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी जो हमारे किसान साथी भेंट वार्ता सुन रहे हैं, बाको विषय हो आम व लीची की तुड़ाई में सावधानियां, जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे थे। आप थे डॉक्टर एके सिंह, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे थे हमारे भैया राजेंद्र भट्ट जी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान साथी ने ये जानकारी बहुत अच्छी तरीका से और बहुत ध्यान से सुनी होगी, और जो जानकारी को हमारे सभी किसान साथी पूरा लाभ उठाएंगे। और भैया, जानकारी तो हमने अपने किसान साथियों को कराई दी, और आप देख रहे हो शाम को समय है,
1: बिल्कुल,
2: तो शाम के समय सभी लोग चाहते हैं कि थोड़ा गानों बजानों यानी कि मनोरंजन है जाए, तो अच्छी बात होगी।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो, कौन सो लोकगीत हमारे किसान भाई के लिए सुनवा रहे हैं?
2: भैया लोकगीत सुनवा रहे हैं बाको, बाके बोल हैं कौन देश का गजरा, और आवाज है प्रतिभा दवे की।

0: अखिलेश भैया देखो, अभी हमारे सभी किसान भैया और बहनों ने सुनो लोकगीत कौन देश का गजरा, प्रतिभा पी दुबे जी की आवाज़ में। हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान भैया के लिए जरूर अच्छा लगो होगा।
1: हाँ भैया।
0: और भैया देखो, आज हम पहुँचे गांव बड़गोती, ब्लॉक बिलारी, जनपद मुरादाबाद। वहाँ पर एक प्रगतिशील किसान भैया श्री आरेंद्र जी से हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने हमें जैविक खेती आज की आवश्यकता विषय पर विस्तार से जानकारी दी, तो वह हम अपने सभी किसान भैया तक पहुँचा रहे हैं।
2: आपका क्या नाम है?
3: मेरा नाम आरेंद्र बड़गोती है, लारी जनपद मुरादाबाद।
2: जी, तो आप एक किसान हैं और प्रगतिशील किसान होने के नाते हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से खेती करते हैं।
3: हम
2: जी
3: प्राकृतिक खेती करते हैं, गो आधारित
2: अच्छा
3: खेती,
2: अच्छा
3: जो इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी
2: जी जी
3: नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है, तो उसमें मैं फार्मर मास्टर ट्रेनर भी हूँ
2: अच्छा,
3: और LNFI भी है, जो जितने भी क्लस्टर हमारे इसमें काम कर रहे हैं मुरादाबाद जनपद में,
2: जी जी
3: तो उनको सबको ट्रेनिंग देने का काम हमारे यहाँ होता है
2: अच्छा,
3: और
2: अच्छा।
3: उनको बताया जाता है कि किस तरह से आपको नेचुरल फार्मिंग करनी है। दूसरी
2: अच्छा।
3: बात यह है कि नेचुरल फार्मिंग क्यों करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए हमने एक पद्धति
2: जी
3: बना रखी है अपनी, कि हम सभी लोगों को खुद भी करते हैं। 80-20 के रेशो से हमने शुरुआत की। जब कोई भी किसान किसी तरह की खेती में होता है, जैसे रासायनिक परंपरागत खेती है, उस रासायनिक खेती में वो अभ्यस्त हो चुका है, उसको अगर परिवर्तन करना है तो बड़े पैमाने पर नहीं कर सकता, उसके लिए उसको 80-20 का रेशो फॉलो करना पड़ेगा, 20% में परिवर्तन शुरू करना पड़ेगा, तो 80% उसी तरीके से करेगा। और इसको हमने एक नया आयाम दिया है कि हमने इसको 3PM मॉडल से जोड़ा है
2: अच्छा
3: प्राकृतिक खेती को।
2: जी
3: तो 3PM मॉडल में पहला पी होता है प्रोडक्शन, दूसरा पी प्रोसेसिंग, तीसरा पी पैकेजिंग और फिर मार्केटिंग। किसान अपना जो भी प्राकृतिक तरीके से उगाएगा, क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा लगती है और लागत भी ज्यादा बैठती है, प्रोडक्शन भी रासायनिक के मुकाबले थोड़ा कम आता है शुरुआत में, बाद में कवर कर जाता है, तो उसके लिए सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने की एक चेन बनाई है हमने 3PM मॉडल के अंतर्गत। तो हम एज ए फार्मर उसको उगाएंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और सीधा उपभोक्ता को देंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा। उपभोक्ता को अन्य जो श्रृंखला चल रही, चेन चल रही है, उसके मुकाबले उत्पादन प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। और किसान को आड़त में जिस मंडी करती है, मंडी के अंदर खेती करती है किसान के अनाज की या किसी भी तरह की, तो वो उसको उससे भी बच जाएगा, क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र है, तो हमने मूल फसल अपने क्षेत्र में होने वाली मूल फसल को ही चुना है,
2: इसके
3: अभ्यस्त है किसान यहाँ के, उसको प्राकृतिक खेती में करना शुरू किया
2: जी।
3: और उसके जनरल प्रोडक्ट बनाकर हमने उपभोक्ताओं तक पहुंचाए हैं। इसी वक्त कृषि विपणन विभाग की तरफ से
2: हमको
3: स्टॉल लगाने का मौका मिला था, इंडस्ट्रीपुर में पिछले 2 साल से लगा रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा।
3: कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में स्टॉल लगा चुके हैं अपने प्रोडक्ट के, गोल शक्कर खांड सिरका सिरके से बने हुए अचार और भी बहुत सारे मिलेट्स के लड्डू हैं, जिसमें मिठास देने का काम हम करने के रस्ते करते हैं। तो वो इस बार हमको ऑस्ट्रेलिया के लिए एक फ्लेवर्ड गुड़ का ऑर्डर मिला था, एक्सपोर्ट करने का मौका मिला थ्रू मर्चेंट एक्सपोर्टर, तो हमने 1.65 टन का ऑर्डर भी किया।
2: बहुत ही अच्छी बात है, देखिए आप इतनी लगन और मेहनत के साथ आप जैविक खेती कर रहे हैं और गौ आधारित खेती कर रहे हैं, आज इसकी आवश्यकता भी है, और हम समझते हैं कि आप के द्वारा और भी किसान जुड़े और बहुत सारे किसान भाई इस तरह से जब खेती करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आय भी बढ़ेगी। तो इस बात को सोचकर हमारे किसान भाई आपकी जो बात है आपकी बात से सीख लेंगे, और हमारे किसान भाई गौ आधारित खेती है, प्राकृतिक खेती है, इस तरह की खेती से भी जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई आपको सुन रहे हैं और उन किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे।
3: उनसे यही कहेंगे, परिवर्तन का दौर चल रहा है, इस समय जो रसायन हमारे खेतों में पहुंच रहे हैं, खेत की मिट्टी को खराब कर रहे हैं, और आदमी जो उत्पादन उससे निकल कर आ रहा है वो जनमानस में जा रहा है, वो बहुत खा रहे हैं, उससे उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है वो। तो अगर इस चीज पर अभी हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत ही भयंकर तरीके से इसकी चपेट में आएगी, उसका अभी भी हमको सोचना पड़ेगा। सारा दारोमदार किसान के ऊपर है, किसान अगर अच्छा उगाएंगे तभी भारत का स्वास्थ्य सही रहेगा, हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सही रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार इस चीज को कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो हमको इस चीज को अपनाना चाहिए। और जितने भी किसान सुन रहे हैं, तो यही कहूंगा कि हल्के हल्के थोड़े थोड़े जमीनों पहले अपने परिवार के लिए उगाए, जब दो तीन सीजन में इसको करना सीख जाएंगे फिर उसके बाद एरिया बढ़ाए, एकदम से बड़ा एरिया ना करें।
2: जी बिल्कुल सही बात है, पहले अनुभव करें उसके बाद उसको काम को करें आगे बढ़े, क्योंकि अनुभव बहुत जरूरी है, और अनुभव नहीं होगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, इसलिए जानकारी बहुत होना जरूरी है और जुड़ना बहुत जरूरी है। जो अनुभवी कृषक हैं जैसे आप हैं, बहुत सारे किसान भाई आपकी तरह होंगे और बहुत सारे किसान भाइयों ने जैविक खेती करी भी होगी, तो हम उम्मीद करते हैं इस तरह से हमारे किसान भाई जुड़ भी सकते हैं। तो आरेंद्र जी आपने बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए, हम उम्मीद करते हैं इसी तरह से हमारे किसान भाई भी आगे बढ़ेंगे और उनको भी मौका मिलेगा नेचुरल फार्मिंग का और अपनी खेती को बढ़ावा देने का, उनको यह आय भी बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद
1: अनिल भैया, अभी आपने जो हमारे किसान साथियों को जैविक खेती आज की आवश्यकता संबंध में जो जानकारी श्री अरन सिंह द्वारा सुनवाई, आज के समय को देखते हुए जानकारी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही जरूरी है और

0: निश्चित ही हमारे किसान साथी इस जानकारी से लाभान्वित होंगे और पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। और भैया बता दें, हम ये गांव बटगोली बिलाग बिलारी जिला मुरादाबाद से थे।
1: तो भैया देखो, हमारे जो किसान भैया हैं उन्होंने इस बात को ध्यान से सुन लोगों, लेकिन अब हम अपने सभी किसान भैया के लिए एक और जानकारी लेकर आए हैं कृषि संकेत कार्यक्रम में, शिमला मिर्च की खेती विषय पर। शिमला मिर्च की खेती किस तरह से हमारे किसान भैया कर सकता है? शिमला मिर्च जो होती है ना भैया, उसकी खेती करके किसान कम समय में और लागत में बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी उन्नत खेती के लिए देखो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना होना चाहिए। जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, बुलई दोमट मिट्टी होनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से उन्नत बीजों की बुवाई और ड्रिप सिंचाई को भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ भैया, साथ ही बुवाई का सही समय की अगर हम बात करें तो भारत में मौसम के आधार पर शिमला मिर्च की साल में 2 से 3 बार खेती की जा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें हम तो मार्च अप्रैल, मैदानी क्षेत्रों में जून जुलाई और अगस्त सितंबर में हम इसकी खेती कर सकते हैं। साथ ही अगर हम पाली हाउस और या ग्रीन हाउस में इसकी खेती करें तो किसी भी मौसम में किसी समय हम इसकी खेती कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो रेतीली और चिकनी दोमट मिट्टी जिसमें पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था हो सबसे उपयुक्त होती है। और जुताई जो है खेत की 3-4 बार गहरी जुताई करके और उसमें पाटा लगा लें, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और समतल हो जाए।
0: और भैया अगर हम खाद की बात करें तो खेत की तैयारी के समय 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरीके से मिलाएं।
1: बिल्कुल।
0: ताकि भैया हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ी रहे और हमें अपनी शिमला मिर्च से अच्छी पैदावार मिले।
1: बिल्कुल भैया। और अगर किस्मों की बात करें, उन्नत किस्में हमारे किसान भैया के लिए बहुत ही जरूरी है। अधिक पैदावार के लिए अच्छी और संकर किस्मों को चुनाव बहुत जरूरी है। हरी शिमला मिर्च, अर्का मोहिनी, कैलिफोर्निया वंडर, इलोरा।
0: और इसी तरह अगर हम रंगीन शिमला मिर्च की बात करें, लाल यानी पीली, तो बॉम्बे लाल, ऑरेंज ग्लोरी पीली, इन किस्मों का इस्तेमाल हमारे किसान साथी करें।
1: बिल्कुल। लेकिन एक बात को और विशेष ध्यान रखने है हमारे किसान भैया के लिए, सिंचाई को। नर्सरी तैयार जब कर रहे हैं तो हमारे किसान भैया बीजों को पहले नर्सरी ट्रो में बो लें और 30 से 35 दिन के पौधे जब हो जाए उनके नर्सरी में तो उनको फिर रोपाई के लिए तैयार कर लें।
0: और साथ ही भैया मल्चिंग और ड्रिप खेत में क्यारियाँ या मेड़ बनाकर बेड़ बनाकर मल्चिंग पेपर बिछाएं और ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा जो है सिंचाई करें, जिससे पानी और खाद दोनों की बचत होती है।
1: बिल्कुल भैया। और उर्वरक की अगर हम बात करें कि उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भैया के लिए कैसे करने हैं, तो रोपाई के समय प्रति एकड़ लगभग 50 किलो DAP और 25 किलोग्राम पोटास बेसल डोज के रूप में उन्हें देने हैं। फूल आने और फल बनने की अवस्था में ड्रिप के माध्यम से पानी में घुलनशील खाद जैसे NPK 1919 कैल्शियम नाइट्रेट को भी प्रयोग करने हैं।
0: और साथ ही भैया कीट और रोग नियंत्रण की अगर बात करें हैं तो शिमला मिर्च में पत्ता मरोड़, माता चौक और सफ़ेद मक्खी का प्रकोप होता है।
1: बिल्कुल।
0: इनसे बचाव के लिए समय समय पर जैविक नीम का तेल या अनुशासित कोई रासायनिक दवाओं का छिड़काव हमारे किसान साथी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस तरह से हमारे किसान भैया कीट और रोग से भी बचा सकते हैं हमारी जो किसान भैया की शिमला मिर्च की फसल है। और उपज की अगर हम बात करें तो उत्पादन आपको किस तरह से मिलता है हम बता दें कि खुले खेतों में 80 से 150 कुंटल और पावली हाउस में की अगर बात करें तो 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक मिल सकती है भैया। तो इस तरह से हमारे जो किसान भैया हैं शिमला मिर्च की खेती करके लाभ कमा सकते हैं। और भैया देखो, हमारे जो किसान भैया है ना, कृषि संकेत में जा विषय की विस्तार से जानकारी उन्हें सुन ली और अब हम देख रहे हैं कि रोजाना मौसम बदल लो, आज मौसम जब हम आए तो कुछ और हो और अब मौसम कुछ और है।
0: अरे भैया, हम अभी थोड़ी देर पहले जब बाहर से आए ना तो भैया सड़क पे जे हाले कहूँ तो भैया कुर्सी पर ये उड़ी हुई कहूगी।
1: अच्छा।
0: अरे भैया, चारपाई तक जो छत पर पड़ी है बेऊ जो है आंधी तूफान में नीचे और 3 टप्पड़ को तो कुछ क्यों कहाँ है।
1: और इसके बाद बारिश होने लगी।
0: हाँ।
1: तो इस तरह से मौसम बहुत तेजी से कभी बदल लो, कभी तेज धूप है, कभी बारिश है, कभी आंधी है, तूफान है, तो ये बहुत सारे। अब तो हम अपने किसान भैया के लिए कल को मौसम किस तरह से रहने की संभावना है जब बारे में अपने किसान भैया के लिए और बता दें। अधिकतम तापमान 34 डिग्री।
0: हाँ, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड व आर्द्रता की अगर हम बात करें तो 66% नमी रहने की संभावना है और बारिश 41% होने की संभावना है। हवा की दिशा और वह गति की बात करें तो पूरब दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा बहने की संभावना है।
1: इस तरह से तो कल के मौसम रहन को अनुमान है। और भैया देखो, कल के कृषि जगत कार्यक्रम में हम अपने किसान भैया के लिए कौन कौन सी जानकारी कराएंगे, जब बारे में हम अपने किसान भैया के लिए और बता दें। चर्चा को विषय होगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस,
0: और साथ ही सुनवाई जाएगी किसान साथियों के लिए भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा पशुओं में बांझपन समस्या कारण व उनका निवारण। जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी कराएंगे डॉक्टर मनोज कुमार, आपसे बातचीत कर जानकारी कराएंगे हमारे भैया जसविंदर।
1: और भैया एक प्यारे से लोकगीत से कराओ जाएगो मनोरंजन, पुदीना हरा दिए जा सोनका और अमित जी की आवाज में।
0: और साथ ही कृषि संकेत कार्यक्रम में जानकारी दिलवाई जाएगी
1: बैगन से में सावधानियां, तो इस तरह से हमारी जो बैगन की फसल है उसके कौन कौन सी सावधानियां हमारे किसान भाइयों के लिए बरतने हैं, जब विषय में विस्तार से जानकारी कराई जाएगी। और फिर भैया देखो मौसम को अनुमान भी बताओ जाएगा।
0: और भैया समय अब कतई जाएगा, इतना देर हो है कि अपने किसान साथी इनसे आगे और ज़्यादा बातचीत कर सकें, तो क्यों ना कार्यक्रम समाप्त करने से पहले किसान साथी इनको बता दो जाए अपने कार्यक्रम को पतो।
1: हमारे कार्यक्रम को पतो है कार्यक्रम कृषि जगत
0: द्वारा केंद्र निदेशक
1: आकाशवाणी रामपुर
0: पिन 244901। और अब अगले कार्यक्रम तक अपने भैया अखिलेश
1: और अनिल को दें अनुमति।
0: राम राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रोता मंच।

आज श्रोता मंच कार्यक्रम में सुनिए, बहुत पुराने श्रोता श्री राजवीर सिंह से की गई भेंट वार्ता। आपसे बात कर रहे हैं असीम सक्सेना।

0: श्रोता मंच हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम, जिसमें श्रोता आकाशवाणी रामपुर आते हैं, अपने मन की बात साझा करते हैं, जो कुछ अच्छा लगता है वो बताते हैं और जो कुछ वो चाहते हैं परिवर्तन उसके बारे में सुझाव भी देते हैं। एक सिलसिला श्रोताओं के साथ संवाद का स्थापित करता है श्रोता मंच। और आज श्रोता मंच में हमारे साथ हैं आकाशवाणी रामपुर के जाने पहचाने श्रोता। मैं उनके गांव का नाम लूंगा और उसके बाद नाम आपके सहन में खुद ब खुद आ जाएगा। खावरी अव्वल बिलारी से चौधरी राजवीर सिंह। बहुत सारे श्रोता पहचान गए होंगे कि ये हमारे कौन से श्रोता हैं। राजवीर जी, बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रामपुर में, और ख़ास तौर पर स्वागत इसलिए क्योंकि ये संस्थान आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष पूरे कर रहा है। एक लंबा गौरवशाली इतिहास रहा है और इस सिलसिले में आपका आकाशवाणी रामपुर आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका हम करते हैं। आपका कितने सालों का जुड़ाव रहा है आकाशवाणी से?
1: सर, सबसे पहले तो मैं अपने श्रोता मंच के सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। असीम सर जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: और आकाशवाणी रामपुर से मेरा जुड़ाव सन 1980 से है, जब से मुझे रेडियो सुनने की तमीज हुई है।
0: यानी कि कितने साल? लगभग
1: 47 साल से मैं आकाशवाणी रामपुर का निरंतर श्रोता हूँ।
0: एक

0: लंबा सफर आपने आकाशवाणी के साथ तय किया है,
1: जी सर।
0: पहले जुड़ाव की कुछ यादें ताजा हैं?
1: हाँ, पहले जुड़ाव की मेरी बहुत याद ताजा है। मैं आकाशवाणी देखने की इच्छा मेरे दिल में उज्जित हुई, तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा पुलिस में भर्ती निकली है और मैं रामपुर जाना चाहता हूँ। मैंने वो पिताजी से बहाना लिया, हालांकि मैं पुलिस स्टेशन भी वहाँ पहुँचा सिविल लाइन, लेकिन मैंने अपनी नापतोल वहाँ पर नहीं कराई और तुरंत मैं वापस आ गया और मैं आकाशवाणी की बिल्डिंग के आगे से निकल गया। लेकिन मुझे कोई पहचान नहीं थी आकाशवाणी का स्टूडियो ये है। जब गांधी समाधि से आगे निकल गया तो एक सज्जन बेचारे जा रहे थे साइकिल से, मैंने उनको रोका, भैया मुझे ये बता दो आकाशवाणी स्टूडियो कहाँ पर है। अरे भैया वो तो पीछे रह गया, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं भी आपके साथ ही देख लूंगा। तो वो सज्जन मुझे आकाशवाणी लेकर के आए और मेरी सबसे पहली मुलाकात यहाँ पर ज्वाला प्रसाद जी थे के निर्देशक। मैंने उनका अपनी इच्छा उनको जाहिर की, उन्होंने ड्रॉल से एक फॉर्म निकाला, मेरे साइन लिए और 8 दिन बाद मेरे पास कॉन्टेक्ट पहुंच गया रिकॉर्डिंग के लिए।
0: अच्छा, आप वार्ताकार के रूप में पहले जुड़े
1: हाँ,
0: हुए थे।
1: मेरी वार्ताकार पहली मेरी 1983 में आई फिल्म पत्रिका छायालोक, ये
0: अच्छा,
1: मेरा पहला प्रसारण था आकाशवाणी रामपुर से।
0: इसमें आपने कौन-कौन से विषय लिए थे?
1: मैंने इसमें लिए थे फिल्मी समाचार और मेरे साथी जो प्रेजेंटेटर्स थे उनको मैंने माइक पर बुलाने के लिए आमंत्रित
0: कैसा
1: किया।
0: रहा अनुभव आपका?
1: मेरा अनुभव इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं बिल्कुल यहाँ का स्थायी पात्र हो गया हूँ आकाशवाणी रामपुर का।
0: हम किसी केंद्र से जुड़ते हैं
1: जी
0: तो बहुत सारी बातें अपने अंदर समाहित भी करते हैं, सीखते भी हैं, कुछ ग्रहण भी करते हैं।
1: जी
0: तो आकाशवाणी से जुड़ने के बाद राजवीर सिंह जी की पर्सनैलिटी में क्या इजाफा हुआ?
1: आकाशवाणी से जुड़ने के बाद मेरे अंदर बहुत बदलाव आया। पहले मेरे बोलने का ढंग मेरे को ठीक प्रकार से नहीं आता था, मेरा उच्चारण बेहद ही खराब था। मैंने यहाँ पर ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैंने 4 बार फेल हुआ और 5वीं बार मैं ऑडिशन में क्वालिफाइड किया। उसके बाद मुझे युवाणी में एज ए प्रेजेंटर्स प्रोग्राम प्रस्तुत करने का मौका मिला।
0: कौन सा कार्यक्रम आपने प्रेजेंट किया
1: सबसे पहले प्रोग्राम मैंने प्रेजेंट किया था युवा पसंद। युवा पसंद कार्यक्रम में नगमे पेश किए थे अपने श्रोताओं की पसंद पर आधारित।
0: था? कौन
1: हाँ,
0: सा गीत आपका पसंदीदा था उस दौर में?
1: मैंने उस वक्त दौरे मैंने जब भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हुआ करती थी तो मैं एक गाना जरूर बजाता था, फिल्म इंतकाम का, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे
0: क्या
1: लिए।
0: बात है! अब रेडियो कितना है आपके लिए?
1: सर ये समझिए, रेडियो तो मेरी जिंदगी है। मुझे एक बार खाना मिले या ना मिले, लेकिन मेरा प्रोग्राम मैं कोई मिस नहीं करता रेडियो
0: किस
1: से।
0: तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और आपकी और भी जिम्मेदारियां हैं, घर परिवार भी है, तो इन सब के बीच तालमेल बैठाना खासा मुश्किल नहीं हो जाता?
1: मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन मैं जो है अपनी घर की व्यवस्था पहले ही लेकर के चलता हूँ।
0: कैसे किया है आपने मैनेज?
1: सर मैं 2 बजे तो अपने स्कूल से आता हूँ और 2 बजे के बाद मैं अपने घर की जो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनको पूरी करता हूँ मिसिस से पूछ करके, और 5 बजे से और रात के 10 बजे तक या 11 बजे तक जो आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होता है मैं प्रत्येक प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: आप आकाशवाणी रामपुर से जुड़े एक वार्ताकार के रूप में और आज भी जुड़े हैं, एक वार्ताकार के रूप में तो हैं ही, श्रोता के रूप में ज्यादा हैं।
1: जी
0: तो आपने उस सफर के बारे में बताइए कि कैसे वार्ताकार से आप श्रोताओं की तरफ आए?
1: वार्ताकार से मेरी दिली इच्छा थी कि जब मैं प्रोग्राम सुनता था युववाणी तो उसमें जो प्रेजेंटर्स प्रोग्राम पेश करने आया करते थे तो मेरी भी दिली तमन्ना हुआ करती थी कि जिस तरह से ये मेरे भाई बोल रहे हैं वैसे मैं अपनी आवाज़ आकाशवाणी के जरिए अपने श्रोता भाइयों तक पहुँचाऊँ। और मैंने यहाँ पर मोहम्मद अली जो मौसा हमारे थे मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत ही साथ दिया सर, एज ए भाई मेरे को ट्रीटमेंट दिया उन्होंने।
0: जी,
1: और 4 बार फेल होने के बाद ऑडिशन में मेरा हौसला खराब ना हो, टूटे नहीं, मुझे लगातार एज ए टॉक मिलती रही। जब 5वीं बार मैंने ऑडिशन पास किया तब मुझे फिर प्रेजेंट प्रोग्राम जो होते हैं वो मुझे दिए।
0: कितने साल आप प्रेजेंट करते रहे आकाशवाणी रामपुर से कार्यक्रम?
1: युवाणी में मेरी जो एज ए प्रेजेंटर भूमिका रही है वो 1985 से 1995 तक 10 साल मैंने लगातार दिए हैं।
0: अब आप प्रेजेंटर भी रहे हैं,
1: जी सर,
0: अब आप श्रोता भी हैं,
1: जी सर।
0: तो एक प्रेजेंटर अपने श्रोताओं से क्या-क्या अपेक्षा करता है?
1: हमारे जो श्रोता भाई हैं वो हमारे प्रोग्राम को मन लगा करके सुने और प्रोग्राम के अंतर्गत अगर उन्हें कोई कमी नजर आती है तो हम उनसे कहते हैं कि आपकी शिकायत हमारे सर माथे पर है, आपकी शिकायत हमारा एक आईना है जिससे हम अपने प्रोग्राम में अच्छी से अच्छी प्रस्तुति देने की कोशिश करें।
0: राजबली जी, श्रोता और प्रेजेंटर का रिश्ता अटूट है और आपने दोनों अनुभव किए हैं।

0: जी सर,
1: कुछ अपेक्षा प्रेजेंटर की भी होती है अपने श्रोताओं से,
0: जी
1: किस तरह से श्रोता जुड़े हमारे कार्यक्रमों से। और
0: जी
1: आजकल के दौर में आपने अभी पत्र मिला कार्यक्रम में शिकायतें भी सुनी होंगी कि श्रोता
0: जी
1: नाम बदल कर
0: जी जी
1: फोन
0: सर
1: करते हैं,
0: जी जी
1: इससे
0: जी
1: और जो श्रोता हैं वो प्रभावित होते हैं,
0: जी
1: प्रेजेंटर पर भी एक दाग लगता है,
0: बिल्कुल,
1: तो उस बारे में क्या कहेंगे आप?
0: हमारे प्रेजेंटर पर किसी प्रकार का दाग न लगे, उसकी प्रस्तुति में किसी प्रकार की कोई रुकावट पैदा ना हो, मैं अपने श्रोता भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप कॉल अपने ही नाम से करें, 2 महीने के बाद अपनी कॉल को दोबारा करें, जिससे हमारे दूसरे श्रोता भाई हैं जो बेचारे ट्राईफुल रहते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं लग पाती है, उनको भी मौका मिलना चाहिए।
1: राजवीर जी, 47 साल का साथ रहा है आपका आकाशवाणी से और ये साथ अभी भी जारी है,
0: जी
1: तो
0: सर,
1: इन 47 सालों में कौन कौन से प्रोग्रामों की यादें आपके जहन पर नक्श हैं?
0: जब मैं वाणी में तो प्रोग्राम आया करते थे तो पहले एक प्रोग्राम आया करता सर मेरी पसंद, जिसमें अनाउंसर या एज ए प्रेजेंटर जो हमारे युवा भाई आता था वो अपनी पसंदीदा नगमे सुनाता था, वह प्रोग्राम मुझे बेहद पसंद था क्योंकि उसमें हम अपने दिल की ख्वाहिश बजाते थे उसमें
1: और किन किन को सुनना आपको पसंद था जो प्रेजेंटर थे उस दौर में,
0: उस
1: प्रोग्राम
0: दौरान
1: प्रेजेंट
0: में।
1: करते थे या फिर बाद में भी, क्योंकि एक लंबा सफर तय किया है आपने, आज
0: जी
1: भी आप सुनते हैं रेडियो, तो कौन कौन सी ऐसी आवाज़ें रहीं जो आकाशवाणी रामपुर से आपको अच्छी लगी और उनके कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण का तरीका आपको पसंद आया?
0: देखिए, सबसे हमेशा मेरे दिल में रहती थी जिनकी आवाज का मैं दीवाना था, जिनसे कि उनकी आवाज को सुन सुन करके मैंने अपने अंदर इच्छा जागृत की कि मैं भी इनकी तरह एक आंसर बनूं, वो थे जनाब मोहम्मद अली मौस साहब। मैं उनसे बेहद प्रभावित था, उनके बोलने का ढंग बड़ा लाजवाब था, और जब वो अपनी प्रस्तुति देते थे, मान लीजिए पहले प्रोग्राम आया करता था आपकी पसंद 9:45 पर, रात में 9:45 पर, वह कार्यक्रम दो आवाजों में हुआ करता था, एक मोहम्मद अली मौस साहब हुआ करते थे और एक रजनी जी हुआ करती थी जो हमारी अनाउंसर थी, दोनों मिलके इतना बेहतरीन प्रोग्राम देते थे। प्रोग्राम की एक खासियत ये होती थी, अगर रात को प्रोग्राम चल रहा है तो गाने जो बज रहे हैं वो सिर्फ रात के टाइम के ही बजते थे।
1: और अब किस तरह से परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, क्योंकि गानों को लेकर आपकी शिकायत लगातार बनी रहती है, आप इशारा भी करते हैं और हम सुधार करने की कोशिश भी करते हैं,
0: जी सर,
1: तो ये बदलाव अब आपको कैसा महसूस हो रहा है?
0: फिलहाल जो हमारे आकाशवाणी कार्यक्रम में तब्दीली हुई है, बदलाव जो हुआ है, ये काबिले तारीफ है। इसमें अब हमारे, आपने जो गीत मेरे नाम प्रोग्राम आया है वो सिर्फ मेल पर आधारित कर दिया है, जिससे अब हम श्रोताओं के मेल आसानी से प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, और गीत गाथा चल प्रोग्राम आपने व्हाट्सएप पर दिया है उसमें भी हमारे मैसेज शामिल होते हैं और हम अपनी पसंद के गाने सुनने को हमें मिल जाते हैं।
1: आकाशवाणी से जुड़ा कोई यादगार अनुभव जो आप साझा करना चाहें?
0: आकाशवाणी से जुड़ा हुआ अनुभव ये है सर, मेरे को बोलने का तरीका मुझसे आ गया आकाशवाणी से, यानी मेरे अंदर सब कुछ मौजूद है वो तकनीक।
1: तो इस तकनीक का आपने आकाशवाणी से बाहर कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय कभी प्रदर्शन किया हो और लोगों की रिएक्शन आपको मिली हो, उस अनुभव के बारे में
0: जी
1: बताएं।
0: हाँ, एक बार मेरे मित्र राकेश रफी जो डॉक्टर हैं, फिलॉसफी से वो हैं, PhD किए हुए हैं, उनकी शादी में मेरे को मौका मिला था, वहाँ मैंने अनाउंसिंग की थी, और मैंने अनाउंसिंग जो की थी वो एज ए आकाशवाणी के अनाउंसर की तरह की थी, और मेरे अनाउंसिंग को सुनकर के पब्लिक बड़ी खामोश थी, और बाबा कहते थे बंस मोर दिस अनाउंसमेंट प्लीज बंस मोर।
1: अगर राजवीर जी इस समय आपको कोई प्रोग्राम प्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आपकी दिली इच्छा किस प्रोग्राम को
0: अरे
1: प्रेजेंट
0: साहब,
1: करने की
0: मेरा
1: है?
0: जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा, मेरी तो दिली इच्छा है कि एक बार मुझे आप माइक पर भेज दीजिए 12:30 बजे वाली पे,
1: 12:30 बजे
0: गीत मेरे नाम प्रोग्राम जो है आपका, समझ लो मैं सफल हो जाऊंगा भाई साहब।
1: आपकी बात जरूर हम अपने अधिकारियों तक पहुंचाएंगे
0: हाँ,
1: और आपकी इच्छा का सम्मान भी किया जाएगा, आपको जरूर इस कार्यक्रम के लिए देखते हैं कि किस तरह से क्या कुछ संभव है, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं,
0: जी सर,
1: आपको अनुभव है, रेडियो से आप जुड़े भी हैं, कि
0: जी
1: बिना स्वर परीक्षा के आकाशवाणी पर कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम प्रेजेंट करना संभव नहीं होता है, लेकिन किस तरह से आपको जोड़ा जा सकता है इस बारे में जरूर बात करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। आप आज अगर अपने श्रोताओं को कोई फरमाइशी फिल्मी गीत अपनी पसंद का सुनवाना चाहें तो किस तरह से सुनवाएंगे? चलिए आपकी इच्छा अभी पूरी कर देते हैं।
0: कार्यक्रम का अगला गीत मैंने फिल्म गहरा दाग से लिया है, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, गीतकार हैं हसन जयपुरी और संगीत से नवाजा है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। कुंदर की से मोहम्मद अली मोहम्मद हुसैन प्रेमी और बिलारी से अरविंद चौधरी।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राजवीर जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप लगातार आते रहे हैं और एक अनुभव हो जाता है, एक ऐसी याद बन जाती है जो जहन में नक्श हो जाती है।
0: जी सर,
1: अपनी उन यादों के बारे में कुछ साझा कीजिए।
0: यादें तो मेरे दिल में सर ये आकाशवाणी हमेशा रहेंगी, क्योंकि मुझे जो कुछ सीखा है मैंने आकाशवाणी के माध्यम से ही सीखा है। समाज में कैसे अपना स्टेटस तैयार किया जाए, कैसे सामने वाले व्यक्ति से बातचीत की जाए, वो सब मैंने आकाशवाणी से सीखा है।
1: जिंदगी के मुश्किल पलों में कभी रेडियो ने साथ दिया है आपका?
0: रेडियो मेरा ऐसा साथी है जिसने मुझे कभी अकेलेपन का महसूस ही नहीं होने दिया। हर वक्त मुझे लगता कि मेरे साथ कोई मेरा प्यारा दोस्त मुझसे बातचीत कर रहा है।
1: 90 साल का सफर आकाशवाणी पूरे कर रहा है
0: जी सर,
1: आपके क्या विचार हैं, आपका क्या संदेश है?
0: हमारा आकाशवाणी 90 वर्ष पूरा कर रहा है। मेरी आकाशवाणी परिवार को दिल से बधाई देता हूँ मैं। जिस तरह से हमारे आकाशवाणी चल रहा है, भगवान करे आगे भी हमारा सफर आकाशवाणी का यूं ही निरंतर चलता रहे।
1: हम भी ये दुआ करेंगे कि आप जैसे श्रोता हमसे जुड़े रहें, अपनी नाराजगी को आप ज़रूर बताते रहें, क्योंकि अपने दिल में ये कभी मत रखिएगा कि आपकी शिकायतों का सम्मान नहीं है। आपकी शिकायतें पहले हैं, आपके सुझाव पहले हैं, और हमेशा आपकी आमद का स्वागत रहेगा। राजवीर जी, आज आप कार्यक्रम में आए, वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

अभी आप आकाशवाणी रामपुर के स्टूडियो में आमंत्रित श्रोता चौधरी राजवीर सिंह से की गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। आपसे बात कर रहे थे असीम सक्सेना। श्रोता मंच कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप इस समय सुन रहे हैं हमारी आज की दूसरी सभा के प्रसारण। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित कर रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार शौर्य, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। ध्यान रहे, आयु की गणना 31 जुलाई 2026 को की जाएगी। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। सूचना समाप्त हुई।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों की निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इसको हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती। इसको भी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा, समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितेन्द्र प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्पित हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonairlaw.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर अधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
4: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया।

0: 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा की गाई कुछ गजलें।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, आज सुगम संगीत में कलाकार थे पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाथा चल।

गीत गाथाचल कार्यक्रम में आप सभी को अखिलेश सक्सेना का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज़ में, गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत दिया है खयाम ने और फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। गांव चौहंदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया, अतुल गौतमी, तर धमेंद्रना, अरुण काले और इनके सभी साथी ने हमें मैसेज भेजा है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। अगला मैसेज है बेरड़ी से, राजेश सोनी, कंजन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे का। नई बस्ती अमरोहा पतई खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी और बेटिया अलीशा सिद्दीकी। अगला मैसेज हमारे पास आया है जतुका किशनपुर से, आलम दिलकश, सवार नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम और चांदनी नाज का। मौला हलवाइयां शिरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, साथ में हैं नोखेलाल वर्मा। ये पत्र हमारे पास आया है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अदरीसी और इरफान खान का। राजवरा कोठी अफसराला रामपुर से रूमा खान, बॉबी खान, मदिया खान, सुहान खान, शबनम अब्बासी, गुलफशाह, जीनत अमान और शमा परवीन। तो लीजिए सुनिए फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत।

कार्यक्रम का अगले ही सुनिए आशा भोंसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सत्ते पे सत्ता। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत दिया है आरडी वर्मन ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख।

और रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान। ये मैसेज हमारे पास आया है मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या का, तलीताल नैनीताल से। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजने वाले हैं नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदी भाई, बागरी, ये सब हमें मैसेज भेजते हैं। साथ में हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी काना, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से इन्होंने ये हमें मैसेज भेजा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, उसे भेजने वाले हैं मेन रोड तलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से ये हमारे पास आया है मैसेज, रेखा रघुवंशी, रघुवती, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, आराध्या खड़से, वैष्णवी खड़से, ललित नारायण खड़से और इनके सभी साथियों का। ये पत्र, ये मैसेज हमारे पास आया मौला बारादरी महमूद खरामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान और अफसर अली का। साथ में हैं नगमा नाज मंसूरी। अगला मैसेज हमारे पास आया है चूड़ी लाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोवर फातिमा का। अगला मैसेज है पुफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता का। ये गीत हमें इन्होंने पसंद किया है और ये मैसेज हमारे पास आया है, भेजने वाले हैं सीतामढ़ी बिहार से नूरमहल महसूल, सीतामढ़ी बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, शाजिया शाहिन नाज और नाजिया नूरी नाज का। अगला मैसेज हमारे पास है करणवीर हाउस भूचों कैंचनिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, तपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजीत का। कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया। अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख का। ये मैसेज हमारे पास आया है मोरीगेट दिल्ली से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्परानी, आकाश कुमार का। तो आइए सुनते हैं आप सभी के पसंद पर फिल्म सत्य पे सत्या का ये गीत।

आप सुन रहे कार्यक्रम गीत गाथा चल रहा आपके अपने साथी अखिलेश सक्सेना के साथ। ओली जी आप सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म आंधी का गीत। इस गीत को पसंद किया है आप सभी साथियों ने। बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, अर्जुन गवाणकर, नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, मेहरनगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर और प्रिंस एकांश गवाणकर, चकला बाजार समाना पंजाब से पप्पू राजा, संगीता रानी, महक, सुनीता रानी, आरजू पप्पू, हसमुख लाल, बुलबुल, शक्ति, संजीव, बंटी और इनके परिवार के लोग। ये अगला मैसेज हमारे पास आया है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओमकार कुमार सुरलकर का। ये मैसेज है हमारे पास कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा, ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अवान अब्बासी। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। फाजिला पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और आरबी खेड़ा। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया। ये मैसेज हमारे पास आया है काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से मास्टर बिट्ठल सुरोश का। मेरठ कैंट से कविता गौड़। अगला मैसेज हमारे पास आया है भेजने वाले हैं सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला, नासिम बेगम, आयशा खान, हदिया खान और पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से शाहिद भाई और आसिफा परवीन का। अगला मैसेज हमारे पास आया है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावाया मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी और जयपाल यादव का। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आंधी का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से, और अब अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। फिल्म है इंतकाम। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर, ये मैसेज हमारे पास आया। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का। बीजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, मनीष यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान और सोफिया खान। गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह। डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया और इनके परिवार के सभी लोग। मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी तहसील स्वार से त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय राठौर, विजय राठौर, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी और प्रियंका राठौर। ग्राम दूलापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। मास्टर राधेश्याम शाके ने हमें मैसेज भेजा है कासगंज से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुराण मेहरा और उनके सभी साथी। ये मैसेज हमारे पास आया है

जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा, ये मैसेज हमारे पास आया है गीत सुनने के लिए। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे और प्रशांत राजे का। अगला मैसेज हमारे पास आया है वाराणा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान, इंदुरकर, तेजस्विनी माई, इंदुरकर, बेबी शौर्या, सुरेश, अंकिता और अनिकेत चौहान का। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े। ये मैसेज हमारे पास आया है गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अवयाना कांचव, मोहल्ला मजार चांशामिया रामपुर से मोहम्मद रमजान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रैना चांदनी, अनंता और आशु। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म इंतकाम का ये गीत।

आप सुन रहे कार्यक्रम गीत गाता चल। अगला गीत सुनवाने से पहले आपको बता दें श्रोताओं, जिनके मैसेजेस शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपना मनपसंद गीत सुन लिया है, वो कृपया दोबारा मैसेज ना करें। अगला गीत सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म बॉबी से, और इस गीत को पसंद किया है आप सभी साथियों ने। ये मैसेज हमें भेजा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेशन चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष ने। अगला मैसेज हमारे पास आया है ये भेजने वाले हैं मोहल्ला बारादरी में अहमद खान रामपुर से, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और इनके सभी साथी। अगला मैसेज हमें भेजा है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दीक्षा और कुश मुड़त ने। बटिंडा रोड मंडी डब्बाली से रविंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। ये मैसेज हमारे पास आया है हितेंद्र दास ने भेजा है हमें ये मैसेज आसाम से। अगला मैसेज हमारे पास आया है बेरड़ी मध्य प्रदेश से हुकुम कर्मकार सुनीता, हार्दिक प्राची और तन्नु कर्मकार का। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के लोग। कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुविया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय। अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, अल्ताफ हुसैन अंसारी, आशिक हुसैन और मुन्ना अंसारी का। अगला मैसेज हमारे पास है रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, दुआ आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी का। ये

भेजने वाले हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। अगला मैसेज हमारे पास आया है, भेजने वाले हैं करणवीर हाउस बुचो कैचनिया बठिंडा से परम सिंह। अगला मैसेज है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन का। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म बॉबी का ये गीत।

इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने।

और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए अनुराधा पौड़वाल, पंकज उदास और साथियों को फिल्म बाहर आने तक में। गीत लिखा है इब्राहिम अश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। ये मैसेज हमारे पास भेजा है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा ने। अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजने वाले हैं छत्तीसगढ़ सरगांव बाजार से नसीम मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान मोहम्मद और फैजान मोहम्मद। अगला मैसेज हमारे पास आया है जिसको भेजने वाले हैं दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजनन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, यशोक येले, शेरी वडनेर अकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर। ये मैसेज हमें भेजा है पंजाब से मिंटू, पिंकी और आरती ने। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सूफियान और सदफ फातिमा। अगला मैसेज हमें भेजा है जिसको गांव फरासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेन्द्र कुमार डूडी और उनके सभी साथियों ने। अगला मैसेज हमारे पास आया है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जिया हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। अगला मैसेज हमारे पास आया है एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल हौदा का गुमला झारखंड से। और अगला मैसेज हमें भेजा है गांव खारिया डाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू और नव्या ने। ये मैसेज हमें भेजा है गांव डागर निम्नाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म बाहर आने तक का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे व्हाट्सएप फरमाइश पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत

0: पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. D.K. Shivakumar elected leader of Congress Legislature Party in Karnataka to take oath as Chief Minister on Wednesday. Month-long Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbh tomorrow. In badminton, Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open. And in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. In Karnataka, the Congress Legislature Party meeting in Vidhan Sodha has elected D.K. Shivakumar as its new leader after the resignation of Siddaramaiah. His name was proposed by outgoing Chief Minister Siddaramaiah and Dr. G. Parameshwar. After adopting the resolution, AICC General Secretary K.C. Venugopal made the official announcement. Later, briefing media persons in Bengaluru, Mr. Venugopal said D.K. Shivakumar will visit the governor to stake claim to form the government. He also announced that the swearing-in ceremony will be held on the 3rd of June. More from our correspondent.
5: After a few tense moments in the evening, the news was broken that D.K. Shivakumar has been chosen Legislature Party leader. The outgoing Chief Minister Siddaramaiah had moved a one-line resolution that electing the CLP leader must be left to the discretion of AICC. Thereafter, AICC General Secretaries K.C. Venugopal and Randeep Singh Surjewala held a discussion with Siddaramaiah separately in Chief Minister's chamber in Vidhan Sodha. So, after a break in CLP meeting, when it commenced again, D.K. Shivakumar was elected the leader after a meeting with the governor and seeking his permission for a swearing-in ceremony as the next chief minister on June 3rd at 4:05 p.m. The governor has invited D.K. Shivakumar to take oath along with cabinet members at the requested date and time. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
4: The Khet Bachao Abhiyan to promote balanced and judicious use of fertilizers will be launched across the country on the 1st of June and will be carried out throughout the month. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan chaired a high-level meeting regarding the preparations of the campaign in New Delhi today. He said the campaign should be made a comprehensive national drive connecting farms, farmers and villages. The minister said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in view of weather-related challenges, active participation at panchayat level and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. A report.
6: The Khet Bachao Abhiyan will be carried out across the country from Monday till 30th June. The Krishi Vigyan Kendras have been assigned the role of key coordinators for all participating institutions in the campaign. Over 1,600 teams have been formed and a total of 500 teams have been constituted for 100 districts of excessive fertilizer use. During the campaign, the focus will be on saving the farms and providing timely and right guidance to farmers. Agriculture Ministry emphasized that minimizing the reckless use of chemical fertilizers is the prime objective of the campaign. The farmers will be sensitized about the balanced use of fertilizers and other agricultural inputs based on soil tests, motivating them to increase the use of green manures, organic and bio products. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people.

0: Khet Bachao Abhiyan to be launched from Monday to promote balanced and judicious use of fertilizers. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Man Ki Baat program on Akashvani tomorrow. IMD forecasts thunderstorms accompanied by hailstorms over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Vidarbha tomorrow. In badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to men's doubles final of Singapore Open, and in women's cricket, England set a target of 169 runs for India in the second T20 international in Bristol. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल को फरोग देने की खातिर फिर से एक माह तवील खेत बचाओ अभियान शुरू होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। भारतीय मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कल ओले गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। और खवातीन क्रिकेट में ब्रिस्टल में दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत के सामने 169 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। कर्नाटक में वजीर आला के ओहदे से सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद विधानसभा में कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में डीके शिवकुमार को नया लीडर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर की जानिब से पेश की गई करारदाद को अरकान असेंबली ने मंजूर कर लिया। इस तरह डीके शिवकुमार कर्नाटक के नए वजीर आला होंगे। जनाब शिवकुमार को लीडर मुंतखब करने से मुतालिक करारदाद मंजूर किए जाने के बाद मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने सभी कांग्रेस अरकान असेंबली को बाजाब्ता तौर पर इस फैसले से मुतला किया। बाद में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि पार्टी के अरकान असेंबली ने इत्तफाक राय से डी के शिवकुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है और वो सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए गवर्नर मौसूफ से मिलने जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को होगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: तनाव से भरे कुछ लम्हात के बाद ये खबर सामने आई कि डीके शिवकुमार को कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सुबुकदोश होने वाले वजीर आला सिद्धरमैया ने एक सतर पर मुश्तमिल ये करारदाद पेश की थी कि कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब का मामला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके बाद AICC के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विधानसौधा में वजीराला के चैम्बर में सिद्धरमैया के साथ अलहदा बातचीत की। इस तरह कानून साज पार्टी की मीटिंग में वक्फे के बाद जब ये दोबारा शुरू हुई तो डी के शिवकुमार को लीडर मुंतखब कर लिया गया। इसके बाद रियासत के गवर्नर ने डी के शिवकुमार को वजीराला की हैसियत से हलफ लेने के लिए मधु किया। रियासत के गवर्नर के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान किया गया कि डीके शिवकुमार और उनकी काबीना के साथियों के हलफबरदारी की तकरीब 3 जून को सुपहर 4:05 पर होगी। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए खेत बचाओ अभियान को एक जामे कौमी मुहिम की शक्ल दी जानी चाहिए। वजीर मौसूफ ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के सिलसिले में आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए ये बात कही। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने कहा कि मस्कूरा मुहिम में कीमियावी खाद के मुतवाजन और सोच समझकर इस्तेमाल करने, मौसम से वाबस्ता चैलेंजों के मद्देनजर किसानों को बरवक्त सलाह देने, पंचायत सतह पर सरगर्म शमूलियत और मुतालिका स्कीमों के फायदे सीधे गांव तक पहुंचाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: پیر کے روز سے ملک بھر میں کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز ہوگا اور یہ 30 جون تک جاری رہے گا. اس مہم میں شامل سبھی اداروں کے ہم رابطہ کار کے طور پر کرشی وگیان کیندر کو مقرر کیا گیا ہے. 1600 زیادہ ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور کھاد کے زیادہ استعمال والے 100 اضلاع کے لیے کل 500 ٹیمیں بنائی گئی ہیں. مہم کے دوران کھیتوں کو بچانے اور کسانوں کو بر وقت اور صحیح رہنمائی فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. زراعت کی وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ کیمیاوی کھاد کے بے تحاشا استعمال کو کم کرنا اس مہم کا اصل مقصد ہے. کسانوں کو کھاد کے متوازن استعمال اور مٹی کی جانچ کی بنیاد پر دیگر زرعی سامان کو استعمال میں لانے, ماحول کے لیے سازگار کھاد, نامیاتی اور حیاتیاتی اشیاء کے استعمال کو فروغ دینے کے سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے گی. دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دور درشن کے تمام نیٹورکس, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر ہوگا. اسے اے آئی آر نیوز, ڈی ڈی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر براہ راست سنا جا سکے گا. ہندی نشریے کے فوراً بعد آکاشوانی سے اس پروگرام کو علاقائی زبانوں میں نشر کیا جائے گا. عملی عوامی شکایات اور پینشن محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج نئی دلی میں مصنوعی ذہانت اے آئی پر مبنی سی پی گرامز وائس چیٹ بورڈ سمادھان دیتی کا آغاز کیا. اسے بھاشینی کے اشتراک سے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے نے تیار کیا ہے. اس چیٹ بورڈ کے توسط سے لوگ گفتگو کے ذریعے عوامی شکایات درج کرا سکیں گے. میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سمادھان دیدی کو شکایات کے ازالے سے متعلق سرکار کے نظام کو سبھی کے لیے دستیاب کرانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا. وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سمادھان دیدی سردست سبھی 22 شیڈیولڈ بھارتی زبانوں میں کام کرے گا اور اس میں مزید علاقائی اور مقامی زبانیں شامل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں.
4: سن 2014 سے پہلے کیول یہاں پر 2 لاکھ شکایتیں درج ہوتی تھی پرتی ورش, آج اس کی بڑھ کر کے سنکھیا 25 سے 30 لاکھ ہوگی. کارن یہ کہ وی ہیو بین پرومپٹ, وی ہیو بین فالوئنگ ٹائم لائنز, وی ہیو بین ریسپونسو, اور یہ اس لیے سمبھو ہوا کہ ٹیکنالوجی کا بھرپور اور پریاپت اپیوگ کیا گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کیا گیا.
1: سرکار نے کپاس کی درامد کو اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے اس سال 31 اکتوبر تک کسٹمز ڈیوٹی سے عارضی طور پر مستثنا کر دیا ہے. ایک نوٹیفیکیشن میں ٹیکسٹائلز کی وزارت نے کہا ہے کہ کپاس کے کسانوں اور کپاس سے متعلق پوری ویلیو چین کے مفاد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ اب جبکہ کپاس کا سیزن نہیں ہے تو اس قدم پر عمل درآمد سے ٹیکسٹائل صنعت کے لیے کپاس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے گا, ایم ایس ایم ای اداروں کی مدد ہو سکے گی, لاگت کو اعتدال پر لایا جا سکے گا اور بھارتی ٹیکسٹائلز کی مسابقت کو مستحکم بنایا جا سکے گا. وزارت نے زور دے کر کہا ہے کہ اس اقدام سے کسانوں کے مفادات کا تحفظ ہوگا اور مارکیٹ میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا. الیکٹرانک اور آئی ٹی محکمے کے وزیر اشونی ویشنو نے آج گریٹر نوئیڈا کے سورج پور میں لوہم کا دورہ کیا جو پائیدار اہم معدنیات اور جدید ساز و سامان تیار کر رہا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ مختلف جدید ٹیکنالوجیز میں لیتھیم بیٹریاں اور مقناطیس کلیدی رول ادا کرتے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ انہیں بھارت میں ہی تیار کیا جائے اور اس کی ٹیکنالوجی کو بھی اندرون ملک ہی تیار کیا جائے. انہوں نے کہا کہ اس نظریے سے مطابقت رکھتے ہوئے لوہم نامی ایک نئے اسٹارٹ اپ نے کامیابی کے ساتھ یہ اہم ٹیکنالوجی تیار کی ہے.
5: ملز میں بیٹری بنانے کے لیے, پرماننٹ میگنیٹ بنانے کے لیے, چاہے الیکٹرانکس کا پروڈکشن ہو, چاہے کسی بھی طرح کا آج کی بڑی مشینوں میں, سب جگہ پرماننٹ میگنیٹس اور لیتھیم کی بیٹریز کا اپیوگ ہوتا ہے. اس کا پروڈکشن بھارت میں ہو اور بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ٹیکنالوجی بھارت میں ڈیولپ ہو, ایسا مانی پردھان منتری شری نریندر مودی جی کا ویژن ہے. اس ویژن کے تحت ایک ینگ اسٹارٹ اپ لوہم, انہوں نے کمپلیٹ ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنے کے بعد میں وہاں سے پروڈکشن کا لیول لے کے آئے. آج اس پلانٹ کو دیکھنے کا موقع ملا. لیتھیم کاربونیٹ بنانے کی مشینیں جو کہ آگے سیدھا بیٹری بنانے میں کام میں آئے, اور پرماننٹ میگنیٹ بنانے کی مشینیں جو کہ بہت ہی ایک اچھے, بہت ہی کمپلیکس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا.
1: یہ خبریں आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमा के सदर ऊ मिन आउ लाइन भारत के 5 रोजा दौरे के तहत आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। खारजी उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल आज म्यांमा के सदर ने बिहार के गया का दौरा किया और वहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके हमराह मुख्तलिफ काबीनी वुजरा, सीनियर अहदेदारान और कारोबारी रहनुमाओं का एक आला सतही वफद भी है। म्यांमा के सदर का ओहदा संभालने के बाद यह उनका भारत का पहला दौरा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज उनसे मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने तवील मुद्दती बाहमी इश्तराक को मुस्तहकम करने के तई म्यांमा के सदर की मुस्बत सोच की सताइश की। उन्होंने कहा कि वो अमन, तरक्की और खुशहाली की खातिर शराकतदारी की पेशरफ्त के सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ जनाब लाइन की मीटिंग के मुंतजर हैं। म्यांमा के सदर दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और तहजीबी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने की खातिर पीर के रोज वजीर आजम मोदी से बातचीत करेंगे। वो एक कारोबारी फोरम में भी शिरकत करेंगे। कौमी सेहत अथॉरिटी की जानिब से नाफिज करदा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मुल्क भर में 90 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा का तारीखी संगे मील हासिल किया गया। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा कि एक मरबूत मुश्तरका तरीकेकार और शहरियों पर मरकूज डिजिटल सेहत इको निजाम की जानिब भारत के सफर में यह एक अहम पेशरफ्त है। वजारत ने कहा कि 2021 में 14 करोड़ से ज्यादा आभा अकाउंट्स की तादाद बढ़कर इस साल 90 करोड़ हो गई है। दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के जराइम पेशा ग्रोह के नेटवर्क के इशारे पर काम करने वाले 8 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिल्ली पुलिस के खसूसी शोबे के खसूसी पुलिस कमिश्नर अनिल शुक्ला ने बताया कि इन मुलजिमों को दिल्ली में अहम तनसीबात और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला करने का काम सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि इन मुलजिमों के कब्जे से हथियार और धमाकाखेज मादा जब्त किया गया है। जनाब शुक्ला ने बताया कि ये मुलजिम सरहद पार अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें दिल्ली, महाराष्ट्र और पुणे से गिरफ्तार किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई की है। अगले 2 दिन के दौरान ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, क्राइकल और मध्य प्रदेश में भी शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ खित्ते में कल आंधी और ज्वालाबारी के साथ बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले खित्ते में भी कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। केरलम में मानसून से पहले की बारिश के तनाजुर में भारतीय मौसमियात महकमे ने तिरुवनंतपुरम जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिले के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई इलाकों से पानी जमा हो जाने और ट्रैफिक में खलल पड़ने की इत्तला मिली है। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा बिला रुकावट सफर के तजुर्बात को यकीनी बनाने के लिए डिजी यात्रा टीम को मुबारकबाद दी। जनाब नायडू ने कहा कि इस संगे मील से बिला रुकावट, पेपर के बगैर और किसी खास राब्ते के बगैर मुसाफिरों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी होती है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की मर्दों के डबल्स की भारतीय जोड़ी आज सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की जोड़ी सियू सियांग जाए और किम वोन हो को 21-19, 21-18 से हरा दिया। इससे कबल ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्तो की मिक्स्ड डबल्स की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में जापान की जोड़ी से 16-21, 21-17, 13-21 से हार गई। खवातीन क्रिकेट में 3 T20 मैचों की सीरीज के तहत ब्रिस्टल में खेले जा रहे दूसरे T20 मैच में इंग्लैंड की टीम ने भारत की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक खवातीन की भारतीय टीम ने 12 ओवर्स में 2 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। इससे कबल इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए थे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस कानून साज पार्टी ने डीके शिव कुमार को अपना लीडर मुंतखब किया है। वो बुध के रोज नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। کیمیاوی کھاد کے متوازن اور سوچ سمجھ کر استعمال کو فروغ دینے کی خاطر پیر سے ایک ماہ طویل کھیت بچاؤ ابھیان شروع ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بھارتی

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधावर्षन या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला, तो उस समय

0: वो मात्र 24 साल के थे और भगत सिंह 23 साल की उम्र में दो तीन अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वह है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहां निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहां का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है। वहां अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहां का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला। मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहां विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहां शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रैवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
3: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं। यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
4: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं। हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है, आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आईटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है, आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आईटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
5: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
6: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
5: अच्छा।
6: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कंटिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रैवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रैवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रैवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10,000 से हमने शुरू किया था उस टाइम।
5: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए। और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
6: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से, लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
5: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
4: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सब इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता अब। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम। फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
5: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
4: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइवर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
4: लोपर गामिनी।
3: हाँ। और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
4: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है, हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
6: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था, हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा, तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा, और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
4: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला, और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है,
7: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
4: बहुत ही मजेदार होता है। हाँ,
7: एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
6: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है, वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था, उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी, और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ। उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी। मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना, एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक। आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है, या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है, तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है। अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ, तो मेरे लिए आसान नहीं है। तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप, और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए,
7: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड,
6: यस यस, जितना छोटा हो सके, मतलब
4: कॉम्पैक्ट रखो।
6: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है।
7: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस
4: मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स। हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है, हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है, ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके, और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं। आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए। फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है। बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं।
6: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो, पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट, एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो।
8: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है। वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए। लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो। और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं
1: न उम्र की, न दूरी की, न परिस्थिति की। आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
9: जी धन्यवाद।
1: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
9: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है। मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है, पढ़ाई के साथ साथ मान लीजिए इसका रोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें। मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है।
1: तो आपको क्या लगता है कि अभी जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
9: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है। खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है, तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पर ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कॉम्पोनेंट है।
1: जी
9: तो अगर आप सामान्य बीए, बीकॉम, बीएससी भी कर रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहां पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से, वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है, तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें तो?
9: देखिए, ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है। कोई माइग्रेशन, कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है। सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट। यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते, मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं, और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन की नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं मान तज देहो प्यारे। मध्यलय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल हैं मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना के बोल हैं मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्यलय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग विद अ द्रुत कंपोजिशन सेट टू एकताल विद द लिरिक्स मानो ना ही तुमरी बात। अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज गांधार राजहंस एंड ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर।

0: यह था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही हैं राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।
2: अभी आप संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश,
1: हमारा भारत देश।

समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और

0: संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वयक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।